मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 13 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 42 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के

0: तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के रिशित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं समूह स्वर में मातृवंदना से। भारत भूमि एक ऐसी धरती है जिसका गुणगान स्वयं देवगण करते हैं। अपने गुणगान में वे स्वयं आश्चर्य प्रकट करते हैं कि मनुष्य ने ऐसा क्या पुण्य कार्य किया जो उसे भारत भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य मिला।

माना शंभू, बहुत व्यग्र, अस्थिर, अपरिपक्व हूँ मैं, किंतु तुम बोध पर नहीं, सरलता, नादानी पर रिसते हो, तो फिर आओ, विलंब क्यों।

सुधा मल्होत्रा के स्वर में आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना। शिव संकादिक ने जिसका अंत नहीं पाया, ब्रह्मा जी भी जिनकी ध्यान में जन्म लेते भटकते रहे, मैं उस प्रभु की सगुण मानकर फूलपत्रादि से पूजा नहीं करूंगा, बल्कि सहज समाधि के द्वारा ही वह सेव्य हैं। इसी भावार्थ को लिए अब अगला भजन हम सुनते हैं। डीपी बड़ोदिया का स्वर है, रचना रैदास की।

0: डीपी बड़ोदिया के स्वर में इस भक्ति पद के साथ आज की वंदना संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: मनुष्य में संचय करने की जो प्रवृत्ति है उसे शास्त्रों में परिग्रह कहा गया है और संचय न करने को अपरिग्रह। संस्कृत में परिग्रह का एक अर्थ होता है पत्नी, जिससे अपनापन पैदा हुआ और जिसकी जिम्मेदारी हमने ली वो हो गया परिग्रह। ये मेरा है ऐसा समझकर जिसको हम अपनाते हैं उसके प्रति ममता पैदा होती है, और ममता का एक अर्थ

0: जैसे जैसे हमारी मिल्कियत बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे बंधन भी बढ़ते जाते हैं, हम में लाचारी आती है और हमारे व्यक्तित्व क्षीण और मर्यादित होता जाता है। इसीलिए पश्चिम में एक विचारक ने कहा है, द लेस आई हैव द मोर आई एम, अर्थात जैसे जैसे मेरा परिग्रह घटेगा वैसे वैसे मेरी अस्मिता मेरा व्यक्तित्व बढ़ेगा। इसी संदर्भ में श्री रामकृष्ण देव की एक बात याद आती है, उन्होंने भी समय समय पर अपने शिष्यों को संचय की वृत्ति के खिलाफ खूब आगाह किया है। संचय जितना अधिक होगा जीवन में दुख भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए परमहंस देव श्रीमद भागवत की एक कहानी सुनाया करते थे। अवधूत ने अपने 24 गुरुओं में चील को भी एक गुरु बनाया। एक जगह धीवर मछली मार रहे थे, एक चील एक मछली ले गई, किंतु मछली को देखकर 1000 कौवे उसके पीछे लग गए और कांव कांव करके बड़ा हल्ला मचाना शुरू किया। मछली को लेकर चील जिस तरफ जाती कौवे भी उसके पीछे उसी तरफ जाते। अंत में घबराहट के मारे मछली उससे छूटकर जमीन पर गिर पड़ी तो सब कौवे चील को छोड़कर मछली की ओर दौड़े और चील को छोड़ दिया। चील जब निश्चिंत होकर एक पेड़ की डाल पर बैठी तो बैठकर सोचने लगी कि कुल बखेड़े की जड़ यही एक मछली थी, अब यह मछली मेरे पास नहीं है तो मैं कितनी निश्चिंत हूं। इस कहानी के तत्वार्थ को रेखांकित करते हुए परमहंस देव कहते हैं, मछली अर्थात संसार का भोग संचय और कौवे अर्थात चिंताएं, जहां संचय है वहीं चिंताएं हैं, वहीं दुख है। सत्य तो यह है कि संचय की वृत्ति का त्याग करने से ही शांति मिलती है। इसी प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, फिर देखो संचय करने से अर्थ भी अनर्थ हो जाता है। तुम भाई भाई कितने अच्छे हो, कितने प्रेम से रहते हो, परंतु जायदाद के बंटवारे को लेकर तुम लोगों में झगड़ा होता है। तुमने कुत्तों को देखा है ना, आपस में एक दूसरे से खूब प्रेम भाव रहता है, परंतु यदि कोई रोटी फेंक दे तो वे ही आपस में लड़ मरते हैं। कोई चाहे तो कह सकता है कि परमहंस देव की यह बात बड़ी एक्सट्रीम, बड़ी आत्यंतिक सी बात मालूम पड़ती है। जब हम इस संसार में हैं तो थोड़ा बहुत संचय तो करना ही पड़ेगा। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि परमहंस देव ने स्वयं ही अपनी बात को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार यह आत्यंतिक नियम सन्यासियों और उन लोगों के लिए है जिन्होंने लोक कल्याण का बाना अपनाया है। वे कहते हैं कि अत्यधिक कठोर नियम संसारियों के लिए नहीं है। संसारी को घर परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है, इसलिए उसे किंचित समय की छूट दी जा सकती है। हमारे यहाँ कहा गया है कि पक्षी और संत संचय नहीं करते, लेकिन चिड़िया भी जब बच्चे देती हैं तो अपनी चोंच में दबाकर बच्चों के लिए दाना ले जाती हैं। गांधी जी भी कहा करते थे कि जो आदमी अपनी आवश्यकता से अधिक संचय करता है वो दुनिया में दुर्भिक्ष पैदा करता है। नैतिकता का तकाजा है कि मैं अपनी आवश्यकता से अधिक कुछ भी न दूं। जब तक दुनिया में एक भी आदमी भूखा है तब तक अपनी आवश्यकता से अधिक खाने में सामाजिक धर्म का द्रोह होता है।
1: ये था आज का चिंतन। आलेख और स्वर था स्वामी चंद्र शेखरानंद का। ये आकाशवाणी का प्रातः के 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन पाठ। स्वर अनुराधा पौडवाल का है। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

पार्वती के मन में शिव जैसे बावले वर की कामना जगाने वाले नारद जी को जब हिमवान तथा उनकी पत्नी मैना के विषाद का समाचार मिला, तो उन्होंने पार्वती के पूर्व जन्म की कथा बताकर हिमवान दंपति को सांत्वना दी। शोकाकुल हिमवान तथा मैना को ये ज्ञात नहीं था कि भ्रमवश सीता का वेश धारण

करने के कारण शिव ने सती का त्याग किया था तथा सती ने पिता दक्ष प्रजापति के घर यज्ञाग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया था। फिर उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और हजारों वर्षों की तपस्या करके शिव को पुनः वर रूप में पाया है। ये कथा सुनकर मैना, हिमवान, सभी स्त्री पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, समस्त नगर निवासी प्रसन्न हुए और बारातियों के स्वागत सत्कार में जुट गए। प्रस्तुत है जेवनार विवाह मंडप में निर्मित वेदी, ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं का आह्वान, उपस्थित नारी समुदाय के व्यंग्य विनोद का ये प्रसंग।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन पाठ। स्वर था अनुराधा पौडवाल का। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि सामयिक की बीड़ा खड़ा चुकोट।
1: किसान दादा दीदी मन, मुरई के तो आमी सफाय जानू से 15 अरु लुसलुसला मुरई चू जड़ अरु भाजी दोनों के खातों का जे लोग मन खूबे मन कर सो। आज आमी मुरई चो उन्नत कमानी कसन करुक सकू ये गोट के करूं से। मुरई चो कमानी काजे बालुई दोमट माटी निको होए से। मुरई चो बीजा मंडा तो पहिल बेड़ा के 2-3 हार खापून पाटा चलान माटी के बराबर करतो राय। मुरई चो उन्नत किस्म मन ने एशियन अरु यूरोपियन किस्म मन होए से। एशियन किस्म ने पूसा चेतकी, पूसा हिमानी, जौनपुरी, हिसार, मुरई अरु पंजाब सफेद होए से। असने यूरोपियन किस्म ने व्हाइट आइसिकल, रैपिड रेड व्हाइट, टिप्ड अरु फ्रेंच ब्रेकफास्ट नाचो किसी मन होए से। मुरई चो बीजा मंडातो काजे 2.5 एकड़ ने आम के 5-10 किलो बीजा के लगातो राय। असन तो मुरई के आमी साल भर बल कमाउक सकू। मांतर सितम

0: ले जनवरी महीना भीतर एचो जोन बुंतोर समिया निको माने जाए से मुरे जो कमाने के लेन बार अरु पारी ने बले करुक सकू बलो ने एचो जोन बुंतोर आटा है हुन आमी एके बेड़ा ने लेन बार लेन बनाउन बल करुक सकू अरु आमी किंडिक डेंग पारी बनान हुथा पर बुनुक सकू लेन बार बुनलो बुंतो काजे नहीं आम के जोन लेन ले लेन जो दूरिया है हुनके 30 सेंटीमीटर राख तो राय अरु पारी ने आमी जसन एक एचो कमानी कर तोर मन करू से जाले आम के हुन जो न पारी के 15 ले 20 सेंटीमीटर खिंडिक डेर डेंग बना तो राय और डेंग पारी ने एक बूंद तो राय कहीं कमानी हो दादा दीदी मन दखा आम के खत भात के बल हिसाब ले दिलो ने आम के हुन लाभ अनगर दे से तो मुरई कमानी का जे खत भात दे तो हिसाब ने आम के उन जो निको कमानी करतो वाट ने गोबर खत 200 किलो नत्रजन 100 किलो 50 किलो स्फूर अरु 100 किलो पोटास के 2.5 एकड़ चो भू हिसाब ले लगातो रहे एचो जोन दे तो रुआटा है हुना है गोबर खत स्फूर अरु पोटास संगे नत्रजन चो आधो भाग के आम के मिसाउन बुनतो पहिल माटी ने बिखरतो रहे अरु नत्रजन जो जोन आधो भाग है जेके आमी बचान राखलू से हुन आधो भाग के बुनलो पाछे 15 अरु 30 दिन बलो ने एक महीना ने 2 हार करून हुन 15 अरु 30 दिन चो आर ने हारक हारक करून हुथा लगातो रहे मुरी चो कमानी ने लाटा बूटा मन खुबे आउथा जन होसोत बलो ने जेके आमी खरपतवार बल बलुक सकू तो हुन खरपतवार मन के गोटो कुआट हो से आमी झीकुन हुनके पकाऊ से मातर हुन फेर उपरे एउन जाय से तो असन हिसाब ले जोन किसान दादा दीदी मन हुन खरपतवार मन के मरला तो काजे रासायनिक ओखत चो उपयोग करुक चाहे सो जाले हुन मन पेंडी मिथेलिन 30 EC नाव चो जोन ओखत आए हुन ओखत चो 3 किलो के 1000 लीटर पानी ने घोरून 2.5 एकड़ भूई हिसाब ले बीजा जो मंडालोर बल्लो ने बीजा बुनलोर 48 घंटा चो भीतर 48 घंटा बल्लो ने आमी हुनके 4 दिन हिसाब ले मानुक सकू 4 दिन चो भीतर ने हमके उथा चीज तो राय और जसन की आमी मुरी चो कमानी जेठ बेरा ने कर लू से जाले मुरी कमानी जेठ बेरा चो जो नाम चो फसल हो से उथा हमके 4 ले 5 दिन चो आड़ने पानी देव पड़े से अरु सीत बेरा जोन मुरी कमानी आमी कर लू से हुन कमानी ने आम के 10 ले 15 दिन चो आड़ने पानी दे तो राय मुरी कमानी ने रोग राई अरु बीमारी बल झपके धरे से तो जुगे करुन मुरी कमानी ने झुलसा रोग अधिक हो से एचोले बचातो काजे कैप्टान 2.5 ग्राम ओखत के 1 किलो बीजा हिसाब ले बीज के उपचार करू नाम के बूंद तो राय अरु आम के पाछे जसन की फसल आम चो उपरे एली से जाले हुन फसल उपरे मैंको जेब ओखत के 1 लीटर पानी ने घोरून चीज तो राय इत्रो दखा रखा करून मुरी चो कमानी करलो पाछे हुन चो उखंतोर अरु हुन चो सही फसल तैयार होतर समया के बल आम के चिता तो राय और हुन बेरा आम के हुनके उखंतोर काम के करतो राय तो हुन हिसाब ले आम के अंताज लगा तो राय की ए समया हुन चो जड़ आए मुरई आए हुन अच्छा लुसलुसा आसे तो हुसन बेरा हुन के आम के उखनून बिक तो राय 2.5 एकड़ ने कमानी कर लो ने आम के एक चो जोन उपज आए हुन 200 ले 350 बल्लो ने 350 क्विंटल मिरुक सके तो दादा दीदी मन असन सांगलो उवाट ले अपन मन किसान भाई बहन और सफाई गांव कारी दादा दीदी मन जे मन आप मुरई चो कमानी कर सो हुन मन आप लो मुरी कमानी के करला जाले हाट बाजार ने बिकुन हुन मन के अनगर लाभ बले मिरे से और हुन मन अनगर लाभ पाउक सक
1: बीड़ा खाड़ा चुगोट अभी इस कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:40 हुए हैं। हुलहुली में लीजिए सुनिए रणबीर देव पाड़, वादन है पाकलू और साथियों का।

हुलहुली में अभी आप सुन रहे थे पाकलू और साथियों का बजाया रणबीर देव पाड़। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज सुबह 7:05 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आज इसके आकर्षण होंगे स्वतंत्र वार्ता में फसलों पर अनुवांशिक सुधार विषय पर संकल्प चंद्र की वार्ता। कहानी पाठ में आप सुनेंगे कमलेश्वरी सलाम से उनकी कहानी खोई हुई चीज। साथ ही होगी फिल्मी गीतों की मधुरी माँ। सुबह 8:30 पर आप सुन सकते हैं लोक मंजरी। सुबह 9:00 लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी सुनिएगा। संपादन होगा बलबीर सिंह कच्छ का। एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फिल्म साहिब के नगमे। सुबह 9:30। सुबह 10:00 आनंद लीजिएगा पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गुलशन में। सुबह 10:30 पर गुड़दुम में गोंडी लोकगीत सुना जा सकता है। स्वर होगा संतुराम और साथियों का। एक ही कलाकार ये कार्यक्रम पेश करेंगे दिन के 11:00। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। दिन के 11:00 कींजा, इसमें आप सुनेंगे शंकर सलाम और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत। कला और कलाकार कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे दोपहर 12:00। दोपहर 12:30 पर सुनिएगा ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर द्वार। दोपहर 1:05 पर हम करते हैं कार्यक्रम बेड़ा खड़ा चुगूठ का पुनः प्रसारण। फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम श्रोता सुमन में आप आनंद लेंगे अपने पसंदीदा गीतों का दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर आपके लिए होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। अब लिए चलते हैं आपको आज की सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों की जानकारी की ओर। आज शाम 5:05 पर होगा कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में। युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी पेश करेंगे शाम 5:10 पर। आज ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हल्बी बोली में। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे सुदनी और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। बस्तर के स्वर के साथ जुड़िएगा ग्रामीण जगत से शाम 7:00। शाम 7:21 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम आमचो गांव। गोंडी लोकगीत सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम नानोली में रात 8:00। स्वर होगा सियालाल और साथियों का।

0: रात 8:30 पर पीलामन काजे गोठ में सुनिएगा महाराणा प्रताप, प्रस्तुति होगी रुद्र प्रताप सिंह की। रात 9 आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवना चो सोर। इसमें आज आप सुन सकते हैं दंतेवाड़ा के मिलेट्स महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्षा रंजना विश्वकर्मा से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। भेंट घाट ये कार्यक्रम होगा रात 9:30 पर। रात 10 कोदो माली में सुनिएगा गोंडी लोकगीत, स्वर होगा पंचुराम और साथियों का। पुनः आपको स्मरण करा दें, आज सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म होगी साहेब। दिन के 11 आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्म निर्माता और निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन उद्घोषितं यत् तेन गगनयान अभियानस्य क्रू मॉड्यूल तंत्राणां त्रयाणां प्रमुख परीक्षणानां सफलं निष्पादनं विहितम्। प्रथम परीक्षणं समुद्रे अवतरणानन्तरं क्रू मॉड्यूल इत्यस्य स्थितिं सुनिश्चेतुं सम्बद्धम् आसीत्, यत् अंतरिक्ष यात्रिणां

0: प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले फाइनल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। इन तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वो डूबेगा या उल्टेगा नहीं। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर भी। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। वक्त की राह में

गुजरते पलों का हिसाब क्या रखना, जो खुशी दे जाए जिंदगी में बस वही याद रखना। जी हाँ, खुशी के पल दो हों के चार, हमें मालूम है कि इसका एक रास्ता नमस्कार जगदलपुर से होकर जरूर जाता है। इसलिए इस राह से होकर हम आ गए हैं आपसे मिलने। स्वतंत्र वार्ता, कहानी पाठ और मधुरिमा की सौगात लिए आज आपके साथ हूँ मैं, रूपाली सेठिया। आप सभी को मेरा नमस्कार।

वो पर्वत अचल अभिमानी बना रहा सदियों से, उसकी दरारों ने बताया वो हार गया नदियों से। श्रोताओं, आदि काल से पर्वत पहाड़ को अचल, अडिग, विशालकाय और धीर गंभीर होने की उपमा दी जाती रही। सामाजिक जीवन में पिता की तुलना पहाड़ से की गई। पहाड़ पिता की तरह जल यानी जीवन के मुख्य स्रोत के रूप में काम करते रहे। जीवन की उन्नति प्रगति में आने वाली बाधा जैसे पिता हरते हैं, वैसे ही मानसूनी हवाओं को रोककर पर्वत बारिश कराते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से मैदानी इलाकों की रक्षा करते हैं। श्रोताओं, आज हम ये सब बातें इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस। श्रोताओं, चट्टान एक पदार्थ या कहें खनिज का समूह है और पर्वत एक स्थल रूप। सरल शब्दों में कहा जाए तब चट्टान अगर ईंट है तब इन ईंटों से बनी विशाल इमारत है पहाड़। अंतर्राष्ट्रीय रॉक यानी चट्टान दिवस उस पदार्थ का जश्न मनाने का दिन है जो मानव जाति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण रहा है। पाषाण युग में चट्टानों का उपयोग हथियारों और औजारों के लिए होता रहा। चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज और धातु सभ्यता के लिए जरूरी रहे। ये दिवस भूविज्ञान और प्रकृति प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हुआ ताकि लोग पृथ्वी विज्ञान के प्रति अधिक जागरूक हों और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के महत्व को समझ सकें। धरती का हर पत्थर अपने भीतर समय की एक लंबी कहानी समेटे हुए है। इंटरनेशनल रॉक डे हमें सिखाता है कि यदि हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है तो हमें प्राकृतिक धरोहरों को समझना और सहजना होगा। आइए इस दिवस पर प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण का भाव जागृत करें। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता का अंश है, जो जितना ऊंचा उतना एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ढोता है, चेहरे पर मुस्कान का मन ही मन रोता है। आइए हम और आप इन बेजुमान पर्वतों का जरा दिल टटोल लें।

0: आनंद बख्शी की थी। संगीत रचनाकार थे राजेश रोशन। आप सुन रहे हैं नमस्कार सूचना सुनिए। कल यानी मंगलवार दिनांक 14 जुलाई 2026 को होगी कार्यक्रम फोन इन किसानवाणी की रिकॉर्डिंग। फसलों में कीट प्रबंधन, इस विषय पर डॉक्टर आशीष कुमार अनंत से आप ले सकेंगे जानकारी। रिकॉर्डिंग का समय होगा दोपहर 3:30 से 4 बजे तक। सूचना समाप्त हुई।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसानवाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसानवाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1-5-1-0-2।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
6: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
7: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
6: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
0: नमस्कार, जगदलपुर में अब आपको लिए चलते हैं अपने अगले क्रम में। सुनते हैं स्वतंत्र वार्ता, विषय है फसलों में अनुवांशिक सुधार। वार्ताकार हैं संकल्पा चंद्र।
8: जीव विज्ञान खासकर जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिनों दिन नए अनुसंधान हो रहे हैं। इन अनुसंधानों के परिणाम हमारे जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े कई चीजों को नया आयाम दे रहे हैं, जैसे सामान्य फसलों को उच्च गुणवत्ता वाले फसलों में परिवर्तित करने हेतु नित नए अन्वेषण हो रहे हैं। फसल सुधार के लिए अनुवांशिक विविधता अनिवार्य है। इसके पारंपरिक स्रोत हैं संकरण, उत्परिवर्त जनन एवं बहुगुणिता। बायोटेक्नोलॉजी भी अनुवांशिक विविधता उत्पन्न करती है, जिसके उदाहरण हैं सोमोक्लोनल वेरिएशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, एंथर कल्चर इत्यादि। बायोटेक्नोलॉजी द्वारा जेनेटिक चेंजेस लाने की सबसे अधिक सक्षम व अद्वितीय विधि जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। इस विधि से जो जीन स्थानांतरित किए जाते हैं उन्हें ट्रांसजीन्स कहते हैं, तथा इसी प्रकार जो पौधे प्राप्त होते हैं उन्हें ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। जीन स्थानांतरण

द्वारा किसी भी जीव से विलग किए गए उपयोगी जीन्स या पूरी तरह से आर्टिफिशियली सिंथेटिक जीन्स को किसी वांछित पादप जिसकी गुणवत्ता में सुधार करना हो उसमें वाहक की सहायता से या सीधे ही स्थानांतरित कर देते हैं। इससे फसल सुधार की असीम संभावनाएं बन जाती हैं। अब तक किए गए प्रयोगों से कई संभावनाओं को मूर्त रूप मिला है और फसलों की कई ट्रांसजेनिक वैरायटी जैसे लंबी अवधि तक न गलने वाले टमाटर, कीटरोधी कपास और अत्यधिक उत्पादक क्षमता वाले मक्का आदि का व्यापारिक उत्पादन भी होने लगा है। अन्य उद्देश्यों में भी उल्लेखनीय सफलता मिली है, जैसे कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस अर्थात कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का पौधों में विकास। दूसरा है वायरस रेजिस्टेंस, विभिन्न हानिकारक वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का पौधों में विकास। सीड्स की प्रोटीन क्वालिटी में सुधार, फैटी एसिड कंपोजिशन का पौधों के खाने योग्य भागों में इम्प्रूवमेंट करना। इसके अतिरिक्त रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक पदार्थ जो कि पौधों में निर्मित होते हैं उनके उत्पादन को प्रेरित करना। पौधों में नेचुरल रूप से प्रेजेंट ऐसे एंडोजीनस जीन जो स्वयं उनके लिए हानिकारक होते हैं उनका दमन या लाभदायक जीन्स के द्वारा उत्पादन क्षमता का विकास करना। इसके अतिरिक्त खाद्य टीकों का निर्माण, कीटरोधिता वह गुण है जिसमें एक ही प्लांट स्पीशीज के कुछ स्ट्रेन में इंसेक्ट पेस्ट के आक्रमण के कारण नुकसान अन्य स्ट्रेन की अपेक्षा कम होता है। कीटरोधी प्लांट के उत्पादन हेतु दो ट्रांसजीन्स का अनेक प्लांट्स में स्थानांतरण किया गया है। पहला है मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया बैसिलस थ्रंगेंसिस के क्राई जीन जो कि क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण करता है उसका स्थानांतरण। यह प्रोटीन कीटों के मध्य आंत में पाए जाने वाले प्रोटीन को विदलित कर देता है जिससे वे मर जाते हैं। अन्य है सेरीन प्रोटीएज इनहिबिटर जीन्स का स्थानांतरण। इसके अतिरिक्त पौधों में ट्रांसजीन्स का उपयोग उन्हें वायरस रेजिस्टेंस बनाने में भी होता है जिसकी निम्न युक्तियां हैं। पहला है कोट प्रोटीन जीन के द्वारा, दूसरा है सैटेलाइट आरएनए की सीडीएनए कॉपी, तीसरा है डिटेक्टिव वायरस जीनोम द्वारा और चौथा है एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी द्वारा। अन्य उपयोग है सीड की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना। धान्य बीजों में लाइसिन की कमी होती है जबकि दलहनों के प्रोटीन में सल्फर युक्त अमीनो एसिड जैसे मेथियोनिन की कमी होती है। अतः धान्य एवं दलहनों के प्रोटीन की गुणवत्ता में सुधार महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस हेतु ऐसे ट्रांसजीन्स की सीड्स में अभिव्यक्ति की जाती है जिनके द्वारा कोडित प्रोटीन में वांछित अमीनो एसिड की उच्च मात्रा हो।

जिनके द्वारा कोडित प्रोटीन में वांछित अमीनो एसिड की उच्च मात्रा हो उद्देश्य है। इस हेतु ऐसे ट्रांसजीन्स की सीड्स में अभिव्यक्ति की जाती है जिनके द्वारा कोडित प्रोटीन में वांछित अमीनो एसिड की उच्च मात्रा हो।

0: उपस्थित निष्कर्षणीय प्रोटीन का 4% भी SFA8 हुआ तो बीज प्रोटीन की सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में एवरेज 40% की वृद्धि होगी। अन्य उपयोग ट्रांसजेनिक प्लांट का के इस प्रकार हैं। कई प्लांट्स के लिए स्वयं उन्हीं के कुछ एंडोजीनस जीन हानिकारक होते हैं, जिनकी क्रिया को घटाना या समाप्त करना आवश्यक होता है। इस हेतु एंटीसेंस mRNA या एंटीसेंस DNA टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। एंटीसेंस mRNA टेक्नोलॉजी का उपयोग कर टमाटरों के जल्दी पकने हेतु जिम्मेदार जीन्स को कंट्रोल व सप्रेस किया गया है, जिससे वे काफ़ी समय तक फ्रेश बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त वनस्पति तेलों के वसी अम्ल संगठन को एंटीसेंस टेक्नोलॉजी द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे वे और भी अधिक उपयोगी हो जाते हैं। अन्य उपयोग ट्रांसजेनिक प्लांट का है बायोकेमिकल प्रोडक्शन। मानव की कार्बोहाइड्रेट, लिपिड व प्रोटीन तथा अन्य कई अद्वितीय यौगिकों की ज़रूरतें पौधों से ही पूरी होती हैं। पौधों का उत्पादन एवं इनके उत्पादों का भंडारण अपेक्षाकृत सरल, सस्ता एवं सुविधाजनक है, अतः ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट का विकास करने के प्रयास जारी हैं जो नए तथा अप्रोटीनी यौगिकों का उत्पादन कर सकें अथवा जिनसे ट्रांसजीन द्वारा उत्पादित बहुमूल्य प्रोटीन की प्राप्ति हो सके। नवीन अप्रोटीन उत्पाद के लिए एक या दो ट्रांसजीन्स का पौधों में स्थानांतरण करते हैं, जो पौधों के कुछ अंतर्जात जैव संश्लेषण पथों में नई शाखाएं उत्पन्न करके नए मूल्यवान एवं उपयोगी यौगिकों का उत्पादन करते हैं। इस युक्ति से दो यौगिक उत्पादित किए जा रहे हैं, पहला है साइक्लोडेक्सट्रीन व दूसरा है पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटारेट। पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटारेट का उत्पादन एसिटाइल को ए से होता है। इससे जैव अपघटनीय प्लास्टिक का निर्माण होता है, जो कि इको फ्रेंडली है। एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया एक्लेजिनस यूट्रोफस से दो जीनों PHBB व PHBC का स्थानांतरण अरबडोप्सिस थैलियाना नामक पौधे में किया जाता है, जिससे इस पौधे के प्लास्टिड में PHB का निर्माण होने लगता है, जिसे बाद में पौधे से निकाल लिया जाता है। दूसरा है ट्रांसजीन्स को प्लांट में अभिव्यक्त कराकर बहुमूल्य प्रोटीनों का भी उत्पादन किया जा सकता है। हिरुडीन प्रोटीन, जो कि रक्त वाहिकाओं में थक्के के निर्माण को रोकता है, इसे कोडित करने वाले जीन को संश्लेषित किया गया है व इस जीन को एक अन्य प्रोटीन ओलिसिन को कोड करने वाले जीन के साथ संगलित कर ब्रैसिका नेपस नामक पौधे में अभिव्यक्त कराया गया है, जिससे यह पौधा ओलिसिन प्रोटीन के साथ हिरुडीन प्रोटीन का भी निर्माण करने लगा है, जिसका निष्कर्षण करके इसे प्राप्त कर लिया जाता है। अन्य उपयोग है प्लांट्स में ट्रांसजीन्स के द्वारा महत्वपूर्ण वैक्सीन का उत्पादन। रोगजनकों के एंटीजेनिक प्रोटीन या उनके अवयवों को टीके के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पौधे द्वारा उत्पादित टीके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला है खाद्य टीके व अन्य है शोधित एंटीजेनिक प्रोटीन का टीकों के रूप में उपयोग। ट्रांसजेनिक प्लांट के फल, कंद या अन्य खाए जा सकने वाले भाग में किसी रोगजनक का कोई एंटीजेनिक प्रोटीन इस प्रोटीन को कोड करने वाले ट्रांसजीन के माध्यम से उत्पादित किया जा सके व जिससे मानव या पशुओं को खिलाने से उनमें संबंधित रोगजनक के प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो, उन्हें खाद्य टीके कहते हैं। इसके अतिरिक्त ट्रांसजेनिक प्लांट में उत्पन्न एंटीजेनिक प्रोटीन का निष्कर्षण करके उसे सीधे ही टीकों के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जिससे उस रोग के प्रति हमारा प्रतिरक्षी तंत्र मजबूत हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ट्रांसजीन्स के माध्यम से कई महत्वपूर्ण फसलों व अन्य पौधों में अत्यंत उपयोगी सुधार किए जा रहे हैं, जो हमारे मानव समाज के लिए भविष्य में और भी लाभदायक सिद्ध होंगे।
1: स्वतंत्र वार्ता में अभी आप सुन रहे थे फसलों में अनुवांशिक सुधार विषय पर संकल्पा चंद्र से वार्ता। श्रोताओं, बरसात का मौसम कृषि के लिए सबसे अनुकूल मौसम है। आशा करते हैं इस वार्ता से आपको अपने कृषि कार्य से के लिए जरूर मदद मिलेगी। बहरहाल, अब हम आ पहुंचे हैं नमस्कार जगदलपुर के अगले आकर्षण।

0: यानी कहानी पाठ तक। आइए सुनते हैं कमलेश्वरी सलाम से उनकी लिखी कहानी खोई हुई चीज।
1: गंगापुर गांव अपनी हरी भरी वादियों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। इस गांव में एक पुराने और साधारण से घर में 78 वर्षीय दादा किशनलाल रहते थे। उनकी आंखें जो कभी तेज और उत्सुक थी, अब धुंधली पड़ रही थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक कभी कभी दिखाई देती थी, एक पुरानी याद की चमक। दादा किशनलाल का जीवन सादा था। सुबह उठना, नित्य कर्म करना, थोड़ा टहलना और फिर अपनी कुर्सी पर बैठकर धूप सेकना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उनके साथ उनकी पोती रिया रहती थी, जो एक कॉलेज छात्रा थी। रिया अपने दादा का ख्याल रखती थी और उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती थी। एक दिन रिया ने दादा किशनलाल को कुछ खोया खोया सा देखा। उनकी आंखें नम थीं और वे लगातार अपने हाथों को देख रहे थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। क्या हुआ दादाजी, आप ठीक तो हैं? रिया ने चिंता से पूछा। दादा किशनलाल ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, रिया, मेरी वो पुरानी घड़ी याद है तुम्हें, जो तुम्हारे नाना जी ने मुझे शादी में दी थी? रिया ने थोड़ा सोचने की कोशिश की। उसे धुंधली सी याद थी कि दादाजी के पास एक पुरानी सुनहरी घड़ी थी जिसे वे हमेशा पहनते थे, लेकिन कुछ सालों से उन्होंने उसे नहीं देखा था। हाँ दादाजी, मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, वह सुनहरी रंग की थी ना? रिया ने कहा। हाँ वही, दादा किशनलाल की आवाज़ में उदासी थी। वह सिर्फ एक घड़ी नहीं थी रिया, वो मेरे जीवन के कई अनमोल पलों की साक्षी थी। तुम्हारी नानी के साथ बिताए हुए शुरुआती दिन, तुम्हारे पिताजी का जन्म और भी कितनी यादें उस घड़ी से जुड़ी हुई है, पता नहीं कब और कहाँ खो गई। रिया ने अपने दादाजी के चेहरे पर दुख देखा तो उसे बुरा लगा। वो जानती थी

रिया ने अपने दादाजी के चेहरे पर दुख देखा तो उसे बुरा लगा। वो जानती थी कि कितनी यादें उस घड़ी से जुड़ी हुई है, पता नहीं कब और कहाँ खो गई। रिया ने अपने दादाजी के चेहरे पर दुख देखा तो उसे बुरा लगा। वो जानती थी

हम और कोशिश करेंगे। अगले दिन रिया ने गांव के कुछ पुराने लोगों से दादाजी की घड़ी के बारे में पूछा। शायद किसी ने उसे कहीं देखा हो। गांव के बुजुर्गों ने ध्यान से सुना, लेकिन किसी को भी उस घड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रिया निराश हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि क्यों ना घर की पुरानी चीजों को एक बार फिर से ध्यान से देखा जाए। हो सकता है कि वह कहीं गलती से गिर गई हो। उस दिन रिया ने घर के पुराने स्टोर रूम की सफाई करने का फैसला किया। यह कमरा कई सालों से बंद पड़ा था और इसमें पुरानी और बेकार चीजें भरी हुई थी। धूल और मकड़ी के जालों के बीच रिया एक एक चीज को ध्यान से देख रही थी। अचानक उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी। वह बक्सा दादाजी के पिताजी का था और बरसों से बंद था। रिया को याद आया कि दादाजी ने एक बार बताया था कि उनके पिताजी अपनी कुछ खास चीजें इस बक्से में रखते थे। रिया ने बक्से को खोला। उसमें पुरानी किताबें, कुछ दस्तावेज और कुछ छोटी मोटी चीजें रखी थी। जब उसने बक्से के सबसे निचले हिस्से में देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वहां एक मखमली कपड़े में लिपटी हुई वही पुरानी सुनहरी घड़ी रखी हुई थी। रिया ने धीरे से घड़ी उठाई। उस पर थोड़ी धूल जमी हुई थी, लेकिन वह बिल्कुल सही सलामत थी। उसकी चमक अभी भी बरकरार थी। रिया खुशी से चिल्ला पड़ी और तुरंत दादाजी के पास भागी। दादाजी, दादाजी, देखो, रिया ने हांफते हुए कहा। घड़ी उनके सामने रखी। दादा किशनलाल ने अपनी कमजोर आंखों से उस घड़ी को देखा। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर जब उन्होंने उसे अपने हाथों में लिया तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। यह तो वही है, उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह मिल गई। उन्होंने घड़ी को अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। रिया ने कभी अपने दादाजी को इतना भाविक नहीं देखा था। कहाँ मिली यह रिया? दादाजी ने पूछा। आपके पिताजी के पुराने बक्से में दादाजी, स्टोर रूम में, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। दादा किशनलाल ने घड़ी को ध्यान से देखा। उस पर कुछ खरोचे थी, लेकिन वह उनके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। उन्होंने रिया को गले लगा लिया और कहा, धन्यवाद रिया, तुमने मेरी एक अनमोल याद वापस दिला दी। अगले कुछ दिनों तक दादा किशनलाल हमेशा उस घड़ी को पहनते। हर बार जब वे उसे देखते तो उनकी आंखों में पुरानी यादें ताजा हो जाती। उन्होंने रिया को उस घड़ी से जुड़ी हुई कई कहानियां सुनाई। उनकी शादी के दिन का उत्साह, उनके बच्चों के जन्म की खुशी और उनकी पत्नी के साथ बिताए हुए अनगिनत पल। एक शाम जब रिया दादाजी के पास बैठी थी तो उन्होंने कहा, रिया, यह घड़ी सिर्फ एक वस्तु नहीं, ये मेरे अतीत का एक हिस्सा है, मेरे अपनों की।

0: अपनी टूटी हुई खिलौना गाड़ी को देखकर उदास बैठा था। दादा किशनलाल ने रिया से कहा, रिया क्या हम इस बच्चे के लिए एक नई खिलौना गाड़ी खरीद सकते हैं? रिया ने सहमति जताई और दोनों ने मिलकर उस बच्चे के लिए एक सुंदर सा खिलौना गाड़ी खरीदा। बच्चे की खुशी देखकर दादा किशनलाल और रिया दोनों को बहुत अच्छा लगा। घर लौटते समय रिया ने दादाजी से पूछा, दादाजी आपने उस बच्चे के लिए खिलौना क्यों खरीदा? आप तो अपनी खोई हुई घड़ी मिलने की खुशी में थे। दादा किशनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया अपनी खोई हुई चीज़ मिलने की खुशी बहुत बड़ी होती है, लेकिन किसी और को खुशी देना उससे भी बड़ी खुशी देता है। मैंने अपनी एक अनमोल चीज़ खोई और उसे वापस पाया। अब मैं चाहता हूँ कि वह बच्चा भी अपनी खोई हुई खुशी को वापस पाए। रिया ने अपने दादाजी की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अलग तरह की शांति और संतोष था। रिया समझ गई कि जीवन में सिर्फ अपनी खोई हुई चीज़ों को ढूंढना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दूसरों की खुशियों में भी शामिल होना उतना ही जरूरी है। उस दिन रिया ने एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा। खोई हुई चीज़ की तलाश सिर्फ एक भौतिक खोज नहीं होती, बल्कि यह हमारे दिलों में छिपी हुई भावनाओं और रिश्तों की भी तलाश होती है। और जब हम किसी खोई हुई चीज़ को ढूंढते हैं या किसी और को उसकी खोई हुई खुशी वापस दिलाते हैं, तो हम न सिर्फ उस वस्तु या खुशी को वापस पाते हैं, बल्कि अपने जीवन को और भी अधिक समृद्ध और सार्थक बनाते हैं। दादा किशनलाल अपनी घड़ी को सीने से लगाए रिया के साथ धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहे थे। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जो किसी अनमोल चीज़ को वापस पाने और जीवन के एक गहरे सत्य को समझने के बाद आती है।
1: खोई हुई चीज़, अभी आप सुन रहे थे ये कहानी। कथाकार थी कमलेश्वरी सलाम। नमस्कार, जगदलपुर में अब बारी है मधुरिमा की, पर पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों में 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: नमस्कार, जगदलपुर में अब पेश है मधुरी माँ। रास्ता, सफर, मुसाफिर, मंजिल, ये सभी चलते रहने और जिंदगी के बहाव के प्रतीक हैं। जिंदगी भी कितनी दिलचस्प है, कभी मंजिल का पता नहीं होता, बस कदम है कि चलते जाते हैं। अजहर अब्बास लिखते हैं, जो रुकावट थी हमारी राह की, जो रुकावट थी हमारी राह की, रास्ता निकला उसी दीवार से।

मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफर लगता है। जी हाँ, सफर चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर कोई अपना साथ ना हो तो मंजिल भी अधूरी सी लगती है। जब कोई प्यार से साथ हो चलने की अर्जी लगाए, तब दिल की बातें शायद ऐसे ही लफ्ज़ बन उतर आती हैं।

मुसाफिर तेरा जिक्र करते रहे, महकता रहा रास्ता देर तक। कभी कभी वक्त लोगों को दूर तो कर देता है, लेकिन दिलों के रिश्ते वहीं के वहीं ठहरे रहते हैं। जब बरसों बाद अपनों से मुलाकात होती है, तब हर पुरानी याद फिर से ताजा हो उठती है।

साथ का जश्न मनाते हुए आखिर में बात उस एहसास की जिसके बिना जीवन अधूरा लगता है। प्यार ही तो है जिंदगी में रंग भरता है, मुस्कान देता है और कई बार खुदा का पता देता है।

0: के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
1: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिस कर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्र

0: सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
2: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो एआई आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री दहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर

0: बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मॉनसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देवभूमि से रूठे

0: 96.89 यानी 756 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए विभिन्न बोलियों में लोकगीत कार्यक्रम लोक मंजरी में। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं हल्बी लोकगीत से। स्वर है दयो और साथियों के।
1: ऐसा लो पी खा दी ला पी ले लो ला दे वो सारो

போனாக்காக.

ইরাল বালকরা নি কোরি পিলা কে ছাড়ি খায়।

밤에도 이

ada gece

दयो और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे हल्बी खेल गीत कार्यक्रम लोकमंजरी में। अब सुनिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत। इस गीत को लिखा है संत मसीह दास ने, स्वर है शेख हुसैन और साथियों का।

आकाशवाणी जगदलपुर से आप सुन रहे हैं विभिन्न बोलियों में लोकगीत कार्यक्रम लोकमंजरी में। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं भद्री लोकगीत। गायक कलाकार हैं लखमुराम और साथी।

0: रेडियो सुन्तु सपाय भाई बहन मन के खूबे खूबे सेवा जुहार मोचो माटी आजिचो ये कार्यक्रम ने आमी धरुणबाती इलू से हलबिने कहानी पाठ ठसा आरु भत्री कविता पाठ तो आजी आपन मन सुना से सबले पहल सुना हलबी कहानी सुनाए सोत शिव कुमार पांडे।
1: मचो कहानी चो टप्पी आए मचो माई आया आया चो नाव दूसर आए तेबले बलती के सफा गांव भर चो लोग माई बलुआ आया चो बुबा भी ता परदेसी बामन रहो हुन आया के लाड़ ने माई माने माँ बले हुन के सुनुन सफा गांव कारी लोग आया के माई बलुक धरला असन ने आया चो नाव माई पड़ली माई चो माने हल्बी ने खुबे पीला चो आया के बलुआ जसन कुकड़ी चो खुबे पीला रसोत हुन पीला मन चो आया के माई बलुआत हुनी कटाव ने आया चो नाव बले माई होली होई दे आया बले आपलो नाव के जाहिर कर ली आरु हमन सफा पीला मन के सकलुन सकलुन पोसुक धर ली बरसा दाए पानी के पानी नी बल ली घाम दाए घाम के घाम नी जान ली सीत दाए सीत के सीत नी बले आरु आम के पोसली काही कमती नी कर ली आया चो बिहाव गावे चेने गोटोक बामन संग हो रहे ते तसील चपरासी रहोत जेठ देवर सतरा मिसुन सफा पांच जन होते रहोत मुनिस चो तनखा ने गुजारा कर तो अड़चन होए फेर बले लिंगिड तिंगिड गुजारा सतरा चो पूजा पाठ करुन जोड़ लो चाउरदार ने घर चलु आए असने जीवना नहकते रहे जेठ देवर चो बिहाव होली कुटुंब वाड़ली जीवना कठिन हो धरली मुनिस चो पाए ने घाव होली जूता मोजा पिंधुक नी होए नौकरी बले छांडी होली कुकड़ा हाट मने मूंगफली बेचुक मुरियाला हाट हाट पसरा मंडाउन खातो पीतो चो जीनिस घेन तो बेच तो धंधा करला व्यापार बाढ़ते गेली खुबे पैसा कमाला घर बनाला बेड़ा घेनला खुबे मसागत करला आरु खातो बेरा बाबा के कैंसर बीमारी मिरली खुबे इलाज पानी कराला फेर बले न्यू जरला आरु हुनी बीमारी ने ते सरक सिधारला आया आपलो भरदर जवानी ने रांडी होली आमी मन नानी नानी पिला रलू नानी भाई कोरा ने रहे आया ऊपरे खुबे दुखा पड़ली बेरा ऊपरे काचो बस नी चलु आए पूरे आया चो पूरे सकल जीव ना रहे आपलो के समारली आरु बाघनी बनुन पीला मन के पोसुक धरली आमी तीन भाई आरु गोटिक बहिन रहू आया चो दुखा इथाई निसरली जेठ देवर दोनों पारी पारी ने सिधारला ती चो पान भर पीला मन जेठ चो पांच जन लेकी और देवर चो गोटोक लेका गोटोक लेकी के पोस्तो चो पारी बले आया आया पाटकुन नीत गुचली आरु आपलो नाव के उजागर करते सफा पीला मन के पोसुक धरली आया चो जसन नाव हुसने बूता रांधुन गड़ुन बेड़ा जाए हुताले एवन फेर हमचो मन काजे रांधे आया पढ़लो लिखलो नी रहे फेर बले रामायण आरु पुस्तक मन के पढ़े आपन नी पढ़ली तेचो काजे आम के पढ़ाव लाए सक्कल वाट करे आया गांव चो बेटी बले रहे आरु बहु बले तेचो काजे हुन के गांव चो सफा नाता गोता के मान उपला गुआए जितरो हो सके आया बले सफा नाता गोता के माने काचो बल दुख सुख में ठाड़े होए काके लागलो ने हुन चो मदद करे एचो काजे आया के गांव भर चो लोग खुबे मान देवत जे बाट आया रेंगे हुंचो संगे गोठिया तो बिता मन चो लार लामू रहुआ है आया बल जसन नाता गोता हुसने मान देवन सफा संग गोठिया हुआ है तेचो मन ने नानी बड़े चो विचार नहीं रहे गांव कारी बल आया चो तियार लो बूता के पूरे पूरे होन करत आया सफा ले मया करे मानतर आप लो सबले बड़े बेटा के आया खुबे मया करे करती बले कसन नहीं हुन रहे बल उसने सुंदर डेंग सफा संग सुंदर गोट बाट कर तो बिता आया संग सफा ते के

माया करोत असन सोना महा बेटा की बीमारी धरली। आया हुंचो जेठाने सांगला आया उठाने उन इलाज पानी कराली। मांतर तेनी उजरलो और गोटिक दिने हुंचो बोले चाउर पुरली और हुन बोले सरक सिधारलो। आप लो आईत पूरे जवान बेटा चो मरण आया के खूबे दुखा होली। मांतर होनी चो ऊपरे काचो जोर नी चलू आए आया बल मन के मारून जीव धरली। फेर हुंचो हुनी जीवना आप लो नावसन माई बनून आप लो पान भर पीला मन के पोस्तो बिता। दिन के दिन नी बल्ली रात के रात नी कहे बरमेस हमन ऊपर आप लो जीवना के सारून दिली। आया काय मंदिर काय देवाला आमचो तिता माने रात दिने लगू रहुआ। मैं जानुक लाइक रहे तेबे बल आया के अस्थिर ले बटलो नी दखले। खाली लक लक लक लक बुताय कर तो दखले बही भूति हो नाम के जतना तो चुवाट ने आप लो जीवना के नसाते जाए। बेरा जा तो बेरा नी लागे माई चो पीला मन बाढ़ते गेला। बिहाव लाई खोले ने आया पारी पारी ले सफा चो बिहाव करुन दिली। सफा नंगत होली आया चो नानी बेटा बेड़ा खाड़ा घर द्वार चो देख रेख करुक धरलो। दोनों बुहारी आया चो सेवा ने रहो असन लागे एदा आया चो अस्थिर जीवन आईली। आया बले बेटा बोहारी मन के घर द्वार के सोपुन अस्थिर ले जीव तो चो विचार करते रहे। हुंचो जीवना ने अस्थिर कहा सुख चो उजड़ ने रेंगलो ने दुख छाव बनुन पाटकुदिन ए उग धरे से। उसने आया चो बोले होली आया चो गोटकी बेटी आय आप लो ससुराल ने मुनिस संगे सुख ले जीवना जीवती रहे। मुनिस बीता सरकारी स्कूल ने गुर्जी रहे गोटोक नोनी गोटोक बाबू रला मांतर हुंचो सुख ले जीव तो भगवान के नी भावली। दमांत के बल बाबा आसन कैंसर बीमारी मिरली। खूबे जतन करला कहाँ कहाँ नीला मांतर हुन बीमारी बाट नी दिली। आया चो दमान नानी नानी पीला मन के छांडुन सरक सिधारला। खबर सुनुन आया के काठ मारली। बेटी चो बोले हुनी गति होली भगवान जे गति मचो हो रहे

0: बसा तुमके सुनाऊं दे ठसा, तुमचो जीव के पानी बेरा लागे दे काय रस रस। संगवारी मन ठसा सुना तो काजे आजी आमी सपाए था अमरलू से, और ठसा कार्यक्रम ने मैं माधुरी यादव करे से जुहार अमोचो संगे। ठसा सुना तो काजे आसोद भाई फूल सिंह कश्यप, बहिन पद्मनी कश्यप और भाई अबीन मंडावी। तो संगवारी मन ठसा बलो ने आमचो रोज दिन चो जो जीवना ने आमचो काम बुता संगे हासी ठठा बल हो से नहीं, हुने आमचो काम बल हरे से जीव बल हरिक लागे से हुनी तो है ठसा। तो ठसा के मूर करूं तो सबले पहल मूर कर तो काजे ठसा के मई मूर करे से। माए चाबरी बेटी सुंदरी, माए चाबरी बेटी सुंदरी एथा उथा कुदे बेंद्री, माए चाबरी बेटी सुंदरी एथा उथा कुदे बेंद्री। तो दखा बेंद्री तो कुदली मानतर आमचो ठसा को मानतर आमचो ठसा चो पाली धर तो काजे उन पाली के बल कुदाऊं एबर भाई फूल सिंह कस्याव बाटे।
1: अले फूल सिंह का दायित्व ही ठसा मार तो
2: हे दे बल्ले ने मछले बल को डॉक्टर सा हास है ना। अले खातो पी तो हानि वानी दगले जीव के लागे, खातो पी तो हानि वानी दगले जीव के लागे। सत्य बात है, दगलो भी दिन के नहीं कहा दादा दी कौन जीव के बाद है।
0: तो सत्य गोटा है,
1: सत्य गोटा है।
0: तो एदाय फिर आमी भाई अबीन मंडावी बाटे कुदाउने आम चोठा सा चोपाली के।
1: मैं बोले गोटो ठसा बोले से अरे दादा बहु झगड़ा होला, दादा बहु झगड़ा होला कली मताला बहु डगर जाते रहे डूर का डरा
0: भाई अबीन मंडावी चो ठसा के सुन लू। एक बार फिर आमी ठसा का जे आग दे बहन पद्मनी कश्यप के।
3: मछलक बल गुडुक टसा से कंडिया पाल चो बोंडिया बाचा, कंडिया पाल चो बोंडिया बाचा, सोसन पाल चो गाय, कारीमाला संग गुतलू गुरिया, अच्छा पब्लिक काय
0: अच्छा रहे काय फबली ने। तो दखा सन है कि ठसा बलो ने तो मन खूबे हरिक लाग हुआ है। तो खेंडी गोटोक मोचो लग बोले आसे मैं बल हूं के सुनाऊं दे से। कांदा ते कांदा बिन बुंचो कांदा, कांदा ते कांदा बिन बुंचो कांदा, घरे नी आए रांधा और दुआरे
1: दुआरे साए सा कांदा।
0: ए बार फिर आमी भाई अबिन लगे जाऊं ने।
1: मचो ठसा है करिया बद्री कारी मछरी, करिया बद्री कारी मछरी, सपूरदान चो बात, सपूरदान चो बात, काय सुंदर खाते रहे मके दिला भात, ये स्वर के नी जान लो ने खुंद दे जोड़ा लाल।
0: तो भाई अबिन कुमार तो सुना लो आप लोग ठसा के। तो एक बार फिर बोलूं आमी बहिन पद्मनी बाटे।
3: मतलब बोला से कह दीदी गोटक टसा ने ले जा ले जा ले जा बिनता बेजा, ले जा ले जा बिनता बेजा, रानी राजा गुड़िया खा जा, कुबे मजा है दे मोहरी बाजा।
0: तो बहन पद्मनी चो ठसा के तो सुन लू। एक बार फिर आमी ठसा सुनाते सुना तो काजे अमरु भाई फूल सिंह कश्यप लगे।
2: हाँ मतलब बोला से ओसुत या जा येसुत पलना फलनी, ओसुत या जा येसुत पलना फलनी, आगे किधरो रुसुम रहे हानी बानी, आगे किधरो रुसुम रहे आनी बानी, आगे रेली डेकी कोटन एवे उसन नाई
1: नाई।
4: सत्य
0: सत्य जुग बदली तो आमचो जीवना संबल बदली ने। तो हुन गोट के काय ठसा हिसाब ने बोले आए और गोट सत्य बोले और बल तो गोट के बल तो रहे और नी बल तो गोट नी बल तो लोग मन काजे नहीं। ओगाय रहू के एक बाटा, ओगाय रहू के एक बाटा और चूल चूल के दुई
3: बाटा।
0: तो एक बार फिर आमी ठसा सुनतो काजे जाऊं भाई अबिन मंडावी लगे।
1: मोचे लोगे आसी गोटोक ठसा नदी कटा कटा कागड़ा बाट, नदी कटा कटा कागड़ा बाट, हमी खेलुआम गरीला, हमी खेलुआम गरीला, तेबे घरे मीरे दे हमके बात नाले नी मीरे।
0: तो भात खातो काजे गरीला।

0: खून हम सब जो बीच ने गोट फुटुआ सन रहुआ कहीं गोट ने सब एक सुरता हो उन एक राय हो उन काम के करतो का जे आमी मन विचार करू हम हर हो कि आम चो काम करिया ठाने हो गोटो का सन फूटू रहू है कितरे ही उनके समझा ले उन गोट उनके समझ नहीं है तो असन सब चो जीवनान बल होए से उन ठसा बोलिया और आम चो जीवनाले जुड़लो गोट बोलिया और खा गोटो काम के असन बल लागे से नहीं फूटू ते फूटू और काय सुआ चो फूटू ने तो और हुन स्वाद बलो ने नहीं भूख इतरो लागे से कि रांधा चूड़ी से नहीं चूड़ी से हुन बलाम के सुरता नहीं तो बलो ने काय आए कि फूटू बलो ने हुन इतरो आम चो नरम मुलायम तीज बोले आए और बुद्धि ने फूटले फिर हुन इतरो कड़क बोले आए तो एक बार फिर आमी अभिन भाई लग जाऊं हुन चो हाथ ने ठसा से हुन सुना
1: कुटी बीड़ी माचिस काढ़ी कुटी बीड़ी माचिस काढ़ी शहरे चले से गाड़ी शहरे चले से मोटर गाड़ी जीव तो आम चो दर सकल जीव तो आम चो दर सकल कसन करू हम केती बाड़ी
0: तो एक बार फिर आमी बहन पद्मनी बाटे जाऊं हुन आप लोग ठसक सुनाओ ने
2: लिटी लाटा बाड़न काटा लिटी लाटा बाड़न काटा कले पाल बारू पाटा मैं जाऊ रहे बिया घरे मकेनी मेरे बाटा
0: आसन बिया घर जाऊ रहे पद्मनी
1: बाटा नहीं मिली बात सर ली उन बात नहीं
0: दो पद्मनी बहन जो ठसा पाचे फिर आम फूल सिंह भाई बट जाऊं और हूँ नाम के आप लोग ठसक सुना
3: केली कूटी वाला का केली कूटी केली कूटी वाला का केली कूटी डोगरा डोगरी झगड़ा वाला चाकुंदी लूटी
2: सत्य आए बंदीस ने झगड़ा वाला पे चापू आए का लूटी लाला ने आले मतलब बल गोटक टसा आसे ताने चल मैं सुनाएं ता आय सुख सी आय बांगा आय सुख सी आय बांगा कोके नी सांगा हम चो गारे सगा हिला चुचाय सुकलो बांगा
0: तेबे तेबे बोलते रहे तेबे बोलते रहे काके नी सांगा
2: चुचाय सुकलो बांगा कोके सांगवा सुकलो बांगा आय बोलते
0: सब चो सुरता करते करते नी गोटक मुचो लगबल यासे मैं बस सुनाऊं दे किरकी कुड़िया मंजूर झार किरकी कुड़िया मंजूर झार दख समधी मचो चार
1: हम के नहीं आए सुरता कहाँ ले पिंदुआ मम्मी कुर्ता हम के नहीं आए सुरता कहाँ ले कुर्ता तुम चो ऐसे कुबे सुरता
2: मतलब बोल गोटा कासिता चोलनी आना चोलनी आना चोलनी आना चोलनी आना दान चोलाए बू बस्तर चोले का मन जो ऊपरे कोंडा रखाए बू
1: गोटो खास्ता पकना पत्तर ली बला काय पकना पत्तर ली आवरी करीन लेखी मन चो तोतना उतर ली
2: आम चो फिर तोतना उतर
0: तो आज जो ठसा ने सब आप लो ठसा के सुनालास ने तो ठसा सरासरी ने नहीं मैं बोलते रहे लेकी मंचो थोतना उतरा तो गोट के तो अभिन भाई बल लो तो खिंडिक हुनी गोट संग आमचो आजीचो ठसा के यथा सरासरी करूं मैंने तो एबर पाली धरा तुमी
4: चाउर चोकनी बला काय चाउर चोकनी चाउर चोकनी बला काय चाउर चोकनी पूरे बसलो लेकी मंचो मुले होकनी
0: अले तो पद्मनी आमी फिर काय कच पाछे रवाता है आमा टाकू टाकू बला काय आमा टाकू टाकू बला काय आमा टाकू पूरे बस को लेका मन के बरा कुड़ाने टाकू तो संगवारी मन जितरो ठसा धरू नाम चो भाई बहन मन अमरु रला आज चो ठसा रली बहन पद्मनी फूल सिंह कश्यप अबिन मंडावी और मैं माधुरी यादव तो आज जो ठसा सुनतोन कसन लागली आम के सांगा से चिट्ठी पत्र लिखून तो एबर आम जो ठसा कार्यक्रम सरासरी होली बिदा दिया जातो पूरे सफाई सुनतो संगवारी मन के आमी सफाई जो बाटले
5: जुहार हाँ ठसा तो सुनलास एदा सुना भत्री ने कविता पाठ सुनाए सोत श्री रूपनाथ जोशी
6: मोर

पहला कविता नाम है शीत। जश्न ने सरला दसरा जोन धीरे धीरे आयसी आचे ए आई कौन पीला अमता चाल आचे बुटुक बुटुक ठमकी आचे इस रस रसा मुरी आयला पहा पाई के सूर्य आयला दखानी इतिक इतिक थर थराई मुरायसी आचे पीला जिला डुकरा डुकरी के खुरलायसी आचे इसरा करसी आचे घेना कामरा जो हवा काट काय दाए भकवा होई ना रहा खाय बार डाट दारू रईसी काचा ना धरे जोय पचार ले बाय ले बलसी चूल्ला खाईविस होय होय मुंह के फुलायसी गुड़ की नेसी ना जानिस मुरियाला सीत खोटला दारू के रुंडिया इरा तेबे अगुटा लगे बसी गायबिस गीत आजी ना दकलिस सक्रिया पहा पाई के थर थरायला डसना के सकली मुई हाथ धोबा दाए देह के हलायला आजी जोंदरा कुकड़ा पुने ना बासे कावरा ना करे काव खतड़ी बरकी के जोंसी आचे अंगटा लगे जाओ मंगलू सोड़कू गागरू बुटकी मस्ती धरी आसा खोटला जोय रस रसा लापी लापी बसा सुकला पत्थर के ना मेंडावा खोटला जोय के भड़कायसी लापी सर की बसी रहा सब देह चढ़चढ़ायसी ये मोर गोट के सुना मंगली सोनी कांदरी सुकरी नितू बरसा महीना सरासरी के बदल सी आचे ऋतु दखानी लिंगड़ी उठाई चमास पराई मुरियाला आसी पहुंचला सीत छतड़ी सना भितरे पसलाई कामरा होयला मीत सक्रिया उठले हाथ गोड़ थर थरी जायसी बांधी होयसी मुठी हांडीर पानी के छुईक ना होय छाय जागा ने बसिक ना होय घर भितरे पसिक ना होय जोर जोर ने गोठिक ना होय ना लिबावा धरला लुटी अगोटा लगे लापी बसी गायते रहा गीत बरसा पानी सरते खन आईक मुरियाला सीत हाटर गुल्फी बर्फ के पुने ना खावत बे सकर पन्ना के पुने ना छुअत बे काकड़ी बेलतीर पुने उतर सी आचे दाम ठंडा जीनस के पाचे खाएबू छेकोता घाम कोनी खाए भाई गरम चाह कोनी खाए भाई भाजा चमास महीना लटक बुटक शीतकाल ने मजा धंगड़ा सियान पीला टोकी शुक्ला खेंदा के आन भाई झिकी छाली मन के बेची आन भाई आवरी आन भाई किटका धंगड़ा पीला दारू आंसी बाले खोसी झिटका सगा आसो समी आसो नोएले आसो मीत कमानी गोट के पाचे गोठिया है भाई आगे गोठिया है भाई सीत हाय हाय एबर लाइक मुरियाला सीत सीतकार ने भूंजी खाए भाई बूटा संगर चना धान कमाओ के कोठार बूता डांडा कमाओ के घाना पानी साल भाग मानी साल ओढ़ नोयला माने बरकी डोकरा डोकरी चूल्हा के ना छाड़त जवान जिबाई सरकी ना जाने पीला ना जाने सियान जाड़ नुहाई मीत हाथ गोड़ थर थर सी आचे कार्तिक मासर सीत सीत काजे काचा गज के ना गोंदा पाचे पड़बास फांदा बंद सरले बरसा ना करे बंद होइसी रांदा चाउर पैसा धरे घरे रहले बैरी होइसी मीत कठा बसी गोठाले पुने तार होइसी जीत शीत के संभाला कामरा वड़ा नासारा बन के बनर रुक आपनर पीढ़ी घर बना बाय सबके मिर्सी सुख जंगल बाजले बरसा करसी अच्छा होइसी धान गरीब अमीर बराबर होय बाय सबके मिर्सी मान खायबा काजे चाउर मिर्सी गायबा काजे गीत पाठ करला पूरे पाठ पढ़ला खुबे लागसी सीत चार चमास भोरी गला एवे आयला सीत। मोर दूसरा कविता नाम है कोनास ना तुई पहा पाई के कुकड़ा डाकला फर फर फर पोंगर पोहला सोयला डसना के सरकायला बुतला जोय के जगायला कसलार पानी के मुके धोबाय दाए आईसी आचे ओडलार कामरा के ढींडा मुंडा करी ताकसी आचे हड़की दाए जनकर लप छप परछाई दकी परछाई पुने डरे डर लुका छिपा सिकोड़ काकड़ मुराला झाकी मन मन अलौकिक आशा रखी भीतर बाटे दक्षी आचे आकाशर चातक चेड़े परा प्रेम नजर ने ताकसी आचे डसना ने बसी चेतला माने पचारला गोबला धुंग्या के खकारला ठहकार ने गोठ्यायला आवरी पुस्सी आचे जोर लगाई बलसी आचे कोनासना तुई आयला माने हिम्मत के रूंडायला गोड़ के मंडायला खंडिक लाजे लाज अलप मा रिस ने बलसी आचे तोर भाचा है मुई तुई पने नाचिताला आसन बलबी आस गोठाबी आस खर खर रात रले गोठाले पुने फुबुआई मांतर ये भी।

अभी आप सुन रहे थे लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी, संपादन था बलबीर सिंह कच्छ का। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम हम समर्पित कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की महान पार्श्व गायिका की पावन स्मृति में, जिनके निधन के समाचार ने संगीत प्रेमियों को अत्यंत शोक में डाल दिया है। आरंभ करते हैं उनके गाए इस गीत से, जो सदा ही अविस्मरणीय रहेगा।

साहिब 28 फरवरी सन 1985 को प्रदर्शित हुआ था। इस फिल्म के निर्माता थे मुशीर रियाज, जबकि निर्देशन किया था प्रसिद्ध निर्देशक अनिल गांगुली ने। फिल्म का संगीत दिया था सुप्रसिद्ध संगीतकार बप्पी लहरी ने और गीत लिखा था अनजान ने। आइए सुने फिल्म का अगला गीत।

अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। साहिब एक मध्यवर्गीय परिवार की भावनात्मक कहानी है। परिवार का सबसे छोटा बेटा एक प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी है, जिसके सपनों और त्याग के इर्द गिर्द पूरी

कहानी घूमती है। अपने परिवार की खुशियों और जिम्मेदारियों के लिए वो अपने व्यक्तिगत सपनों का बलिदान कर देता है। फिल्म रिश्ते, संघर्ष, जिम्मेदारी और त्याग की मार्मिक कहानी प्रस्तुत करती है।

फिल्म साहेब में अनिल कपूर ने निभाया है सुनील शर्मा का किरदार, जिन्हें प्यार से लोग साहेब कहकर पुकारते हैं। सुनील की प्रेयसी हैं अमृता सिंह, जिन्होंने नताशा नामक किरदार निभाया है। जहां अनिल कपूर का पात्र संवेदनशील युवक का है, वहीं अभिनेत्री अमृता सिंह नजर आई हैं चुलबुली लड़की के रूप में। अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं राखी, उत्पल दत्त, विश्वजीत, विजय अरोरा, दिलीप भवन, देविन वर्मा और सत्येन कपूर।

यदि फिल्म साहेब के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो साहेब वर्ष 1985 की सफल फिल्मों में गिनी जाती है। दर्शकों ने इसकी भावनात्मक कहानी और अनिल कपूर के अभिनय को काफी सराहा। फिल्म ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और समीक्षकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। फिल्म साहेब के संगीत निर्देशक थे बप्पी लहरी। इस फिल्म के गीतों को स्वर दिया था किशोर कुमार, आशा भोसले, एस जानकी और बप्पी लहरी ने। आज जब हम बात कर रहे हैं महान गायिका एस जानकी जी की, हम उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहे हैं, तब उनके स्वर से सजे इस गीत से करते हैं आज के कार्यक्रम का समापन।

0: इस गीत के साथ कार्यक्रम एक एफएम से अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी साहेब। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार एकांश हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: प्रादेशिक समाचार,
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। सत्र आज से शुरू हो रहा है नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ। और प्रदेश में आज से वर्षा की गतिविधि में फिर से हो सकती है वृद्धि। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज सुबह 11 से शुरू होगा। यह सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र के दौरान प्रश्नकाल तथा वित्तीय कार्यों के साथ ही 8 से अधिक संशोधन विधेयकों पर चर्चा और विचार किया जाएगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कल कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया। शोक दिवस के दौरान देशभर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगी। मंत्रालय के अनुसार पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सरगुजा जिले में संस्कृति और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ 11 से 18 जुलाई तक जिले में परिवार नियोजन, मातृ शिशु स्वास्थ्य और छोटे परिवार के महत्व का संदेश देगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पीएस मार्को ने बताया कि पखवाड़े के दौरान सभी स्वास्थ्य संस्थानों में परिवार नियोजन संबंधी निःशुल्क परामर्श और सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कवर्धा जिले में आयोजित कृषक संगोष्ठी और प्रमाण पत्र वितरण समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना से जुड़े 4691 गन्ना उत्पादक किसानों को नवीन अंशधारी सदस्य के प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान श्री शर्मा ने कहा कि यह पहल किसानों को सहकारिता की मजबूत भागीदारी से जोड़ते हुए उनकी आय बढ़ाने और क्षेत्र में गन्ना उत्पादन को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के 84 युवाओं को देश की प्रतिष्ठित नवरत्न कंपनी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC में निःशुल्क व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। दंतेवाड़ा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन, जिला रोजगार विभाग और माई भारत संगठन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण अवधि के दौरान युवाओं को हर महीने 9,000 स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। राजधानी रायपुर की कमिश्नरेट पुलिस ने 29 लाख कीमत का 46 किलो से अधिक गांजा पकड़ा है। इस कार्रवाई में

0: दंपत्ति सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ टिकरापारा थाना में मामला दर्ज किया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि यह गांजा ओडिशा के कालाहांडी से लाया गया था। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश भर में वर्षा की गतिविधि में फिर से वृद्धि होने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ और प्रदेश में आज से वर्षा की गतिविधि में फिर से हो सकती है वृद्धि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए गुलशन, इसमें आज हम लेकर आए हैं पुराने नगमे।

आज का पहला गीत फिल्म कश्मीर की कली से। इस गीत को संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने। आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

आप सुन रहे थे फिल्म कश्मीर की कली से इस गीत को। एसएच बिहारी की शब्द रचना थी, संगीत रचनाकार थे ओपी नैयर। अब सुनिए फिल्म आखिरी खत का ये गीत, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने। बोल कैफी आजमी के हैं, धुन बनाई है खयाम ने।

कार्यक्रम गुलशन में आज आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मी गीतें। पुरानी फिल्मी गीतों में अब हम लेकर आए हैं फिल्म जब प्यार किसी से होता है का ये गीत, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी जगदलपुर से प्रसारित किया जा रहा है। इसमें अब सुनिए राजकुमार फिल्म का नगमा। आवाज मोहम्मद रफी की है, खलाम हसरत जयपुरी की, मौसिकार हैं शंकर जयकिशन। आइए सुने मोहम्मद रफी की आवाज में इस गीत को।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए आशा भोसले की आवाज में ये गीत। साहिर का लिखा ये गीत है फिल्म वक्त से।

0: इस गीत के साथ कार्यक्रम गुलशन अब समाप्त होता है। आज इसमें आप सुन रहे थे पुराने नगमे, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गुड़दुम में गोंडी लोकगीत, कलाकार हैं संतू राम और साथी।

लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में अभी आप सुन रहे थे संतूराम और साथियों के गाए गोंडी गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

मीडियम वेव 396.62 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्ज एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 11:01 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

मजबूत पटकथा, शानदार संगीत, बेहतरीन संवाद, एक्शन और रोमांस से भरपूर फिल्मों के निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा, आज यानी 13 जुलाई आपके जन्म दिवस के अवसर पर समर्पित है ये कार्यक्रम।

निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ। 5 साल की उम्र में माता का साया उठ गया। 8 साल की उम्र में पिता ने बेसहारा छोड़ दिया। बचपन का दौर बेहद ही कठिन था। पढ़ाई हो नहीं पाई, गलियों में भटकना मजबूरी बन गई। किसी तरह माया नगरी मुंबई तक पहुंच गए। जेब में रुपए नहीं थे, रेलवे में दिन गुजारा करते, कई रात भूखे पेट सोते। परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, लेकिन हौसले बुलंद थी। जैसे तैसे फिल्मों की सेट तक पहुंचे। वहां छोटे मोटे काम जैसे फिल्म के सेट पर आम तौर पर होते हैं, सामान इधर उधर करना, कलाकारों को चाय पानी पिलाना आदि किया करते। और यही सब करते हुए बचपन से जवानी की दहलीज तक पहुंचे। किसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिल की तमन्ना थी, कुछ तो करना ही है। हार नहीं मानी और लगे रहे।

0: अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया।
1: अरे तो बैंक को कंप्लेन करना।
0: बैंक को लिखे एक महीना हो गया है बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं।
1: तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो।
2: रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ऑम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेन को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेन सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बने, सतर्क रहिए।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हां, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर

बेहतर डायरेक्टर को सलाह दिया करते, उनकी सलाह और सोच का बेहतरीन परिणाम मिलता। सीनियर्स जानते थे आप प्रतिभा के धनी हैं और बेहतर करने की क्षमता रखते हैं। साल 1968 में किस्मत का दरवाजा खुला। शशि कपूर और बबीता संग पहली फिल्म डायरेक्ट की फिल्म थी हसीना मान जाएगी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और आपकी जिंदगी बदल गई। आखिरकार जिसकी तमन्ना थी वो मंजिल मिल गई। सुनते हैं इसी फिल्म का नगमा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। हमारे आज के कलाकार हैं निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा। कुछ समय बाद प्रकाश मेहरा की मुलाकात अमिताभ बच्चन से हुई और इस मुलाकात ने इतिहास रच दिया। बात सन 1973 की है। उस समय अमिताभ बच्चन की पिछली कई फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। प्रकाश मेहरा ने जंजीर बनाने का फैसला किया। उन्होंने पहले धर्मेंद्र को अप्रोच किया था, किंतु धर्मेंद्र उस समय के टॉप एक्टर्स में से एक थे, इसलिए वो उन्हें कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके पास डेट्स नहीं थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने सोचा कि सुपरस्टार का सप्लीमेंट सुपरस्टार से ही हो, लेकिन कोई भी उस मूवी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। एक दिन उनके सीनियर एक्टर प्राण जी से वो मिले और उन्होंने अपने साथ बॉम्बे टू गोवा फिल्म दिखाने के लिए लेकर गए और वहीं पर अमिताभ बच्चन को इंट्रोड्यूस किया। तभी प्रकाश मेहरा ने फैसला कर लिया कि वो अमिताभ बच्चन को अपने साथ काम करने का मौका देंगे, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई हर कोई प्रकाश मेहरा को ताने देने लगा। सबका कहना था कि वो किसी फ्लॉप एक्टर को अपनी फिल्म में क्यों रख रहे हैं। उन्होंने फिल्म जंजीर बनाई और फिल्म रिलीज भी हुई। प्रकाश मेहरा को गहरा सदमा लगा क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के लिए अपना घर सब कुछ दांव पर लगा रखा था, लेकिन बाद में फिल्म का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और देश के अलग अलग हिस्सों में उनके पास फोन आने लगे और उनकी फिल्म सुपरहिट रही और ये फिल्म सफल फिल्मों में से एक साबित हुई। ये उनके प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म थी। आइए सुने एक और गीत।

प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन का साथ चल पड़ा और 6 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिनमें हेरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल और शराबी शामिल है। इन फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया। यंगरी यंग मैन, कॉमिक टाइमिंग और दमदार संवाद अदायगी उनकी पहचान बन गई। श्रोताओं कहते हैं ना, रत्नों को तराशने वाला कोई ना कोई जौहरी होता है, और अमिताभ बच्चन को गहराई से तराशने वाले शख्स थे आप। आपने उन्हें ऐसा तराशा कि उनकी चमक आज तक कम नहीं हुई। ये श्रेय आप जैसे महान कलाकार को जाता है। हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसे निर्देशक हुए जिन्होंने अपने निर्देशन से कभी न भूलने वाले दृश्यों को चित्रित किया। उन्हीं में से एक हैं आप, जिन्हें आज भी भारतीय सिनेमा के एक सफल निर्देशक के तौर पर जाना जाता है। आप एक ऐसे निर्माता हैं जो मुश्किल से मुश्किल कहानियों को भी बेहद सहजता के साथ पर्दे पर उतारने में माहिर थे। सदी के महानायक बिग बी के करियर को एक सफल मोड़ देने का श्रेय आपको ही जाता है। 17 मई सन 2009 को इस दिग्गज ने संसार से अलविदा कह दिया।

श्रोताओं, बिल्कुल इस गीत की तरह अंतिम सांस तक फिल्मों के लिए समर्पित रहे। हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा को भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया, मुख्य रूप से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सन 2006 और 2008 में प्रदान किया गया। दर्शकों का प्यार, अपनत्व, लोकप्रियता भी उनके पुरस्कारों में शामिल है, जो एक कलाकार के लिए अहम है। आप मसाला और ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों के निर्देशकों में शुमार हैं। आपको गोल्डन डायरेक्टर के रूप में भी जाना जाता है।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही कलाकार अब समाप्त होता है। हमारे आज के कलाकार थे निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुँचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लोकगीतों के कार्यक्रम पाटा केंजा में सुनिए गोंडी गीत। कलाकार हैं शंकरलाल सलाम और साथी।

0: अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-25 और अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग विनियम 2026 पटल पर रखेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा विकसित भारत, रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन वीबीजी रामजी योजना छत्तीसगढ़ को पटल पर रखेंगे। वहीं वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क का वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 पटल पर रखेंगे। इसके साथ फरवरी मार्च 2026 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाएगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कल कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया। शोक दिवस के दौरान देश भर में जहां उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा, नियमित रूप से जहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होंगी। मंत्रालय के अनुसार पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। कवर्धा जिले में आयोजित कृषक संगोष्ठी और प्रमाण पत्र वितरण समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना से जुड़े 4,691 गन्ना उत्पादक किसानों को नवीन अंशधारी सदस्य के प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान श्री शर्मा ने कहा कि यह पहल किसानों को सहकारिता की मजबूत भागीदारी से जोड़ते हुए उनकी आय बढ़ाने और क्षेत्र में गन्ना उत्पादन को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश भर में वर्षा की गतिविधि में फिर से वृद्धि होने की संभावना जताई है। राजधानी रायपुर की कमिश्नरेट पुलिस ने 29 लाख कीमत का 46 किलो से अधिक का गांजा पकड़ा है। इस कार्रवाई में एक दंपत्ति सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ टिकरापारा थाना में मामला दर्ज किया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि यह गांजा ओडिशा के कालाहांडी से लाया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। सदन में प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई को दी गई श्रद्धांजलि। कतर के पूर्व अमीर के निधन पर आज भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया और प्रदेश में आज से एक बार फिर बढ़ सकती है वर्षा की गतिविधियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार।

कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सब पाए गांवकारी सियान सजन दादा दीदी और संग जोहरिया कलाकार भाई बहन मन के मैं रामबती करे से जुहार। तो नान नानी पीला मन के बले मोच बाटले खूबे खूबे मया और चुमा। तो भाई बहन मन देखा ये जोन कला बल तो बितियाए हम सपाए चो जीवना ने रहे से बल्लो में कोनी जन्म लो दाय ले सीखुन करी हुआ बल्लो मुन मन चो हाथ पाए असने चलते जाऊआ बोलावे। और कोनी कोनी देखा पाचे लोग चो कला के दखुन करी सीखुआत और हुन बीती के जानुआत। देखा हमन मन तो जानू से ची कि जोन ये मंच पूरा है हुन था ने सबसे बड़े कलाकार बोलो में आत महापुरुष। देखा कितलो नंगत हुन मन ये संसार के बनाला ये मंचपुर के बनाला से जसन कि आजिकालिच जोन समय आए देखा ये चमास बेरा आए जोन हम चो किसान भाई बहन मनात हुन मन आप लो बेड़ा खड़ा ने बुता ने हर बर होला सत हुन मन देखा जोन मुर्दाए बुता करते रुआ तो हुन मन चो बेड़ा ने देखा ये जोन पल्हा रहे से पाला रहे से हुन चो लागुन करी ये सपाए बेड़ा मन काय सुंदर हरा रंग ने दखा देते रुआ। तो उनके दखुन करी बोले जोन किसान भाई बहन मनात हुन मन की तरह हरिक हुआत। और जब ये जोन हरा रंग आए ये रंग जब हरदिया होए से बल्लो में जब हम चो जोन बले बेड़ा ने रोपलो बीती फसल आए हुन जोन फसल आए पाके से तब आए कसन हुन हरदी रंग होए से पीला रंग होए से तब देखा ये किसान जो और जोन हरी खुदिम रहे से हुनके और बड़ाए से असनी देखा ये जोन संसार ने रंग मन रहे से ये रंग मन हम चो जीवना ने हरी उदिमान हुआ और सपाए रंग मन चो देखा अलग अलग मान रहे से कसन बोलो में ये जोन संसार है ये थाने रंग नहीं होलो में देखा कितलो हम चो जीवना बोले फीका फीका होती बोलो में सोजे सफेद रंग और करिया रंग रहती बोलो में हम चो जीवना ने हरी कहाँ रहती हम ही देखूँ से जोन लाल रंग होए से हरदी रंग होए से हरा रंग होए से ये सपाए रंग मन के हम ही देखूँ देखूँ करी हरी खुआ ये जोन रंग मनाए ये हम चो आँखी के तो शांति मिरे से ची बोलो हम आँखी ले देखूँ करी हों से जी मानतर दखलो संगे संगे ये हम चो मन के बले खुशी देवाए हम चो मन ने बले ये हरिक बना हुआ है। बोलो में देखा जोन हम जो घर मन ने तियार बहार बल होए से बोलो में हम ही घर के लिपई पोती करूँ से सरा बड़ा करूँ से तो आजकल तो सपाए घर मन के देखा ईटा पखना चो बनाए सो काय सुंदर हुन थाने पुट्टी लगवात हुन थाने कैक प्रकार चो रंग मन लगवात सपाए घरे अलग अलग रंग रहे से कौन तो कार डिजाइन बनाए सो कौन तो कसन बीती चित्र मन के बनाए सो असन करून करी देखा आप लोग घर द्वार के सुंदर बनावात और जोन बोले आप लोग घर द्वार के असन पलंग करू रसोत चित्र बनान रसोत बोले दखुन करी आप लोग घर द्वार के हुन मन हरी खुआत बोलो में ये जोन घर चो रंग होए से घर चो डिजाइन संग संग दखा घर चो जोन रंग होए से हुन बोले आए कसन माने रखे से बोलम हुन चो लागुन करी बोले घर सुंदर हुआ।

0: दियार बाहर होए से हुन्ने हामी कपड़ा लत्ता बल घेनु से तो हुन जोन कपड़ा लत्ता अलग अलग रंग च होए से तो नानी पीला मन बले मुके ये रंग च फ्राक मिरली और लेका मन बले मुके ये रंग च शर्ट बूट मिरली बोलून करी कितलो हरिक हुआ बोलम ये जोन रंग आए हुन संगे संगे हरिक बोले जुड़ू रहे से और तुमन मन तो जाने साहसी कि ये जोन हम चो होली तैयार होए से फागुन तैयार होए से हुन्ने देखा लोग एक दूसरे के रंग लगवात होली लगवात और एक दूसरे के आए कसन भाईचारा के हुन जोन संदेश आए हुन के दुआत बोलो मैं हुन दिन सपाय रंग मिलुन करी एक दूसरे के जोन लोग मनात हुन मन के मित्रता च भावना हुन बीती के जगवात और असने देखा जोन हम चो ये जोन मौसम मन बल रहे से हुन्ने बोले कैक ठंड रंग रहे बोलो मैं हम ही बादरी ऊपर देखूँ से तो ये देखा हम के नीलिया रंग चो देखा दे से और खाले भूं के देखूँ से बोलो मैं दूसर कलर देखा दे से और जब जब ये बादरी ने पानी अंधार करुआ उदलदाय देखा करिया रंग रहे से ये सप्पा जोन रंग मनाए ये मन चो मान असने तो होए से हम दिया देखा बादरी ने नीलिया रंग रलन बल नहीं पड़े पानी मारत दाय का जे काला रंग बल करिया रंग होतर बल जरूरी चिया करिया रिंग नहीं होलो में हुन थान कहाँ ले पानी मारे दे और जोन बादरी ने करिया रंग होए से हुनी ने तो हुन जोन करिया बादरा हुन थान ले पानी थी पाए से हुन चो लागुन कर देखा हम चो जोन भूई चो जोन पियास आए हुन पियास बुझे से और जसन की कहीं बले लाटा बूटा हो गच खुट हो बल्लो में गोटक जो नया जीवन आए होन बीती फूटे से और जोन हम चो ए संसार ने जोन बेर होए से हुन बल देखा समय चो हिसाब ने आप लो रंग के बदलुआ बल्लो में जोन बिया ने जोन बेर निकलुआ हुन चो रंग काय सुंदर सीतर रहे से और देखा हुने बीती मुंडे बेरा हुन जोन बेर आए हुन घाम के दखुक नहीं हुए कसन बोलो हुन चो जोन चमक रहे से हुन चो जोन रंग रहे से हुन हम चो आँखी ने हुन बीती बर्दाश्त नहीं हुए और हुने बीती देखा दिन ढलते गेलो में सांझ होते गेलो में हुन बीती और कम होते जाए और सुंदर होते जाए बोलो में देखा हम चो जोन आस पास आए बोलो में जोन तीज मन के दुखों से हुन सपाच अलग अलग रंग रहे से जसन की नीलिया पानी च होए से और देखा कैक ठन असन फूल मन बल रहे से जोन सपाय फूल मन च अलग अलग कलर आए बोलो में यार हम ही जोन माने लोग हों से हम चो बोल तो अलग अलग रंग होए से हम चो जोन शरीर चो अंग मनाए हुन मन च बोले अलग अलग रंग रहे से ये देखा ये जोन रंग मनाए कितरो नंगत कितलो सुंदर आए बोलोम सपाए चो जीवना ने जोन रंग आए हों चो अलग अलग मान रहे से बोलो में जोन रंग नहीं होलो में हम चो जीवना बोले आए कसन बेरंग होए दे सादा होए दे और रंगीन नहीं होए देखा ये जोन रंग मन चो गोठा एक तो हम ही गोठियाँ दे ची ऐचे ही संगे संगे हम चो लगे नंगत गोठ मन वाला से आली ये गोठ के हमें सुनो
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना।

आय बोलो में हुन होय से तीन रंग चो होने लागुन करी हुन के बोल सो तिरंगा। हुन ने जोन रंग होय से हुन होय से केसरिया सफेद और हरा। जोन केसरिया आय हुन के दखा जोन वीरता आय हुन चो प्रतीक मानुआत और जोन सफेद आय हुन के शांति चो प्रतीक मानुआत और जोन हरा आय हुन के दखा हरियाली चो प्रतीक मानुआत। बल्लो में ऊपर बादरी में होय से बेर चो लागुन करी केसरिया रंग और सफेद दखा रहू से हामन मन चो रंग और जोन खाले बल्लो में जोन बेड़ा खाड़ा रहे से हुन चो हरा रंग।

ऐसे जोन जीनिस रहे से हुन था ने आय कसन कई बल रंग डालनों में हुन जो परिभाषा बदले से। तो देखा भाई बहन मन, ये जोन रंग है ये तो हम जो जीवना जो खूबे सुंदर हिस्सा है। अगर हम जो जीवना ने रंग नहीं होती तो हम जो जीवना बोले सुंदर नहीं होती। तो असने देखा हम जो जीवना है उनके बोले हम के रंगीन बनात रहा है, उनके रंग संग नहीं, हम के आप लो मन चो नगद विचार संगे, अच्छा काम संगे, और जो हम एक दूसरे रहूँ आओ उनमें भाईचारा और प्रेम बनान करी आप लो जीवना के रंगीन बनाता रहा है। तो ये सफाई गोट मन तो गोठ्यालू भाई बहन मन, मानतर देखा हमें कार्यक्रम चो हिसाब ने कोनी ना कोनी कलाकार चो गोट के कला चो गोट के धरून करी अमरू असनी आज हमें जानवा गोटो कलाकार चो बारे ने जोन मंच नाम है साकर खान मंगतियार। बोलो में ये मनात राजस्थान चो जोन हुन राजस्थान चो जोन प्रसिद्ध लोक संगीतकार और सारंगी वादकात। और एमन जो नात एमन राजस्थान चो होलो कारण ने हुन जोन मरुस्थल बोलो में हुन रेती जगह है हुन समुदाय चो एमन आय कसन गोटक कलाकार आत। तो एमन के हुन थान चो लोग मन रेगिस्तान चो संगीत चो संरक्षक बोलते रहला। जब एमन चो बारे में हम खिंडिक जानू जोन एमन चो जन्म आए 1947 ने राजस्थान चो जैसलमेर।

सीखला। ये सारंगी संगे संगे देखा ये लोकगीत बोले गावते रहला, एमन मांड गीत गावते रहला, कव्वाली और सूफी गीत मन के बोले एमन गावते रहला। जब एमन आए कसन आप लोग सारंगी के बजाते रहला तो लोग आए कसन एमन चो जोन सारंगी आए उनके सुनन करी मंत्रमुग्ध बोलो में मातलो हसन होत, और आए कसन जोन लगे एमन सारंगी बजाय सत बोलो में हुन लगे लोग सुनन करी भीड़ मनाते रहला। एमन के देखा एमन चो जोन कला हुंचो लागुन करी एमन के कैक ठन नाम मन मिरू रली, जसन की सारंगी चो जादूगर और रेगिस्तान चो राजा बोलो संगीत चो राजा बोले एमन के बलते रला। और जसन एमन आए कसन आप लोग सारंगी के बजाते रला तो जोन राजस्थान आए हुन थानो जोन धूल आए और हुन थानो जोन मिठास आए हुन राज चो जोन कला आए हुन सपा एमन चो आए कसन सारंगी चो धुन ने सुना देते रुआ। एमन के देखा एमन चो कला चो लागुन करी 2012 में भारत सरकार उन मन के पद्मश्री ले सम्मानित करला, और बोले एमन के कई ठन असन सम्मान मन मिरली जोन मन चो लागुन करी देखा एमन चो मान बढ़ली, जसन की संगीत नाटक अकादमी होली, और बोले असन कई ठन आय कसन एमन आप लो जोन कला के आए ए बाटे हुन बाटे एमन ए देश होली दूसर देश होली हुन थान थान एमन आए कसन नीला और आप लो जोन कला आए हुनके लोग मन तक अमराला, जसन की यूरोप होली अमेरिका जापान ये सब आए गाँव मन ने आए कसन एमन जाऊन करिए देश मन ने जाऊन करिए एमन आप लोग कला के लोग मन तक अमराला। और जसन की एमन दूसर देश मन ने जाओ तो हुन मन संगे हुन मन चो घर चो लोग हुन मन चो बेटा एमन सब आए लोग जाते रहला और एमन वाले गाना बजाना बोलो में गीत के सारंगी के बजाते रहला। ए मंचो जोन परिवार आए ये देखा सारंगी बजा तो परिवार चियात बल्लो में एमन आप लो जोन पुरखा दाय छो कला क्या है उनके सीखला, और आए कसन आप लो जीवना ने बोले हुन कला के आनला और देखा जोन आप लो बेटा बेटी आत उन मन के बोले सिखाला। बल्लो में ये जोन कला मन रहे से हम जो पारंपरिक रहे से एक हम के आगे बढ़ा तो रहुआ है। और एमन देखा एमन जो निधन होली 1 अगस्त 2014 ने, तो भाई बहन मन ये कलाकार के बारे में हमें गोठ्यालू और जान लू एमन चो जोन गोठाए कि आप लो जोन पुरखती दाय चो कला आए हुनके एमन सीखला, और देखा कितलो नंगत एमन आप लो जीवना ने डालून करी आप लो पीला झीला मन को बल सीखाला। हुन चो लागून जोन एमन चो परंपरा है संस्कृति है जोन कला है एमन चो हुन देखा आगे बढ़ते जाए से और जीवा से असने हम के बोले असने गई बल कला क्या है हुनके सीख तो रहा और आय कसन आप लोग जीवना ने हुनके लगा तो रहा है। तो देखा भाई बहन मन ये गोट मन तो होली ईमानतर में देखें से ये जो चमास बेरा है तो काय सुंदर गोटोक चमास बीती गीत होलन बोले अच्छा रहती। तो तुम चाजे धरुन करी इले से दिलीप कुमार और उन मंचो संगवारी मंचो गावलो गोटोक गीत के आले तेबे बेर नहीं करूँ ये गीत के सुनूँ।

हाँ तो भाई बहन मन, ये काय सुंदर बरसा गीत के सुन लू और मैं देखे से कि हम चले गए और बोले गोटो गीता से गीत के गावला सो दैमती और हनुमान चो संगवारी मन आलते बेर नहीं करूँ ये गीत के बोले सुनू।

हाँ तो भाई बहन मन देखा कितलो सुंदर गीत के हमें सुन लू गीत गोविंद होली और देखा ज्ञान ध्यान कलाच गोडबल होली और मैं देखे से कि मचो जातो समय बल होली आल तब जाए दे तुम्हें नंगत रहा हरिक रहा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

घर द्वार कार्यक्रम सुन तो सब पाए गांव करी माए मन दीदी मन और संग जोहरिया बहन मन के मैं रामबती करें से जुहार और नानी नानी पीला मन के बोले मोचो बाट ले खुबे खुबे मया और चुमा। तो पीला मन देखा तुमन मन जो स्कूल मन तो खुल ली अदाय काय सुंदर तुमन मन स्कूल पड़ुकली हुकला जा साथ घर में छुट्टी रली बोलून करी देखा काय सुंदर खेलते रलास दिन दिन भर मानतर अदाय स्कूल खुली से खेलतर बोले आए मानतर स्कूल जाऊन करी नुआ नुआ जौन शिक्षा मनाए उनके बोले सीख तो रहा है। देखा बहन मन जोन मन घरे पीला मन रसद बल्लो में उन मन जो घर अधिक हरी कुदीम रुआ बल्लो में पीला मन खेलते रसोद पीला मन हंसते रसोद तो ये हमें जोन बड़े लोग रहूं से उन मन हुन पीला मन जो हंस तो खेल तक दखुन करी हमें आप लोग दुख चिंता के भूल कुआ आप लोग जोन बल तकलीफ रहे से उनके भूल कुन करी पीला जो हरिक ने हरी खुआ। तो पीला मन जैसा तुमन मन खेलुआ हास असनी देखा हमन मन जोन बड़े लोग मन रहूँ से हामी बोले तुम चो ईदलो रलो दाय काय सुंदर खेल मन के खेलते रहलू बोलो में देखा सपाय लोग मन जोन नानी रहसो तो आप लोग नानी बेरा पीला बेरा सपाय खेल मन खेलुआ देखा हमन मन बोले आय कसन जोन कोंडी बुचिया चीनी गोटी जोन गोटी होली और बिल्ला होली बारा डांडी पुतरा पुतरी जो खेल लुका छाई छिया छाई झाड़ बेंद्रा और असन कई ठन खेल मन के हम बोले तुम चो असन नानी रलो दाय खेलूँ। अब देखा बड़े हेतने गेलो में ये जोन खेल मना ए मन जो जगह आए कसन घर जो जोन काम धाम आए जोन रांधा बाड़ा होली धुआ पूजा होली ये सब आए तीज मन ऐसे बोलो में जसन जसन हम ही बड़े होते जाऊँ से उसन उसन ये जोन हम जो खेल मनाए जीवना ने ए बीती गूजते जाऊ और जोन पीला मन रसोत खेलून कूदून खाए सुंदर हरिक ने रसोत हन मन जो जीवनान के भी कई चिंता नहीं रहे फिकर नहीं रहे हम मन मन बड़े होते गेलो में दुनिया भर जो झंझट ने फूसन जाऊँ से दुनिया जो चिंता करते रहूँ से खेल कूद के भूल कूरत और देखा उसने ने हम जो जोन जीवना है हन ने हरिक कम होते जाऊ बोलो में ये जोन पीला मन होसत कितलो सुंदर खेलून कूदन हरिक ने रसत तो उसने हम के बोले खेल तो रहा कूद तो रहा जैसन कि बहन मन तुमन मन बल जाने साहस कि जोन आजकाली जोन सरकार मन सरकार आए हुन जोन मेहरार मन जो जीवना ने बाढ़ती कर तो काजे कई ठन असन योजना मन के बनासत बोलो में कहीं बोले काम धाम करूँ दे बोलो में जोन रोजगार अगर खोजूँ दे बोलो में पैसा कौड़ी नहीं रोलन हुन थाने लोन बल मिरे से और कई ठन असन योजना मन बल रहे से कि हुन थान ले पैसा मिलो में हामी कई बल आप लोग रोजगार के कई बल काम धंधा के हम मूर्ख रुक ला सकूँ और जैसन कि जोन बहन मन घरे रसोत बोलो में हुन मन कई काम धाम नहीं करोत हुन मन के आय कसन आर्थिक रूप ले कई बोले सहयोग हो बोलून करी देखा हुन मन के हर महीना हुन महतारी वंदन योजना जो बाट ले 1000 रुपया हुन मन खातान बल डालून देसन बोलो में असन हो से कि आर्थिक रूप ले हो चाहे हर एक क्षेत्र ने महिला मन के मेहरार मन के उठा तो काज सरकार कई ठन असन योजना मन करे से हर प्रयास करे से जोन ने बोला असन हो से कि जोन मेहरार मनात हुन मन जो जीवना अधिक हरी

0: दिम हो आर हुन मन जो जीवनान नगत रहो बुलून करी असनी दखा जोन गोटक होई से ये छत्तीसगढ़ी ओलंपिक बोलो में जोन छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है हुन थाने ये खेल खेल तो बीती ये योजना है हुन ने जोन नानी पीला रुआत हुनिच मन नहीं बड़े लोग मन बले इधाने खेल हुआत जोन हम चो गांव पारा ने जोन खेल मन रहे से खेल मन दखा ये बीती योजना ने रहे सी ये जोन ओलंपिक का होता रहे से बल्लो में जोन रस्सा कसी होली फुगड़ी होली और जोन कबड्डी होए से खो खो होए से और असन कई ठन खेल मन रहे से जोन आय कसन हुन जोन छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का हुन थाने खेलवा जसन की जोन नानी पिला है हुन नानी पिला मन संग खेले दे जोन खिंडिक बड़े होलो लोग मनात बोलो हुन आप लोग बड़े लोग मन संग खेल दे बल्लो में असन होए से कि जोन ये जोन खेल कूद होए से ये हम चो जीवन ने रतर खूबे जरूरी है उन्हें सोचन करी उन्हें समझन करी दखा ये जन हम जो छत्तीसगढ़ सरकार है ये जन छत्तीसगढ़ या ओलंपिक है उनके बना ला बोलम हुन थाने सब भाग धरोत खेलोत हरिक उद्यम होत और आप लोग जीवना ने बोलो मैं दखा हमें घर ले बाहर निकलूँ से कहीं बल काम करूँ से खेल खेलूँ से और लोग लगे निकलूँ से बोलो मैं इन्हें कहे हम जो आत्मविश्वास बढ़े से और हम बाहर निकलूँ से हम जो डर खत्म होए से कई जन असन लोग मन बल रुआत मेहरार मन जोन मन आए कसन खेल कूद ने अगर रुआत मानतर घरे रहलो कारण हुन मन चो जोन कला आए बोलो हुन मन चो जोन रुचि आए हुन सब आए निक रुक नहीं सकू आए तो ये जोन योजना है हुन चो लागू करी दख कितलो नगत हो से कि जोन मेहरार मन आत हुन मन वाले खेल उक लाए सकता हुन मन जीतलो में दखा हुन मन के पुरस्कार तो मिरे से जी और हुन मन चो मन ने हरी कुदीम बोले हो से तो दखा ये जोन खेल चो गोटा है ये खेल चो गोट मन के आओ बले गोठिया हुआ था मानतर हम चल गए नगद गोट मन बला से आले एक बले सुनू
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
4: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा आमचो फोन नंबर आए 07782226666 फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने
5: सो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडाना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो इदेना संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चा वेंट कम लगे माता जीवन बीमा तग वेंट इंजे जीएसटी छूट दोर किता अदेन के पॉलिसी पोईतनद इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता कोटरू गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरू गाड़ी असित के सस्ता दोर कीता।
6: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
7: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा

0: सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जानवर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेन तो लोग दोनों के लाभ मिले दे। ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू हो दे।
1: हाँ तो बहन मन ये नगद गोट के सुन लू और देखा कार्यक्रम चो हिसाब ने हामी धरुन करी अमरुआ भेटवार्ता जोन थाने कई ठन बहन मन आप लो रोजगार चो गोट के और आप लो जीवना बाड़ती चो गोट मन के सांगवा असनी देखा आज ही हम चले गया सोत ललिता ठाकुर अल एमन काय गोट के सांग सोत और हम ये मन चो सांगलो थान ले काय गोट के सीखुक सकूँ उनके तुम्हें पल सुना मैं बोले सुने दे।
2: रेडियो सुन तो भाई बहन मन खूबे खूबे सेवा जोहार जसन की आपन मन के आमी कई कसन महिला स्व सहायता समूह मन संगी गोड बात करुन उन मंचो जन काम किया है जानू से तो असन ची आजी भले आमता ने उटुक महिला स्व सहायता समूह ने जुड़ लो उन्होंने इले से अल सब ले आ गए तुचो नाव आरु गांव चुनाव संग।
3: मुझे नाम ललिता ठाकुर है, मैं ग्राम पंचायत कुमरावण लिया है।
2: कुमरावण?
3: हाँ।
2: अच्छा तो बोले कौन विकास खंड
3: बकावण।
2: बकावण, अच्छा। तो ललिता ये सांग जैसे कि तुम जो स्वसहायता समूह से है।
3: हाँ।
2: काय नाम है स्वसहायता?
3: राधा स्वसहायता समूह है, मैं हूँ जो अध्यक्ष है।
2: अच्छा अध्यक्ष।
3: हाँ।
2: अच्छा कितलो दिन हो लिए कि बना लो?
3: मतलब 2015 में बन ली से हम जो समूह
2: 15 ने।
3: हाँ
2: हाँ 15 ने बोले 8-1 साल हुए।
3: हाँ, 8-1 साल हुए से।
2: अच्छा तो बोले ने समूह जो गठन कर तो का जाए।
3: हाँ।
2: बोले तुम के काय करू पड़ ली कसन बना थोरोली?
3: पहले तो बाहर से दीदी मन इला, सीआरपी दीदी मन।
2: अच्छा।
3: उन मन गांव चो फिर 10 जन दीदी मन के चयन करला, फिर हम चो एक समूह बन ली, फिर उताले अध्यक्ष सचिव चुनला, फिर बुक कीपर जो बुक लिखतो भी थी रजिस्टर उनके चुनला।
2: अच्छा।
3: हाँ, और उनचो बाद आमी असनी समूह चलाते रहलू, हर सप्ताह 20-20 रुपए जमा कर लू, फिर आमी बैंक लोन निकाल लू, फिर आम के आरएफ पैसा मिली 15,000 रुपए आमचो जो निधि बढ़ा तो काजे। फिर उनचो बाद ले आम के जनपद बांट ले 60,000 CIF राशि मिली।
2: अच्छा।
3: फिर उनके बाद आम के जो बाहर ले CRP दीदी मनीला और जो एग्रीकल्चर मतलब कृषि वित्त रासायनिक खाद के ठांडा और जो ऑर्गेनिक खेती वित्त है उन चुकाजे आम मन के बदला और गांव में 2-2 जन के कृषि सखी के रूप में चयन करला।
2: अच्छा।
3: हाँ हुताले फिर आमन मन के 2 जन के चयन करला, फिर आम चो ट्रेनिंग होली और गांव में आमन मन जो आम चो गांव चो दीदी दादा मन रासायनिक खाद के लगाते रहो उन मन के आम ही सांगलू की जैविक खाद लगावा जो गुड़ गोबर नीम पत्ता से बनवाए उनके लगावा बोलू, क्योंकि रासायनिक खाद से कई प्रकार चम की बीमारियां हुए से।
2: हाँ।
3: जब छोटे छोटे उम्र में बाल पाके से पीला मन चो कुपोषित हो सो पीला मन और कई मतलब उम्र मतलब हाइट बलनी बड़े से छोटे हाइट हो सो।
2: हाँ।
3: तो हूँ निकाजे आम मन मन दीदी मन के सांगलू और हूँ बाद ने आम के रायपुर में हाक दिला ट्रेनिंग होली आम चो।
2: अच्छा।
3: रायपुर में ट्रेनिंग धरुक गेलू पे हम बाटली उन भाती आमन मन के फिर आमी गांव गांव ने जान ट्रेनिंग मन दिलू सब दीदी मन के।
2: अच्छा।
3: हाँ, और एबे आम चो बकावण ब्लॉक में 20 गांव में ये महिला सशक्तिकरण किसान महिला सशक्तिकरण काम चले से।
2: अच्छा।
3: एक गांव में 60 दीदी किसान परिवार के जो अति गरीब में ही बात उसन लोग के चयन कर लू आमन मन।
2: अच्छा।
3: और उन मन के आमी जैविक खेती के बारे में सांगलू और हुमन एवे हुमन हुन चीज के अपना सोध।
2: अच्छा।
3: और हुमन कर सोध जन आगे जो लोग असनी सेमी के कुमड़ा के असनी खाले लगाऊं देओ तो कई तुदा कीड़ा हो अच्छा से फलेबल नहीं तो हुन चो काजे अमन मन सांगलू की कतार विधि से करा।
2: अच्छा।
3: कतार विधि से लगावा और इनका
2: लाइन
3: लाइन लाइन विधि और फिर सेमी वगैरह लगात का सांगलू तो हुमन हुता लगा सोध तो अब हम जो पैदावार बल अच्छा हुए से।
2: अच्छा।
3: हाँ।
2: तो संगीता ये सांग जैसन कि तुम्ही बोले ने जैविक जो खेती चो ये चो आगे पूरा जैसन कि रायपुर ट्रेनिंग जाओ।
3: हाँ। बोल से
2: तो ये आगे पूरा एक सिखा ला तुमके?
3: हाँ, रायपुर में हमके सिखा ला।
2: अच्छा।
3: हमके ट्रेनिंग दिला कि कसन कसन खाद बना तो रहे।
2: अच्छा।
3: हाँ हम जो बाद में फिर आमी एथाई उन भाती
2: अच्छा तो ये भी बोल का है कि उन मन के तुम गांव गांव ने जौन बते के सिखाए साथ
3: हाँ गांव गांव में जाऊँ आमन मन सिखाऊँ सुन मन के

0: अच्छा
1: अर हनुमान कर सोत बोले
0: अच्छा तो बोले कितलो गांव ने बोले 60 कितलो गांव ने बोले।
1: मतलब आमचे बकावंड ब्लॉक में 20 गांव में,
0: अच्छा 20 गांव,
1: 20 गांव में, एक गांव में 60 किसान के,
0: अच्छा 1 गांव के 60
1: हाँ,
0: किसान।
1: जो अति गरीब में सोत
0: हाँ
1: उस परिवार के मन मन चयन कर लू से।
0: हाँ अच्छा तो बोले ने ये काम कितलो दिन होली।
1: ये काम 3 साल,
0: 3 साल हो ली।
1: मतलब एक कृषि बीती
0: हाँ
1: जो नाम जो ये जैविक खेती बीती है ये बीती 6 साल होली,
0: अच्छा 6 साल हो
1: छह
0: ली।
1: साल होली
0: अच्छा जैसन कि तू गरीब किसान मन के बोले चुनतर बल्ले से
1: हाँ।
0: तो बोले ने ये चो बोले चुनाव बोले कसन करसा से कौन गरीब आए को किसी खातरा आए कहीं बेड़ा खाड़ा ने गरीब आए कि असनी गरीब है।
1: मतलब आर्थिक स्थिति से जो गरीब हुए से, जन
0: हाँ
1: आमी कोनी गांव में बल जाऊं से आमर में दूसरा गांव चलूं उसे आमर में उनके पता नहीं चले, तो समूह बांट ले हुन गांव में कृषि सखी मतलब सक्रिय महिला चुन लो रा से, पशु सखी चुन लो रा से, तो हुन मन मन के आमन मन जाऊं बात करूं से, फिर हुन मन गांव चलोगा तो जानो कि कौन परिवार गरीब आए
0: हाँ
1: कौन परिवार अमीर आए,
0: हाँ
1: तो उसन लोग के आमी चयन करूँ भाती, फिर आमचो लिस्ट में हम शामिल करूँ से।
0: अच्छा हाँ हाँ बोले तुम के कृषि सखी बोल सो।
1: हाँ, आम के कृषि सखी बल सोत।
0: हाँ हाँ तो समय समय ने कृषि विभाग ले कहीं तुम के बोले प्रशिक्षण मिलते रहे से था बोले कहीं।
1: हाँ, ये बात कृषि विभाग ले बली बात आमन मन के प्रशिक्षण दे उकलाए, और हम बाटले बीज ओगरा बला मन मन के दी बात
0: अच्छा
1: कृषि
0: बोले
1: विभाग बाटले। हाँ
0: हाँ हाँ बोले तुम्हें उनके पर किसान मन के दिवा।
1: हाँ किसान मन के आमन मन दी। हाँ,
0: अच्छा
1: धनु
0: हाँ
1: बाटले होली, उड़द होली, रागी होली, तो हमन आम के किसान कृषि विभाग बांटले अमन मन के दीवा, तो अमन मन किसान मन के लिस्ट बनाउन भाती देउन दीवा।
0: अच्छा अच्छा तुई बोले ने कितलो गांव के तुई देखुआ जाल कितने गांव चुकाज बन ले सी।
1: 5 गांव चो,
0: 5 गांव चो।
1: हाँ
0: अच्छा
1: मतलब 4 बकावंड क्लस्टर में 4 झनासो
0: बल्ले
1: सीनियर,
0: सबके अलग
1: हाँ
0: अलग।
1: अलग अलग दिला से 4 झनासो सीनियर सीआरपी में, मैं 5 गांव के दखे से बकावंड क्लस्टर में ही, और बाकी 3 आसो जो दूसरा क्लस्टर के दख सो।
0: अच्छा तो जैसन कि किसान मन की तुम अलग ले कहीं असन प्रशिक्षण वगैरह से बोला आयोजन हो से तुम जो।
1: हाँ, महीना में 2 महीना में हम मन मन एक एक बार देते रहूँ सब मन मन के।
0: अच्छा हाँ और कहीं शासन चो कोई योजना चो लाभ अगर धरत रहा है तो कौन किसान मन के चो बोला हमारा तो काम।
1: हाँ, ये चुबले जन हार्टिकल्चर बाट ले, कुनी कुनी गेंदा बल लगा सोत, पनारा वगैरह लो पनारा लोग मन गेंदा लगा सो, तो मन मन की हमी बात करुन भाती गेंदा चो फूल दिला तोर, या फिर छोटे छोटे जो पंप वगैरह होए से जो छोटे किसान मन घिनुक नहीं सको, तो हम ही हुन हॉर्टिकल्चर विभाग बाटले बात करुन भाती हुमन के थोड़े अनुदान में हम हुन मल दिलाऊं से।
0: अच्छा तो द काई बोले योजना जो लाभ धर तो काई तो कई प्रक्रिया हो ऐसे कागजात डॉक्यूमेंट
1: हाँ,
0: तो ये सब काम।
1: ये सब काम बात कर जब किसान मन संगम बात करुआ तो मन दी बात।
0: अच्छा बोले फार्म वगैरह भर
1: हाँ,
0: तो जो।
1: फार्म वगैरह भरुआ और
0: हाँ
1: हम जमा करूँ दी वहाँ।
0: अच्छा तो अब तक बोले 3-6 साल होली बोल सी
1: हाँ,
0: कितलो असन किसान मन के सन तुम्हें लाभ उन मन के अमरा ला सास।
1: मन एक गांव में जहन 60 किसान आसो, तो 60 किसान में से हमें कम से कम 40 किसान के एक गांव में असन हम लाभ दिला लू से।
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ तो किसान मन काय चीज़ का ज़्यादा रुचि धरसोत खेती बाड़ी हिसाब ने मिलन काय चीज़ के।
1: खेती बाड़ी में सब्जी लगा तो सब्जी ओगरा में, और ये भी फिर पशुपालन ओगरा में बले।
0: अच्छा
1: हाँ, क्योंकि हम जो पशु विभाग बाटले बल हम बात करूँ भाती हम मन के मुर्गी ओगरा दिलालू से,
0: अच्छा
1: तो
0: हाँ
1: क्योंकि पशु सखी बल हम जो समूह बाटले बना ला से, तो हम टीकाकरण जब बले बीमारी हो तो पशु सखी में जा सो तो टीकाकरण कर सो।
0: अच्छा हाँ तो असन कहीं बड़े रूप ने कोनी किसान के बड़े ज़्यादा रूप ने कहीं असन लाभ मिला सा 10 लाख 20 लाख ऐसे
1: उसन
0: ले
1: ना जो
0: उसन ना जन।
1: ना
0: अच्छा बोले नानी नानी।
1: नानी नानी ये बे
0: हाँ हाँ
1: नानी नानी दिलू से।
0: अच्छा दख तुई तो इतलो काम करसिस बोले ने तुम चो जोन बोले ने मेहनत आ बोले ने काया विभाग बाटले तुम चो।
1: हाँ, अब दिवात मेहनता विभाग
0: अच्छा
1: बाटली, जनपद बाटली आम के,
0: अच्छा
1: जिला पंचायत बाटली आमन मन की मीरुआ।
0: अच्छा जिला पंचायत ले।
1: हाँ, जिला
0: हाँ
1: पंचायत ले आमन मन की मीरुआ।
0: अच्छा तो ये कृषि सखी बन तो काजे कहीं पढ़ा लिखा बल लागे से है कितलो पढ़ा लिखा लागे से।
1: क्यों, अब तो हर चीज मोबाइल में काम कर तो बीती है, तो 10वीं पास हो तो और मोबाइल चला तो जरूरी है।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: हाँ
1: या फिर अभी 5वीं पास बिल्कुल कुन जो मोबाइल चला जान सो तो मन
0: हाँ
1: मन के मतलब जानकारी रहता तो जरूरी है इसका जी।
0: तो अच्छा ये तो होली कृषि मित्र बीती काम है कि नहीं तक तुई फिर बोले ने स्व सहायता समूह चो
1: हाँ
0: अध्यक्ष बोली आज
1: हाँ
0: है कि नहीं
1: हाँ
0: तो तुम चो स्व सहायता समूह ने काय काम हो ऐसे।
1: आमचे स्व सहायता समूह में भी आंगनबाड़ी में जसन राशन वगैरह दिला तो,

0: खाद्यान्न जो विभाग हुन बीती काम करूस आम्ही.
1: अच्छा बोले ना खाद्यान्न देतो.
0: हाव राशन वगैरह खरीदून भाती जो आंगनबाड़ी के देतो.
1: अच्छा हाँ हाँ और
0: अभी यही काम ही वैसे क्योंकि गांव में इतरो समूह आसो तो हर कोई एक एक एक एक काम करूँ.
1: अच्छा बोले ना सबके बांट
0: हाँ
1: ला दे.
0: सबके बांट लो रासे
1: हाँ हाँ
0: सब समूह एक एक कौन तो बंधन काम करे से आमी ये काम करूँ से कौन तो गोठान काम करे से सबके बांट लो रासे.
1: अच्छा नहीं तो कई समूह जो लोग का है कि असन व्यक्तिगत आपलान काज बोले पैसा समूह ले धरन बाती धंधा वगैरह करूँगा तो असन बोल कहीं तुम जो समूह चलो कर सोत.
0: हाँ धंधा वगैरह कर सो
1: हाँ
0: जसन कोनी चिकन सेंटर उन खोलला से और कोनी दुकान चला सोत.
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ हाँ बोले अलग अलग व्यक्ति
0: अलग अलग व्यक्तिगत पहले समूह लोन धरुन भाती
1: हाँ हाँ
0: कर सोत.
1: अच्छा तो पहले ने ये जो हिसाब किताब आए प्रबंध लिखा पढ़ी
0: हाँ
1: मीटिंग वगैरह कसन वैसे महीना दिन ने सप्ताह दिन ने कसन.
0: सप्ताह दिन में हुआ है मैं एक बार.
1: अच्छा
0: हाँ अरुण
1: हाँ
0: जो जो बुक मेंटेन जित्रो बलिया पैसा वगैरह एक बुक के पर रुवाए उन सब लिखा पढ़ी करवाए.
1: अच्छा हाँ
0: हाँ
1: हाँ तो दक महिला मन जैसन की 6-7 साल तो ये बल से समूह बना लर तो असन महिला मंचो जोन कहीं परिवर्तन बोले दुखों के लिए मेरे से उन मंचो गोड बात पढ़ा लिखा पींदा
0: हाँ
1: वड़ा घर चो साफ सफाई कहीं.
0: हाँ पहले तो पहले अंगूठा लगाते तो अब धीरे धीरे दस्तखत करुक लाए सीख ला हम.
1: अच्छा
0: हाँ पहले बाहर खूब कम जाते रहो उतरो नहीं निकलते रहो घर चो काम फिर बेड़ा. अब धीरे धीरे महिला मन बाहर बाहर जहन भाती जहन काम कर सोत महिला समूह से ही कहीं कहीं काम निकले तो हुमन मन जा सोत काम कर सोत. पहले घर में ही रहो चूल्हा चौका संभालो
1: हाँ
0: अब समूह चो माध्यम से हनुमान चो बोले खूब बदल ली.
1: अच्छा हाँ हाँ आज तू जो खुद जो बदलाव चु चो बोल कहीं अनुभव आसे
0: हाँ
1: समूह
0: हाँ
1: बना बना दे.
0: हाँ
1: हाँ
0: पहले मैं ही बोले घर में ही रहे कहाँ नहीं जाते रहे. जब से समूह में जुड़ ले तब से ट्रेनिंग वगैरह होली तब दो चार लोगों जो बीच में उड़तोर बस्तोर ये सब होली.
1: अच्छा
0: पहले तो गांव में ही रहो फिर रायपुर जाऊँ ट्रेनिंग धर तो लोग मन के सीखा तोर ये थोड़े नॉलेज बढ़ लिया मन बन के.
1: अच्छा
0: एक खेती किसानी इस तो बारे में तो जानते नहीं रहे
1: हाँ
0: तो जब से जुड़ ले से तब से मैं बोले
1: हाँ
0: थोड़े बहुत जाने.
1: अच्छा बिल्कुल एक झिझक मेट लिया सन लागे.
0: हाँ झिझक मिट ली थोड़ी.
1: अच्छा बिल्कुल तू कितलो पढ़ ले साले पढ़ा लिखा
0: मैं ग्रेजुएशन
1: ग्रेजुएशन
0: हाँ
1: का विषय का
0: BSc.
1: BSc ने.
0: हाँ
1: अच्छा तो ये तो सखी मित्र ने आशीष स्व सहायता समूह ने
0: हाँ
1: आशीष तो BSc बोले कर ली सी
0: हाँ
1: तो बोले तू चो बोले असन व्यक्तिगत हिसाब ने कहीं भविष्य और कहीं सोच आसे
0: आसे
1: काय.
0: मतलब अभी पढ़ाई वगैरह करूँ ना और आगे बढ़तो.
1: अच्छा
0: हाँ
1: कहीं घर चो काम की कहीं नौकरी पेशा जो
0: नौकरी
1: बोले.
0: पैसा
1: अच्छा तो ये बोल तैयारी चले से
0: चले से.
1: चले से.
0: हाँ
1: अच्छा काय मतलब कहीं बोल सोच ली से सोती कहीं बन तो रहा है असन कहीं
0: सोच ले तो
1: नहीं कहीं मास्टर इन बन से कहीं कहीं अधिकारी बन से काय बन से.
0: हाँ अधिकारी वगैरह.
1: अच्छा
0: हाँ
1: कहीं PSC वगैरह तैयारी.
0: हाँ
1: हाँ हाँ तो द कितलो अच्छा है BSc कर लीसिस और
0: हाँ
1: कहीं MA वगैरह से बोल कोर्स कहीं कर से प्राइवेट वगैरह ने नहीं
0: नहीं डालने से.
1: नहीं डाल से.
0: हाँ
1: अच्छा अच्छा ये सांग जैसन की तो ये बल्लीस की 5 गांव जो है कि नहीं
0: हाँ
1: कृषि सखी मित्र आज तो आजकल तो बोले ने लोग जुगे फायदा का जे जो रासायनिक खेती करो मतलब चाहूगा
0: हाँ
1: तो ये आजकल तुम कसन एमन के समझाए सोत का उनमन समझे सोत कि नहीं जैविक खेती का रुत का जे.
0: पहले पहले तो नहीं समझते रला हनुमान क्योंकि रासायनिक खाद में पहले सुन लो रासायनिक खाद लगाते रहो तो जमीन एकदम बंजर होली से हनुमान जो उत्पादन बल थोड़े कम हो मतलब कम हो सो हुनिका झुनमन ज़्यादा रासायनिक खाद डाल सो. तो आमन मन सांग लू कि पहले जब शुरुआती में कि तुमन मन नी डालाए के जमीन बंजर होए से तुम्हें थोड़े से जगह में पहले जैविक खाद के करुण दखा. आमी पूरा में नहीं थोड़े थोड़े एरिया में 10-15 डिसमिल में पहले हुमन मन के हम करुक लाए बोलूँ. जब उन जो उत्पादन अच्छा होली और लागत कम होली क्योंकि उन सब घर में ही बना तो रहे दवाई खाद सब घर से ही बीती है गोबर गौमूत्र गुड़ बेसन ये सब जो तो उन सब में लागत कम होली तो उन जो बाद में हुमन मन धीरे धीरे उन चीज के अपना ला
1: अच्छा बल्ले ने एदा खिनिक समझे सोत बोलू.
0: अबर समझ सोत खिंडी.
1: अच्छा तो असन उनमन के कहीं असन प्रैक्टिकल बनान बती बोल दखा शास्त्री में.
0: हाँ जब हम शुरू शुरू में गए लियो तो बनोन भाती एक गांव में जैसे किसान मन के हाक दून भाती तो हम प्रैक्टिकल करूँ दखा लूँ मन मन की
1: अच्छा
0: काय काय चीज लागू आए, कसन बना तो रहा है, किधर दाय हुन छिड़काव कर तो रहा है, ये सब चीज।
1: अच्छा हाँ, बोले ने समझे सोते था कि
0: हाँ, अबर समझ सुन।
1: अच्छा हाँ, तो दक तू इतलो अच्छा पढ़े लिखे बल आ सारू, बोले ने गांव चो जोन समूह बनान बाती, फिर किसान भाई जोन मन के जोन सिखा तो जोन काम है, ये बोल गोटो समाज सेवा काम
0: हाँ,
1: है कि नहीं।
0: हाँ,
1: तो इतलो अच्छा कई कसन जवान लेकर लेके मन खाली नौकरी ची डगर हुआ
0: हाँ,
1: मंतर तु समाज सेवा संग संग का है कि तू चो खुद चो बोले और सोच ली सी
0: हाँ,
1: है कि नहीं।
0: हाँ,
1: तो ये इतलो अच्छा बोले नंगत काम है, तो कोनी आमचो महिला लेकी मन नोनी मन पढ़ा लिखा आसो जाल का है कि असनी समाज सेवा संग पढ़ा लिखा बोल करूक ला सको इतलो
0: हाँ,
1: अच्छा गोट के सांग लीस।
0: हाँ,
1: तू कहीं बोलूक चाहिए तुम चो है कहीं तुझ मार्गदर्शन असन कहीं असन महिला मन के नहीं तुझ तुम संग जो रे आसन लेखा लेखी मन के पढ़े लिखे
0: पढ़े लिखे मैं हूँ मन के यही सांगुक चाहें से कि आजकल जो डेट में कि हम नौकरी जो पीछे ही भागू से, लेकिन आमचे जो गांव जो आसपास में कितरो लोग मतलब असन पिछड़ा वर्ग में आसो गांव ची आमचो दीदी मन दादा मन हुमन मन के बले आगे ने तो राय असनी छोटे

0: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के एक बजने को है हिंदी में समाचार। हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है।

0: टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र एक महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया, 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है, इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक सामान्य बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट हल्बी बोली में।
2: किसान दादा दीदी मन, मुरई के तो आमी सफाय जानु से 15 अरु लुसलुसला मुरई चो जड़ अरु भाजी दोनों के खातों का जे लोग मन खूबे मन कर सो। आज आमी मुरई चो उन्नत कमानी कसन करुक सकू ये गोट के करूं से। मुरई चो कमानी का जे बालुई दोमट माटी निको होए से मुरी चो बीजा मंडा तो पहिल बेड़ा के 2-3 हार खापून पाटा चलान माटी के बराबर करतो रहे। मुरई चो उन्नत किस्म मन ने एशियन अरु यूरोपियन किस्म मन होए से। एशियन किस्म ने पूसा चेतकी, पूसा हिमानी, जौनपुरी, हिसार, मुरई अरु पंजाब सफेद होए से। असने यूरोपियन किस्म ने व्हाइट आइसिकल, रैपिड रेड व्हाइट, टिप्ड अरु फ्रेंच ब्रेकफास्ट नाचो किस्म मन होए से। मुरई चो बीजा मंडातो का जे 2.5 एकड़ ने आम के 5 से 10 किलो बीजा के लगातो रहे। असन तो मुरई के आमी साल भर बल कमाऊ सकू। मांतर सितंबर ले जनवरी महीना भीतर एचो जोन बुंतोर समया निको माने जाए से। मुरई चो कमाने के लेन बार अरु पारी ने बले करुक सकू। बलो ने एचो जोन बुंतोर आटा है हूं आमी एक बेड़ा ने लेन बार लेन बनाउन बल करुक सकू और आमी किंडिक डेंग पारी बनान हुथा पर बुनुक सकू। लेन बार बुनलो बुनतो काजे नहीं आम के जो लेन ले लेन चो दूरिया है हुनके 30 सेंटीमीटर राखतो राय और पारी ने आमी जसन एक जेचो कमानी करतो मन करूं से जाले आम के हुन जो नए पारी के 15 से 20 सेंटीमीटर खिंडिक डेंग बनातो रहे और डेंग पारी ने एक बुनतो रहे। कहीं कमानी हो दादा दीदी मन दखा आम के खत भात के बल हिसाब ले दिलो ने आम के हुन लाभ अनगर दे से। तो मुरई कमानी का जे खत भात दे तो हिसाब ने आम के हुन जो निको कमानी करतो वाट ने गोबर खत 200

0: किलो, नत्रजन 100 किलो, 50 किलो स्फूर अरु 100 किलो पोटास के अढ़ाई एकड़ चो भू हिसाब ले लगातो रहे। एचो जोन देतो रुआटाए हुनाए गोबर खत स्फूर अरु पोटास संगे नत्रजन चो आधो भाग के आम के मिसाउन बुनतो पहिल माटी ने बिखरतो रहे। अरु नत्रजन जो जोन आधो भाग है जेके आमी बचान राखलू से हुन आधो भाग के बुनलो पाछे 15 अरु 30 दिन बलो ने एक महीना ने दुई हार करून हुन 15 अरु 30 दिन चो आर ने हारक हारक करून हुता लगातो रहे। मुरी चो कमानी ने लाटा बूटा मन खुबे आउता जन होसोत बलो ने जेके आमी खरपतवार बल बलुक सकू तो हुन खरपतवार मन के गोटो कुआट हो से आमी झिकुन हुनके पकाऊ से मातर हुन फेर उपरे एउन जाय से तो असन हिसाब ले जोन किसान दादा दीदी मन हुन खरपतवार मन के मरला तो काजे रासायनिक ओखत चो उपयोग करुक चाहे सो जाले हुन मन पेंडी मिथेलिन 30 इसी नाव चो जोन ओखत आए हुन ओखत चो 3 किलो के 1000 लीटर पानी ने घोरून अढ़ाई एकड़ भूई हिसाब ले बीजा जो मंडालोर बल्लो ने बीजा बुनलोर 48 घंटा चो भीतर 48 घंटा बल्लो ने आमी हुनके 4 दिन हिसाब ले मानुक सको 4 दिन चो भीतर ने हमके उथा चीज तो रहे। और जसन की आमी मुरी चो कमानी जेट बेरा ने कर लू से जाले मुरी कमानी जेट बेरा चो जो नाम चो फसल हो से उथा आमके 4-5 दिन चो आर ने पानी देव पड़े से अरु सीत बेरा जोन मुरी कमानी आमी कर लू से हुन कमानी ने आम के 10-15 दिन चो आर ने पानी दे रहे। मुरी कमानी ने रोग राई अरु बीमारी बल झप के धरे से तो जुगे करुन मुरी कमानी ने झुलसा रोग अधिक होए से एचोले बचातो काजे कैप्टान 2.5 ग्राम ओखत के 1 किलो बीजा हिसाब ले बीज के उपचार करू नाम के बुन तो राय अरु आम के पाछे जसन की फसल आम चो उपरे एली से जाले हुन फसल उपरे मैंको जेब ओखत के 1 लीटर पानी ने घोरून चीज तो राय इत्रो दखा रखा करून मुरी चो कमानी करलो पाछे हुंचो उखंतोर अरु हुंचो सही फसल तैयार होतर समय के बल आम के चिता तो राय और हुन बेरा आम के हुनके उखंतोर काम के करतो राय तो हुन हिसाब ले आम के अंदाज लगातो राय कि ए समय हुंचो जोन जड़ आए मुरई आए हुन अच्छा लुसलुसा आसे तो हुसन बेरा हुनके आम के उखनून बिकतो राय। अढ़ाई एकड़ ने कमानी करलो ने आम के एक चो जोन उपज आए हुन 200-350 बल्लो ने 350 कुंटल मिरुक सके। तो दादा दीदी मन असन सांगलो उवाट ले अपन मन किसान भाई बहन और सफाई गांवकारी दादा दीदी मन जे मन आप मुरई चो कमानी करसो हुन मन आप लो मुरी कमानी के करला जाले हाट बाजार ने बिकुन हुन मन के अनगर लाभ बले मिरे से और हुन मन अनगर लाभ पाउक सक।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खाड़ा जगोट। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम श्रोता सुमन।

गीत संगीत जो मन को आनंदित कर शब्दों से परे भावनाओं को स्पर्श करती है। संगीत की मधुर धुन सुखद एहसास दिलाती है। खट्टी मीठी यादें पसंदीदा गीतों से जुड़ी होती है जिन्हें सुनकर हम झूम उठते हैं। एक ऐसा ही कार्यक्रम है श्रोता सुमन, जिसमें होती है आपके पसंदीदा गीतों की खुशबू जो आप खतों के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। आपके पसंदीदा गीतों के कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो मित्र मर्सी स्वर्णा। स्वीकारे ने मेरा नमस्कार, स्वागतम सभी श्रोताओं का कार्यक्रम श्रोता सुमन में।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे गाइड फिल्म से लता मंगेशकर के स्वर में। बोल शैलेंद्र के थे, संगीत SD बर्मन का था। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिख भेजी थी आप सभी श्रोताओं ने। स्मिता रेडियो श्रोता ग्रुप से आप हैं शोहन जोशी, अर्चना, हरमिंदर सिंह चावला, बानी, लोकेश, पायल, मुरली छत्री, कविता छत्री, मिथिलेश यदु, दशरथ साहू, अंकिता, बेबी वैदही। आप हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से कैलाश प्रसाद शर्मा, किरण कुमार और अमृता शर्मा। आप हैं नागपुर महाराष्ट्र के श्रोता। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आप हैं विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी।

स्वस्तिका चक्रधारी। बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन, शहनवाज फरदीन, सुजान अरजान और अबान अब्बासी। बागबाहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, तारा कौशल और खुशबू। यवतमाल विदर्भ से संतोष और विनोद खड़से। बिलाईगढ़ से आप हैं देवलाल कर्ष, कामिनी और यश। गुमला झारखंड से एसएम जावुद, सबुक्ता, अंजुम। जेल रोड रायगढ़ से आप हैं भाई नरेंद्र तिवारी। डोंडी लोहरा बालोद के श्रोता हैं पीयूष नेताम, जोतारी और कोमल नेताम। बनबघेरा से आप हैं योगेश शारवा, आशा, नीरज, नीलेश, अंजलि शारवा। डोंडी लोहरा बालोद से आप हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव, राधिका, तुषार, डॉली, बेबी पूजा और प्रभा देवी तामुरिया। बालोद छत्तीसगढ़ के ही श्रोता हैं मंतुराम यादव, चित्ररेखा, साहिल शिवम, राकेश पोषण, केशव माधव, रितेश पोषण, नेत्राम, संतु और विजय। बिहार के हमारे श्रोता हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता, राकेश, राजीव, संजय, ओम, गुंजेश कुमार, रीमा रानी, कुमकुम, साक्षी, बुल्की वाली, श्वेता रंजन, रजनीश कुमार, आनंद कुमार और चिलना झा। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से हमारे पास पत्र आया है प्रकाश भोरगांवकर, सुषमा प्रांजलि, प्राजक्ता, सोहम और सुभाष सदानंद का। मोहम्मद हलवाईयान शेरकोट बिजनौर के श्रोता हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन बेगम, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। ग्राम बंगला मटिया बालोद के श्रोता हैं शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, अंशुमाला, आशुतोष।

0: समस्या का आसान समाधान, बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782-222-666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
2: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
3: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। अगले गीत की फरमाइश लिख भेजी है आपने, झारखंड से आप हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसुतासु, अनव आनंद और सत्यम आनंद, बोहड़ागांची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, छत्तीसगढ़ से आप हैं जामुन देवी साहू, बबलू साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू, खैल बाजार पानीपत से आप हैं नरेश कुमार मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य कोयल, नानक चंद, और रोहतक से आप हैं पीयूष सिक्का, कोयल और डुग्गू भाविक सिक्का, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर, मेघापारा लोरमी के श्रोता हैं मनोज कुमार साहू, कृष्णा, धनंजय और गायत्री साहू। लोरमी गोल बाजार खपरी कला छत्तीसगढ़ से आप हैं संतोष कुमार सोनी, खिलेश नेहल, पीहू छोटी, दानिश, दीक्षा, संजय, पूजा, रामा, पूर्वी, पुलकिता। भंडार सिवनी जिला कोंडागांव के श्रोता हैं सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से आप हैं अंजलि केवट, रुद्रानी केवट और कृष्णा केवट, चंडीगढ़ के श्रोता हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, बीकानेर से आप हैं रानी झा, बिट्टू झा, और नई दिल्ली से आप हैं गुरमीत सिंह मीता, जाखोद से हैं समुदयाल खटक और बिमला देवी खटक, रायगढ़ से आप हैं रोहित जयलक्ष्मी, छत्तीसगढ़ चुनी लाइन मुंगेली के हमारे श्रोता हैं मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक आफरीन और मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर यास्मीन, कलानौर से नरेंद्र शर्मा और किरण शर्मा, साथ ही आप हैं नितिन और मयंक शर्मा। तेलंगाना निजामाबाद के श्रोता हैं शेख अल्लाह बख्श और बेगम राबिया शेख। बनबघेरा राजनांदगांव के श्रोता हैं योगेश शारवा, आशा नीरज नीलेश और कुमारी अंजलि शारवा, चिंताराम साहू, नर्बदिया, दिनेश दुलार और उर्वशी साहू, आप हैं बालोद छत्तीसगढ़ के श्रोता। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नितिन, नीलम, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से खुशी खर्चे ब्रोनो, गणेश, कार्तिक, संजना, परी, ललिता नारायण, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। छोटी बलिया करजत से आप हैं अहमद भाई फूलवाले, इकबाल अहमद, नुरेशा अहमद, और नई दिल्ली के श्रोता हैं आमना नसरीन,

लखमीनिया और बेगूसराय से है इखलाक अहमद पुलवाले। बड़वाह के श्रोता हैं प्रवण, मीना, आदित्य शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, आप हैं हनुमानगढ़ के श्रोता।

सदस की आवाज़ों में बागी फिल्म का ये नगमा, सुनते हैं आप सब की चाहत पर ये गीत।

और अब जावेद अली की आवाज़ में राज थ्री फिल्म का नगमा। गीत सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप। छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश राशि और श्रीमती राजेश, जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रिया।

रेनू, रोनिका और यामिनी यादव। आप हैं ग्राम लोहेड़ी मोहबा उत्तर प्रदेश के श्रोता। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से आप हैं चंद्रेश गौहर, वंदना मयंक और तन्वी गौहर। धाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश के श्रोता हैं कौशल किशोर, संगीता हर्षित एवं वैभव मट्टू। सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलरगांव से आप हैं मिथिलेश, मधु, हिमांशु और अंकित देवांगन। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा बचेली से आप हैं बलराम सेन, इंदु, रितिका, पुष्पराज, पोषण, पंचू और भुवनेश्वर सेन। हटोज बाजार लाहौद से आप हैं कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी। छत्रपति साहू नगर हिंगोली से आप हैं पेंटर रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत टिंकू, रमाताई सुरेंद्र, मयूरी सुरभि, मंजूषा और गौतम इंगोले। अशोक नगर बसमत से आप हैं पार्वती सकाराम ठोके, दीपाली राजू, रोहित सोनू, मोनू ठोके। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, सावित्र देवी, धर्मेंद्र, सत्या, प्रतीक और मानस साहू। ततरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती, रीना, लक्ष्मीना यदु। प्रकाश तिरसुनिया, विकास, नैतिक, मुकुल, दिव्यांश, धैर, आराध्या। आप है उत्तर बस्तर कांकेर के श्रोता। देवपेट वासिम से आप हैं राजेश, प्रेमा, राजश्री, राजू, भावसार, साथ ही आप हैं के आर कुसुमकर। खंडवा लोहारी से आप हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला गायत्री। कुर्दी रोड से आप हैं विजय रानी, महिमा और नीतू वैद्य। ओम रेडियो श्रोता संघ नांदेड़ से आप हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार, साई। नरवेल से आप हैं पीएस नाहनकर और विशाल। शिवाजी चौक राजीम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और कृष श्रीवास्तव, दीपक कुमार, रोशन, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव। आप हैं अमरपुर पेंड्रा के श्रोता। कोलगांव से आप हैं पांडु चंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष, पांडुरंग कुमार, देवेंद्र ताती, राकेश, कुमारी निशा, प्रकाश और देवोजी। आप हैं बड़ा बाम्बो गांव सुपाई साई के श्रोता। दरियापुर बावली महाराज से आप हैं गजानन येले, नवदीप शेरी वडनेर से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। जिला रतलाम मध्य प्रदेश के श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सोएब, मुज्ताबा राव भाई, शाहिद भाई। आप हैं अमरावती महाराष्ट्र के श्रोता, साथ ही आप हैं गांधीबाग अकोला से रमेश

भोजने गांधी चौक गंडई पंडरिया से आप हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की नानू और रविंद्र सेन। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारिणी, सूरज ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर। वरुड़ जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया और मिलिंद सरकटे। रामगढ़ खंडवा से विजय महोबिया, कविता संजय, नंदिनी, विशाल, सोनू, डॉली, देवराज और भव्य दादा। और खंडवा के ही श्रोता है वीएस महोबिया और कमला महोबिया। अकोला चितलवाड़ी के श्रोता हैं अमोल इंगोले, इंगले, अर्चना, सर्वेश, अधीरा और समस्त इंगले परिवार। सुनते हैं आपकी पसंद का ये नगमा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम श्रोता सुमन। अगली फरमाइश लिख भेजी है आपने, परमवीर हाउस आदर्श नगर भटिंडा से आप हैं, अशोक ग्रोवर, परनीत और परवीन गोवर, और साथ ही आप हैं निखिल, नीति, महरीन और विक्रमजीत ग्रोवर, कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार, राधा देवी, अर्चना और साक्षी डाबी आप हैं, बलातोरा राजस्थान के श्रोता, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, तन्वी मानवी, लक्षोनी और मोहिनी। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आप हैं विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष। छिंदीडी पुजारीपारा से आप हैं मंगतीन चक्रधारी, आशीष कुमार और अस्तिका। बुल्ढाना महाराष्ट्र के श्रोता हैं वासुदेव बोधबड़े, माधुरी और आकाश कुमार बोधबड़े। संत नगर बुल्ढाना से ही आप हैं अनुता गाठोड़े, रमेश राव, लोकेश कुमार गाठोड़े। ग्राम मामड़पाल दरभा के हमारे श्रोता हैं गणपत बघेल, मनीष और अनंत बघेल। समडील नवापारा के श्रोता हैं मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक और अंकुर राघव गुप्ता। जुर्मानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से रमेश साहू, तारा विद्या, जितन किशन, सुनीता ऋषि, वीरेंद्र नीलकंठ, चंद्रहास, संजू त्रिलोक साहू और मास्टर रंजीत साहू। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से आप हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर, स्वीटी छाबड़ा, रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, राहुल, आकृति, ज्योति, राहुल, जयप्रकाश, प्रियंका, छोटी गुड़िया, नूर और नमन आप हैं अंबाला हरियाणा के श्रोता। उमरिया मध्य प्रदेश से आप हैं संतोष कुमार राव, भारती, बेलाबाई, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम विश्वकर्मा और अरुणा विश्वकर्मा। पलारी से आप हैं नितेश कुमार, दुर्गा, पराग, लखनलाल, ईशांत, देवांगन। भंवरपुर बसना छत्तीसगढ़ से आप हैं राधेश्याम देवांगन, चंपा, जगदीश और राजू देवांगन। गांधीनगर गुजरात के श्रोता हैं सुरेश, मंजुला, विशाल और निशा राठौर। तीन महुआ, खापरखेड़ा, जिला रायसेन मध्य प्रदेश से आप हैं तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार, हेमंत कुमार, ममता गोमती और रागिनी साहू। सब्जी मंडी बुल्ढाना से आप हैं सब्बीर हुसैन, सहजाद हुसैन, मंजू बाबा, आयजा एनम और मुदस्सिर हुसैन। आप सबने सुनना चाहा है अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज़ों में दिलवाले फिल्म का गाना, शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य की, संगीत प्रीतम का है।

इसी गीत को सुनना चाहा था उत्तर प्रदेश बागपत से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धनपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। भाटापारा से आप हैं दान सिंह रावत, दानू पद्मनी, शुभम और सौरभ। खंडवा के श्रोता शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष मंदा, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप कुमार, माधुरी, पिंटू कुमार और जयश्री। पीपर पारा मुंगेली से आप हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर। खंडवा के श्रोता मोहम्मद रफीक पंवार, साकिब पंवार, हसनैन पंवार। ग्राम दीवाल से शंकर लाल गंगराड़े, वनीता छोटू, पूजा रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। जिला खंडवा के ही श्रोता हैं अशोक कुमार वाधे, वंदना, भूपेंद्र झावर, तनुश्री आरोही और कान्हा वाधे। जरूर वरुड़ से आप हैं बाबा साहेब वाडोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे और कार्तिक युवराज। मलकापुर से संजय पाटिल, सौभाग्यवती, प्रथमेश, निवृत्ति, सतीश, जगदीश, सराफ और आप हैं सुनील पाठक, कमल, दीपिका, आशीष, बेबी गव्या, भाई सुचा मल्होत्रा, अनारकली बाजार जरगांव के श्रोता। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम, रेशमा, आदिबा। बिहारी कॉलोनी से परवीन, सरीफुद्दीन डोम, वली डोम, कुमारी डब्बू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा, अकरम और उल्लाह आसमा बेलदार। यूपी महू के श्रोता हैं मजहर अली अंसारी, राबिया बेगम, सादिक और साजिद। उत्तर प्रदेश गाजीपुर के श्रोता हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्लाह आज़ाद। श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम श्रोता सुमन और अगले गीत की फरमाइश की है आप सबने राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रेणु गोल्डी, मास्टर रुद्र। राजनगर गांधी चौक से आप हैं रानी गुप्ता, सोनाली, संगीता, मेनका, पलक, माधवी, साध्वी, रिद्धि, गुनगुन, चुलबुल, रेणु, ज्योति, शालू, दीप, शिखा और अर्चना। मोहल्ला यादव सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार। खरगोन मध्य प्रदेश के श्रोता हैं तिलोक चंद वर्मा, भागवत, अभिषेक, सीमा, अमित, सचिन, समर, आर्यन, बेबी आरोही, इशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा। महाराष्ट्र उमरखेड़ के श्रोता अभिजीत गहणकर, सरिता, एकांत, सिद्धांत, प्रणीता बहादुरा। नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित और ध्वनि। उत्तराखंड जसपुर के श्रोता रियासत हुसैन, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। खरगोन के श्रोता हैं भागीरथी नायक, जितेंद्र सुभाष, रविंद्र शिवानी, अश्वनी, अरविंद्र, आदित्य, गुनगुन और उनके परिवार के सभी सदस्य। सहारनपुर से आप हैं सुरेश नारंग और आसू नारंग। परम सिंह जोड़ा, मनमीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, टेकम, दमम, दमन और अभिजात। पाठर कौड़ा से आप हैं अनिल बुरांडे, उषा, प्राची, अनुश्री, धनश्री। बल्लार शाह से आप हैं सूरज जी लोढ़े, प्राची और एकलव्य लोढ़े। आप सभी ने सुनना चाहा है टू स्टेट, माफ कीजिएगा, जीनियस फिल्म का नगमा अरिजीत सिंह की आवाज में। श्रोताओं आपकी पसंद आपकी नजर करते हैं।

इसी नगमे को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप। चांदनी चौक गंडई पंडेरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू रविंद्र और रौनक सेन, दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, परभणी से सीआर कुलकर्णी, कनिया बालाघाट मध्य प्रदेश से आप हैं अखिलेश कुमार यादव, ज्योति अंकित और श्रद्धा यादव, धर्मनगरी से आप हैं पलटू राम, पूर्णिमा, चैतन्य, मनीषा, प्रफुल्ल कुमार बघेल, बबली, लव वैद्य, नलिन वैद्य आप हैं अंतागढ़ के श्रोता, सुनील पाठक माफ कीजिए झुमरी तलैया से देव इंगोले, छोटू दादा और छकुली इंगोले, नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती, हर्षल और जानवी रंभाड़े, भाटापारा से प्रमोद देवकुमार, नवीन और युवराज साहू, बेलरगांव से आप हैं मिथिलेश, मधु, हिमांशु, अंकित देवांगन, खट्टी के श्रोता सुभाष, छाया, कुमुदिनी, ओमकार और भीषम दास मानिकपुरी। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश मोहरा फिल्म से उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाजों में, बोल आनंद बख्शी के संगीत विजू शाह का है और फरमाइश है आप सबकी। देवरी भाटापारा से आप हैं गन्नूलाल रजक, किया साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, तेलीपारा बिलासपुर से आप हैं रज्जन साहू, बेबी ईशानी, छन्नूलाल श्रीवास और अनिशा श्रीवास, बुड़गहन छत्तीसगढ़ से आप हैं राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। धर्मपुरा बस्तर से आप हैं वनिता नायडू, कृष्णा राव, ईश्वर, रोजा देवी, सोमेश्वरी, अमृता नायडू और धनोरा से आप हैं पूनम, साजन, पुरुषोत्तम, सिवांस, दुर्गेश, अक्षय, अभिषेक नायडू, संबलपुर से आप हैं फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी, इशिका और तेजल यादव, जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास मानिकपुरी आप हैं डोंडी लोहरा बालोद के श्रोता, भाटापारा से नोखीलाल वर्मा, हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, डोंगरगांव से आप हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये, मोहाली चंडीगढ़ के श्रोता हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, जशवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा, सुखचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज आप हैं कालका के श्रोता, रिंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, मायापारा ग्राम दरचूरा से फिरंता साहू, दुलोरीन कामेश्वरी प्रीतम और यहीं के श्रोता हैं ददुआ भूरी, रेखा और मोतीलाल साहू, पंजाब के श्रोता हरदेव मीका, बलविंदर बीरग, जयतेग और मीका बीरग, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां आप हैं लक्सर हरिद्वार के श्रोता।

श्रोता, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आप आनंद लीजिए बारिश के इस मस्ती भरे गीत का और मुझे यानी मर्सी स्वर्णा को दे इजाजत कार्यक्रम श्रोता सुमन से।

से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को

0: आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्र गिरी है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6 नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि INS महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का 3रा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो 6 लाख लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे नहीं हुआ। अब मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, UK, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने FDI के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम

0: कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिएगा कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमेरिका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम,

0: त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहर। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजा जी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
1: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था, इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
1: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
2: जी, इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षा प्रद, प्रेरणा प्रद और ज्ञान वर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
2: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाएं तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय, प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
2: करसोग जिला

0: प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी, हमारा अगला प्रश्न था, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: जी, इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद, और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
1: जी अश्रोताओ, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था, जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
0: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
1: जी तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कंगारू के कितने पैर होते हैं?
1: 8800440559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन

0: स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
1: लो भाई, पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई, मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत। आहा,
1: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। आहा, कितना साफ पानी है।
0: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए, और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे, और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
1: अरे काट काट काट, मेरा भी क्या देख रहा काट।
3: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए, और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
4: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहो।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे। आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
2: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते

0: तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
1: अरे पशु पक्षी हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा,
2: लगता है नदी प्रदूषित हो गई है।
1: क्या?
3: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे
2: फसल बह गई।
1: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
2: सारा
1: सामान
2: जल्दी
1: भी तो ऊपर ले जाना होगा।
2: चलो जल्दी ऊपर,
1: हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी चलो
2: चलो चलो,
1: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
2: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
4: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
5: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर

जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं

0: दो तीन नहीं, बड़े बड़े 7-8 छत्ते लगे हैं। हाँ,
1: 7-8 छत्ते, कमाल है।
2: अरे फिर तो मजा आ गया।
3: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो 2 गगरी भर तो हो ही जाएगा।
1: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
2: छप्पर फाड़ गए।
3: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
1: हाँ, हाँ, क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दातुन भी तोड़ लेंगे।
2: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
1: हाँ, ठीक है।

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है।
1: मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा।
2: अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है।
3: राम,
1: ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
1: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
2: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं।
1: ये ठीक रहेगा, मैं भी चलना चाहिए। हाँ,
2: सुनो सुनो, मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं। अच्छा, वो रास्ता
1: ठीक है, ठीक है।
0: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
2: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
1: हाँ, ठीक है, ठीक है।
4: मगर ये औरतें और बच्चे।
2: अरे अगर मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
1: हाँ, हाँ,
2: बचाएंगी। नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा।
1: हाँ,
2: अरे कोई है?
1: हाँ,
2: अरे बाहर निकलो।
1: अरे

0: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे। सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
1: वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं,
2: बिल्कुल
1: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
3: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
1: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो
4: हथियार
1: को। ये कुछ नहीं कर सकते
0: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
5: चिब्बू भाग ले यहां से,
6: बाद में भागने काट लेंगे।
0: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
7: वाह भाई, ये गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया।
8: ऐसी चिपकी पेड़ से किसी ने छोड़ा ही नहीं पेड़ को। अरे
9: क्या
8: बात
9: भाई,
8: जीतती रहे मिट्टी, जीतती
1: रहे। तो हम सबका कर्तव्य है।
0: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
10: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
11: और विमलेश को,
10: कुसुम लता,
11: जगबंधु,
10: चेतना
11: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
10: नमस्कार, नमस्कार।
12: उमंग उमंग उमंग उमंग।
13: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

पर कार्यक्रम भेंटघाट में आप सुनेंगे साक्षरता की आवश्यकता इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे बलबीर सिंह कच्छ। कोदोमाली लोकगीतों के इस कार्यक्रम में सुनिएगा पंकुराम और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत रात्रि 10 बजे। अब लीजिए सुनिए हमारी कल की सभाओं के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

थोड़ी चो चिपा बाधा के गुचाली से और उस सकत बल संगे आत्मनिर्भरता चो नवा बाट दखाए से। ऐ मंजी महिला और बाल विकास विभाग ने महतारी वंदन योजना चो पात्र हितग्राही मेहरा दे आगे ई केवाईसी काजे पंजीयन चो दिन समया 30 जून रली। बस्तर जिला चो महिला और बाल विकास अधिकारी मनोज कुमार सिन्हा सांगला की ये योजना लागून 30 जून तक ई केवाईसी करालो ने कोनी कोनी हितग्राही छिड़ा होला बल्लो ने छांडी होला। ऐका जे ई केवाईसी चो दिन समया के बढ़ाऊन भाती 30 अगस्त करून देतोर होली से। हुनमन सांगला की बस्तर जिला ने लमसम 90% हितग्राही मेहरार मन बाटले ई केवाईसी करातोर होली से। हुनमन छिड़लो छांडी होलो हितग्राही मेहरार मन ले निर्धारित समय तक ई केवाईसी करातो काजे अपील करला से। ए भी चो समया ने महतारी वंदन योजना सोजे आर्थिक सहायता देतो बीती योजना निरली से पहारले मेहरार मन काजे आत्मनिर्भर आत्मविश्वासी और मान सम्मान संग चो जीवना देतो बीती मजबूत माध्यम बले बनुन गेली से। कैक मेहरार मन चो सहरानी कहनी मन ए गोट चो सत आसे कि जे बे सरकारी योजना मन प्रभावी ढंग ले सरासरी आखरी माने तक अमरे से तब हुन समाज ने स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन चो आधारशिला बने से। महतारी वंदन योजना ले राज्य चो मेहरार मन के नवा उम्मीद भरोसा आर्थिक सुरक्षा पैसा कोड़ी चो चिपा बाधा ले निदान और खुद

0: काजे गोड बात ने।
1: तो दिलवती ये महिला सुरक्षा बलों ने ये थाने काय काय होय से?
0: ये थाने महिला मंचो सुरक्षा और कानून चो अधिकार मन के शामिल कर ला से ने। आगे जमाना ने महिला मन संग कितरो अत्याचार करत ने और समाज में रतो लोग मन खूबे अत्याचार कर करते रला। समाज में जसन की कोनी कोनी बेटी बहिन मन के बले दहेज काजे सताओ तो कहाँ है महिला मन के घर ले बाहर काम कर तो नी कर तोर काजे ने बलत और तो और आम चो बेटी बहिन मन के पढ़ तो लिख तो चो अधिकार बले नी रेली ने
1: हो आगे चो के तो लोग मन भूलकुन गेला ने मानतर आजकल तो आम चो माय बहिन मन बले कहाँ है सुरक्षित नी आत आजकल चो दुनिया ने
0: हाउ का है देव की यही का सब काजे तो सरकार सोचला और रामचो माय बहिन और रामचो सुरक्षा काजे विचार करला और कानून चो नीति नियम मन के पूरे करला से।
1: हाँ दिलवती आमचो भारत सरकार और राज्य सरकार बाटले मदद करतो काजे हेल्पलाइन नंबर और योजना मन के चला सोतने।
0: हाँ सत्या देव की तेबे तो

0: घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: तो संगवारी मन तुम्ही ए जहाला ले पहली सुनते रलास ए गीत प्रेम रतन धन पायो लेर रली। ए फिल्म ने भाई बहन चो स्नेह और परिवार चो प्यार और रिश्ता के खूबसूरती ले दर्शाला सत ने। ये फिल्म 2015 ने चो लोकप्रिय फिल्म रली।
2: हाँ तो संगवारी मन एबे तुम्ही दूसर गीत सुना से फिल्म गोल गले। एक काय सुंदर स्वर दिला से यासिर देसाई और ये चो गीतकार आत अर्को प्राओ मुखर्जी और संगीतकार बले अर्को प्राओ मुखर्जी आत। तो संगवारी मन सुनो ये गीत के।

0: अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
1: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: तो संगवारी मन नए तरह ने चो गीत के डंडिक थे बाऊं भाती।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं।

संगीत नृत्य वाद विवाद आदि की जानकारी प्राप्त करता है। यही कारण है कि वह देश के विकास का आकांक्षी होता है। किसी भी देश के विकास का दार

संगीत, नृत्य, वाद विवाद आदि की जानकारी प्राप्त करता है। यही कारण है कि वह देश के विकास का आकांक्षी होता है। किसी भी देश के विकास का दारो जो अपने ओजपूर्ण स्वभाव से देश के विकास एवं हर क्षेत्र में सक्रियता दिखाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक अथवा मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है। श्रम शक्ति युवाओं में प्रचुर मात्रा में होती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। किसी भी देश का विकास उस देश के युवाओं पर ही हमेशा से निर्भर रहा है। हम यह कह सकते हैं कि युवा राष्ट्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक ढांचा है। आज के युवा अपनी शिक्षा के हर कार्य को आसानी से करने में सक्षम हैं। आज हमारे देश में प्रशिक्षित युवाओं की बहुतायत है। वे देश ही नहीं विदेश में भी बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। किसी भी देश की प्रगति उसके उद्योग, सैन्य परिवहन, शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, संचार व्यवस्था तथा अंतरिक्ष अनुसंधान आदि क्षेत्रों में होने वाले विकास पर निर्भर होती है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाएं आवश्यक होती है। इनमें से हर क्षेत्र में प्रशिक्षित युवक युवतियां अपनी उल्लेखनीय सेवाएं दे रहे हैं। कई शिक्षित युवा ऐसे भी हैं जो अत्यधिक श्रम नहीं करना चाहते किंतु रोजगार के लिए प्रत्येक कार्य को करने के लिए तैयार हैं। इसलिए युवा वर्ग स्वनिर्मित वस्तुओं का निर्माण भी कर सकते हैं। ऐसे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त करने के लिए भारत में ही वस्तुओं का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे बेरोजगार युवा भी रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, जिससे हमारे देश के युवा आत्मनिर्भर बनेंगे और देश की आर्थिक बचत भी होगी। आज के अधिकांश युवा शिक्षित हैं जो अपनी शिक्षा बल बुद्धि के बल पर देश की उन्नति करने में समर्थ हैं। प्रत्येक राष्ट्र की तरक्की का आधार उसकी युवा पीढ़ी होती है, जिसकी उपलब्धियों से ही उस राष्ट्र का विकास होता है। राष्ट्र का भविष्य युवाओं के सर्वांगीण विकास में निहित है। ऐसा इसलिए कि युवा ही सर्वोच्च भूमिका का निर्माण करते हैं। युवाओं में समाज का वह क्षेत्र शामिल होता है जो विकास को परिलक्षित करता है और एक राष्ट्र के लिए भाग्य का निर्माता होता है। युवा में कार्य करने की अपार क्षमता होती है और प्रत्येक युवा उत्साह से भरा होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर वह हमेशा अग्रसर होता है। राष्ट्र की सर्वांगीण विकास और भविष्य वहाँ रहने वाले नागरिकों की शक्ति और क्षमता पर निर्भर होता है। इसमें प्रमुख रूप से योगदान उस देश के युवाओं का होता है। जब युवा अपने प्रयासों के साथ अपनी पूर्ण क्षमता के साथ यही काम करता है तो उसकी गणना की जाती है। भारत में युवाओं की सबसे बड़ी संख्या है, जिन्हें यदि सही दिशा में प्रशिक्षित किया जाए और वे अपना योगदान सही दिशा में दें तो भारत देश संपूर्ण विश्व में उच्च कोटि का बन जाएगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यह पता चलता है कि हमारे देश के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान दिलाने में युवाओं की भागीदारी और सक्रियता प्रमुख रूप से हो रही है। समाज में व्याप्त कई समस्याएं पर कार्य करके युवा दूसरे के लिए आदर्श बन सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान युवा सकारात्मकता से हल करना जानता है। इतिहास में युवाओं की शक्ति का प्रभाव देखा गया है। जिस कार्य में युवा अपना सक्रिय योगदान देते हैं उस कार्य में विजय हमेशा होती है। उदाहरण के तौर पर भारत की आज़ादी में अनेक युवाओं ने अपना सहयोग दिया और कई युवाओं ने बलिदान तक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा देश ब्रिटिश सरकार को भगाने में कामयाब हुआ। इस प्रकार युवाओं ने अनेक ऐतिहासिक बदलाव किए। युवा अपने तन और मन समर्पण की भावना से हर कार्य संभव करते हैं। भारत की युवा शक्ति, आँखों में वैभव के सपने, मन में तूफान सी गति हो, ऐसे ही हृदय में उठते हुए ज्वार, परिवर्तन की ललक, अदम्य साहस, स्पष्ट संकल्प,

नाम है युवावस्था। दुनिया की कोई भी आंदोलन, दुनिया की कोई भी विचारधारा युवा शक्ति के बिना सशक्त नहीं बन सकते हैं। वास्तव में वह युवा शक्ति ही है जिसके दम पर किसी निर्माण या विध्वंस की नींव रखी जा सकती है। विश्व में भारत अधिक युवा आबादी वाला देश है। विशाल भारत के समग्र समावेशी विकास के लिए कामकाजी व्यक्तियों के लिए विशाल जनसंख्या की आवश्यकता होगी। अतः भारत को एक युवा राष्ट्र कहा जा सकता है। यदि एक ओर देश की युवा शक्ति देश व विदेश में अपनी भारत माता का परचम लहराने में अपनी भूमिका अदा कर रही है, तो दूसरी ओर अनेक विघटनकारी विसंगत गतिविधियों में अशिक्षित युवाओं की तुलना में शिक्षित युवाओं की भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है। कितने ही ऐसे युवा हैं जिन्होंने विश्व पटल पर भारत की धाक जमाई है। युवा उस परमाणु शक्ति की तरह है जिसका सकारात्मक उपयोग होने पर अनुकूल ऊर्जा प्रकट होगी। आज दुनिया में कोई संगठन हो या कोई व्यक्ति सफल हुआ है तो इसी सिद्धांत के बल पर। यदि कोई प्रण कर ले कि मुझे दुनिया में जितना मिला है उससे अधिक वापस करूँगा, तो वह दुनिया के हर लक्ष्य को पा सकता है। विश्व स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करके भारत के युवा आज आर्थिक विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए मेरुदंड सिद्ध हो रहे हैं। आज दुनिया की कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, चाहे विश्व भौगोलिक प्रतिस्पर्धा हो, विश्व गणितीय प्रतिस्पर्धा हो, ITI, सेवा, खेल, लगभग हर क्षेत्र में भारत का युवा अपना प्रभाव दिखा रहा है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों व समाजशास्त्रियों के अनुसार भारत आज आर्थिक व सामाजिक रूप में महाशक्ति बनता जा रहा है और यह युवाओं के अथक प्रयासों से ही संभव हो पा रहा है। भारत वास्तविक अर्थों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे यकीन है कि इस देश को हम तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दुनिया का बेहतरीन देश बना सकते हैं। भारत देश की युवाओं में जबरदस्त संभावनाएं हैं, ऊर्जा है और बहुत कुछ कर गुजरने की भावना भी। हमें एक ऐसा भारत का निर्माण करना है जो विश्व में सर्वोपरि हो। हमारे देश के युवा भारतवर्ष को उन्नत व विकसित देशों की कतार में लाने के लिए अपना

ગીતકારાત કુમાર ઔર સંગીતકારાત મિત્રોશ તો ઈ આશુનુઆ એ ગીત કે

जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी

0: तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: तो संगवारी मन, तुम्ही जहालेली पहिल सुनते रहलास बागी फिल्म ले ए गीत के। ए गीत ने बारिश चो, बूंद प्यार चो, भावना और नित्य चो सुंदरता चो मनमोहक संगम के दखुक मिलुआ। ए गीत ने श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका निभाला सोत।
2: तो संगवारी मन, ए नए तरह ने चो गीत के डंडिक थे बाऊं भाती ज्ञान ध्यान चो गोट के बोले मूर करूँ। तो संगवारी मन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चो शुरुआत 22 जनवरी 2015 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाटले हरियाणा चो पानीपत ले शुरू करला। ए योजना चो मुख्य उद्देश्य आए देश चो धरलो बाल लिंग अनुपात के सुधार तोर और बालिका मन के सशक्त और सुरक्षित और शिक्षित बना तोर काजे बनाला से।
1: हाँ, भारतीय मुद्रा जो प्रतीक चिन्ह के डिजाइन कर तोर करलो बीती व्यक्ति चुनाव धर्मलिंगन नावाय ने।
2: हाँ, भारत ने सबले पहल 1983 ने कपिल देव की कप्तानी पहल हार क्रिकेट विश्व कप जीतुन रहे।
1: हाँ, भारत ने पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जीतला ने। हाँ, 1913 ने। हाँ, साहित्य चो क्षेत्र ने जीतुन रला।
2: हाँ, भारत ने साक्षरता चो दर सबले ज्यादा केरल में आसे ने।
1: हाँ, और केरल के भारत चो अग्रणी शिक्षित राज्य बल माना जावे ने। एथा ने शिक्षा के हमेशा महत्व दीवार।
2: हाँ,
1: और केरल चो साक्षरता दर बले देश चो दूसरा राज्य मन ले बले चो तुलना ने सबले अधिक आसे ने।
2: हाँ, तो संगवारी मन, ए तो रली आजी चो सामान्य ज्ञान चो गोठ। एदाय तुम्ही सुना से सामुदायिक गीत ओडिया भाषा ने। एचो रचनाकारात केसी पानीग्राही। तो सुनो ये सामुदायिक गीत के।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: तो संगवारी मन, अगला गीत आप मन सुना से फिल्म दिलवाले ले। स्वर दिलासत अरिजीत सिंह, कनिका कपूर, नेहा कक्कड़, नकाश अजीज, गीतकारात अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकारात प्रीतम। तो या सुनवा ये गीत के।

0: तो संगवारी मन घड़ी बाके दखने ने समयाबल होली से आमी उम्मीद करूँ से कि आजी चो कार्यक्रम आप मन के अच्छा लागली होती। तो आम के दिया विदा, माया तुम चो कंपेयर दोस्त देवकी सेठिया
1: और माया तुम चो कंपेयर दोस्त दिलबत्ती सेठिया।
0: आमी दोनों
1: करूँ से
0: जुहार।
1: संध्या जुहार।

0: युववाणी, अभी आप युवा दोस्तों का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों से विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष जांच दल से जांच संबंधी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से

0: जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्रियों को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 6 लेन का यह देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। यह स्वचालित और रोबोटिक मशीनों की सहायता से निर्मित देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर ₹275 टोल टैक्स लगेगा। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है। और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति

भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति

0: पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन की लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर ही सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। आप हमें न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय शाम के 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ी में समाचार का प्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मैं स्मिता शर्मा। आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र शुरू। सदन में प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई ला देगी श्रद्धांजलि। विपक्ष हा उठाईस राम मंदिर दान चोरी के मामला। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग हा राज्य के 5 नवा सरकारी मेडिकल कॉलेज ला दीस स्वीकृति। और प्रदेश में किशोरी मनला सर्वाइकल कैंसर ले बचाए खातिर आज ले विशेष एचपीवी टीकाकरण सप्ताह शुरू। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र आज ले शुरू हो गए है। 17 जुलाई तक चलैया ये सत्र के दौरान कुल 5 बैठक होगी। सत्र के पहले दिन आज सदन में सबले पहली छत्तीसगढ़ के जाने माने पंडवानी गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर तीजनबाई ला श्रद्धांजलि देगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत संग्रा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य मनहा स्वर्गीय तीजनबाई के योगदान ला सुरता करिन। मुख्यमंत्री हा कहिन कि डॉक्टर तीजनबाई के निधन ले छत्तीसगढ़ हा अपन लोक संस्कृति के एक ठन अनमोल रतन ला गंवा दे हवय। उखर जाए ले कला और सांस्कृतिक जगत ला अपूर्णीय क्षति होए हे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज राम मंदिर के दान के चोरी के मामला जोर शोर ले उठीस। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस हा ये मुद्दा में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम ले चर्चा कराए के मांग करीस। जिला विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह हा अग्राह्य कर दिन। एकर बाद विपक्षी सदस्य मन हा शोर शराबा शुरू कर दिन। हंगामा के बीच थोड़कुन देर बाद सदन के कार्यवाही ला स्थगित कर देगी। दोबारा सदन के कार्यवाही शुरू होते साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक होइस। एकर बाद अध्यक्ष हा सदन के कार्यवाही ला काली तक बर स्थगित कर दिन। उन्हें प्रश्नकाल में आज भाजपा विधायक लता उसेंडिया कोंडागांव के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में बीएड और डीएड पाठ्यक्रम नहीं चलाए के खाली पद में भर्ती और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में काम के मामला ला उठाइन। जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा हा बताइन कि विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दे गई हवे और भर्ती ले जुड़े कोनो भी प्रकार के शिकायत नहीं मिले है। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर हा घलो प्रदेश में 4 के बीएड और डीएड पाठ्यक्रम शुरू करे के दिशा में सरकार के तैयारी के बारे में पूछिन। एमा उच्च शिक्षा मंत्री हा स्वीकार करिन कि प्रदेश के कतकुन महाविद्यालय जरूरी मानक के अनुसार नहीं है। राज्य में नवा शिक्षा नीति के अनुसार 4 के पाठ्यक्रम लागू करे के प्रक्रिया बनाए बर एक ठन टास्क फोर्स के गठन करेगी है। इसने प्रश्नकाल में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधान में गांव के बंदोबस्त के मामला उठिस। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा हां कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव के सवाल के जवाब में बताएं कि प्रदेश में 746 गांव के सर्वेक्षण नहीं हुए हैं। जेमाले 371 गांव में सर्वेक्षण चलत है, उन्हें 375 गांव में सर्वेक्षण नहीं हुए है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC डहरले प्रदेश के गीदम, कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चापा और कबीरधाम में 50-50 MBBS सीट वाले 5 नवा शासकीय मेडिकल कॉलेज के स्थापना पर चालू शैक्षणिक सत्र ले मंजूरी दे देगी हवे। एक संग प्रदेश में कुल 250 नवा MBBS सीट के विस्तार होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा ये उपलब्धि ला प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास के ऐतिहासिक पड़ाव किहिन। ओमन किहिन कि प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी और आकांक्षी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के स्थापना ले स्थानीय युवा मन ला अपने राज्य में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के ज्यादा मौका मिली। संगे संग विशेषज्ञ डॉक्टर मन के संख्या बाढ़ी और क्षेत्रीय स्तर में स्वास्थ्य सेवा के गुणवत्ता में घलो सुधार आही। प्रदेश में किशोरी मनला सर्वाइकल कैंसर ले बचाए बर आज ले विशेष HPV टीकाकरण सप्ताह शुरू हो गए है। एमा 14 के उम्र के सबो पात्र नोनी मनला स्वास्थ्य विभाग दाहर ले निःशुल्क जीवन रक्षक एच

राज्य के 5 नवा सरकारी मेडिकल कॉलेज ला दी स्वीकृति आउ प्रदेश में किशोरी मनला सर्वाइकल कैंसर ले बचाए खातिर आज ले विशेष HPV टीकाकरण सप्ताह शुरू। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है।

0: यात्रानुमति पत्राय द्वाविंशत्यधिक चतुश्शताधिक पञ्चदश सहस्र रूप्यकाणि यावत् अनुदानं प्रदास्यति। उदग्रयान पर्यटन सेवा जुलाई मासस्य अष्टादश दिनांकादारभ्य प्रत्येकस्मिन् शनिवासरे रविवासरे च संचालिता भविष्यति। मध्य प्रदेशस्य भोपाल नगरे एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 इत्यस्य आयोजनं प्रचलति। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवः सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत् तथा 870 दशांशोत्तर सप्तकोटि रूप्यकाणां निवेशेन स्थापितानां 20 औद्योगिक केन्द्राणां शुभारंभम् अकरोत्। अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं मध्यप्रदेशं देशस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी औद्योगिक केन्द्र रूपेण विकसितुम् अस्ति। सम्मेलनं संबोधयन् मुख्यमंत्री अवदत् यत् विगत द्वादश वर्षेषु भारतं विश्वस्य शीघ्रतम विकासमान देशेषु अन्यतमं जातम्। असौ अवदत् यत् पूर्वं मध्य प्रदेशः केवलं कृषेः कृते प्रसिद्धः आसीत्, किन्तु अधुना राज्ये ड्रोन यानात् आरभ्य प्रक्षेपणास्त्र पर्यन्तं निर्माणं क्रियते। भारत जापान देशौ अद्य स्वतंत्रं मुक्तं नियमाधारितं च हिन्द प्रशांत प्रदेशं प्रवर्धयितुं स्वस्य प्रतिबद्धतां पुनः सुदृढीकृतवन्तौ। जापान देशस्य टोक्यो नगरे आयोजिते अष्टमे रक्षा नीति संवादावधौ उभौ देशौ विद्यमानस्य क्षेत्रीय वैश्विकयोः सुरक्षा पर्यावरणस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। टेनिस क्रीडायां इटली देशस्य यैनिक सिनर इत्येषः जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर जेवेरेव इत्यमुं पराजित्य स्वस्य विम्बल्डन पुरुष एकल उपाधिं यथावदेव धारयति। इति वार्ताः।
1: एफएम बैंड और मीडियम वेव पर इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र को। शाम के 6:30 हुए हैं।

मीडियम वेव 396.89 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। यह है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। अब लीजिए सुनिए सुदनी और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

सुदनी और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने।
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता

0: से कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है, और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई को दी गई श्रद्धांजलि, विपक्ष ने उठाया राम मंदिर दा

प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई को दी गई श्रद्धांजलि। विपक्ष ने उठाया राम मंदिर दावे। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई को दी गई श्रद्धांजलि। विपक्ष ने उठाया राम मंदिर दावे।

0: प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई को दी गई श्रद्धांजलि। विपक्ष ने उठाया राम मंदिर दावे को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने स्वर्गीय तीजन बाई के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कला के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर तीजन बाई के निधन से छत्तीसगढ़ ने अपनी लोक संस्कृति का एक अनमोल रत्न खो दिया है। उनके जाने से कला और सांस्कृतिक जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज राम मंदिर के दान की चोरी का मामला जोर शोर से उठा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराने की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अग्राह्य कर दिया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल के लिए स्थगित कर दी। वहीं प्रश्नकाल में आज भाजपा विधायक लता उसेंडी ने कोंडागांव स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में बीएड और डीएड पाठ्यक्रम संचालित नहीं होने, रिक्त पदों पर भर्ती और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का मामला उठाया। जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और भर्ती से संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्नकाल के दौरान ही भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने भी प्रदेश में 4 वर्षीय बीएड और डीएड पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में सरकार की तैयारियों के बारे में पूछा। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि प्रदेश के कई महाविद्यालय आवश्यक मानकों के अनुरूप नहीं हैं। राज्य में नई शिक्षा नीति के अनुरूप 4 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने की प्रक्रिया तय करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसी तरह प्रश्नकाल में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत गांवों के बंदोबस्त का मामला उठा। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव के सवाल के जवाब में बताया कि प्रदेश में 746 गांव असर्वेक्षित हैं, जिनमें से 371 गांव में सर्वेक्षण प्रक्रियाधीन है, वहीं 375 ग्रामों में सर्वेक्षण शुरू नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक और कांग्रेस विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह को उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना गया है। वहीं उत्कृष्ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए प्रिंट मीडिया से संतराम साहू तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संयुक्त रूप से सौरभ परिहार और राजेश राज का चयन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज सदन में इसकी घोषणा की। चयनित उत्कृष्ट विधायकों और उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारों को आगामी 15 जुलाई को विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह राज्यपाल रमेंडे का सम्मानित करेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी द्वारा प्रदेश के गीदम, कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा और कबीरधाम में 50-50 एमबीबीएस सीटों वाले 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए चालू शैक्षणिक सत्र से स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल 250 नई एमबीबीएस सीटों का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि को प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास का ऐतिहासिक पड़ाव बताया।
1: छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गौरव और खुशी का अवसर है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के द्वारा बीबीएस सीट वाले 5 मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 में स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे प्रदेश में एक साथ 250 एमबीबीएस की सीटें जुड़ रही हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी और आकांक्षी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से स्थानीय युवाओं को अपने ही राज्य में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को छत्तीसगढ़ के बस्तर की प्रसिद्ध ढोकरा ट्री ऑफ लाइफ धातु शिल्पकृति भेंट की है। इससे बस्तर की पारंपरिक जनजाति कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य की समृद्ध जनजाति संस्कृति और पारंपरिक शिल्प के लिए सम्मान बताया है। ढोकरा कला विश्व की सबसे पुरानी धातु शिल्प परंपराओं में से एक मानी जाती है। इसे मोम के सांचे से ढलाई की विशेष तकनीक से बनाया जाता है। प्रदेश में किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने के लिए आज से विशेष एचपीवी टीकाकरण सप्ताह शुरू हो गया है। इसके तहत 14 वर्ष की आयु की सभी पात्र बालिकाओं को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निशुल्क जीवन रक्षक एचपीवी टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में धमतरी जिले में भी पात्र बालिकाओं को टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूलों से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों तक तैयारियां की गई हैं।

0: मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण ही सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि समय पर लगाया गया एचपीवी टीका इस गंभीर कैंसर से बचाव का सबसे सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित माध्यम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता।
0: आकाव का सबसे सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित माध्यम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता।

कलकत्तर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया। शोक दिवस के दौरान देशभर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार नक्सल मामलों में जेल में बंद ऐसे लोगों के प्रकरणों के त्वरित निराकरण और रिहाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जिनके खिलाफ कोई गंभीर जनहानि का मामला दर्ज नहीं है। आज बस्तर क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधियों, नक्सल प्रकरणों में निरुद्ध लोगों के परिजनों और नक्सल पीड़ितों से विधानसभा परिसर में मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नक्सल मामलों में जेल में निरुद्ध लोगों के प्रकरणों की जल्दी और न्याय

0: को कुल 18 करोड़ 71 लाख रुपए तथा 124 नगर पंचायतों को 11 करोड़ 89 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित विश्व स्तरीय एशिया पैसिफिक अफ्रीकन अंतर्राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भिलाई के खिलाड़ी अमान शुक्ला ने क्लासिक स्पर्धा के 120 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। अमान शुक्ला ने इससे पहले प्रतियोगिता की इक्विप्ड श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने करीब 55 किलो गांजा के साथ दो महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ये गांजा मध्य प्रदेश के रीवा ले जा रहे थे। आरोपियों के पास से जब्त गांजे की कीमत 27 लाख रुपए से अधिक की बताई गई है। वहीं रायपुर की कमिश्नरेट पुलिस ने टिकरापारा थाना क्षेत्र से 46 किलो गांजा जब्त किया है। इसकी कीमत 29 लाख रुपए आकी गई है। इस मामले में एक दंपत्ति समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वर्षा का मुख्य केंद्र उत्तरी छत्तीसगढ़ रहेगा। मौसम विभाग ने एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक 258 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। ये इस अवधि में होने वाली औसत वर्षा का 82% है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। सूरजपुर जिले की शासकीय शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लंबित आधार बायोमेट्रिक अपडेट के लिए संकुलवार विशेष आधार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से 3000 से अधिक विद्यार्थियों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चालू खरीफ वर्ष के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। अऋणी कृषक जन सेवा केंद्र के माध्यम से फसल बीमा करवा सकते हैं। और कोरबा वनमंडल के करतला रेंज के चोरभट्टी जंगल में 9 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर लगातार निगरानी कर रही है। वहीं आसपास के गांव में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू। प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई को दी गई श्रद्धांजलि। विपक्ष ने उठाया राम मंदिर दान चोरी का मामला। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने प्रदेश के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए चालू शैक्षणिक सत्र से कुल 250 सीटों की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को बस्तर की प्रसिद्ध ढोकरा ट्री ऑफ लाइफ धातु शिल्पकृति भेंट की। और प्रदेश में किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने के लिए आज से विशेष HPV टीकाकरण सप्ताह शुरू हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है।
1: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
1: कहाँ?
3: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: अमरली स्फुलो
1: अमरली का राम राम चाल की राम राम
0: आले राम राम देवे ये ची संगे संगे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुनते और सब पाए गाँव करी दादा दीदी भाई बहन सियान सजन मन के मैं चाल की
1: और मैं फूलो
0: हमें दोनों करूँ से
1: राम राम, राम। और नानी नानी पीला जी राम के बोले हमसे दोनों चबाट ले खुबे खुबे मैं और
0: चुमा बोले ने दक फूलो हमें तो समय हो लेने हम चो गाँव करी दादा दीदी मन का जो ज्ञान दिया गोट गीन गोविंद धरुन ये उसे चीने मंत्र दक की आमचो जो गांव बाटी हो ने गांव बाटी आमचो कहीं

0: काम हो, चाहे दुख चो हो, नाले सुख चो हो, नाले हरिक चो हो, नाले बुता बहना चो हो,
1: नाल फेरे उन जगार बोले हो से ने
0: हाँ होनी तो बोले इसका ने
1: मंडी मेला सपाई
0: सपाई ने जोन बोले है दुख सुख हरिक उदिम खेती कमानी बेरा ले बोले ने सब था नहीं। अब जैसा नाम ये दकों से कि हम जो आजकल रोपा लगा तो निंजा तो हो गीत गाय सोते गीत गाय सोतने
1: कार कहानी के सांगे सोते
0: सांगे सोतने मतलब उन कहानी के बोले गीत जो हिसाब ले सांग सोतने और उसने
1: खूब
0: हरिक बल लागे से उसने चीज जैसा गांव चो मंडी आए बाजार आए नाले फिर गांव चो जतरा आए जोन बोले आए ने होता बोले कहीं ना कहीं बाजा मोहरी गीत गोविंद आसे ची और संगे संगे जैसा नाम चु बिया बर्पन होली है बिया बर्पन ने बोल दक कि हर रुसुम का जो गोटक गीत आसे
1: आसे कहे मंत्र चाल की मैं गोटक गोट बोलो है दक ए बेचो जसन गाय सोती एको अलग होय से पोई चो अलग रेडी
0: ने दक आगे जुगे चो जो नी जुन गीत आए बल्ले ने ए बेचो नो आए उन आगे जुगे ले हुन मन गावते है सोत हुन चोक सुनुन दूसर सीखे से फिर हुन चोक सुनुन दूसर सीखे से असने सीखते सीखते गीत गोविंद मन आम चले गए अमरली से और ए बेचो नो नो हिसाब दक आगे तो काय रहे बाजा मोहरी ढोल नंगाड़ा नंगरा बोल लो चलते रहे मात्र तक
1: डीजे होली चे
0: कल बाज भारतीय जुग आए तो नवा नवा कल मशीन मन और बजा तो जीनिस मन हिली धोनी साहब ने गीत मन के बोल खिनिक अलगे अलगे कर ला कोकटा वाकटा बनान बाकी जल जला बना लो वसन ने है दक ना लागे काय काय आए रसिया सुरसुरा गावते रहो मंत्र ये भी तक ढिजिक ढिजिक बजाए सो तार फेंकाए सो इतने बोल तो कोटी आई कि आमचो जोन पारंपरिक जोन लोकगीत मनाए उन आमचो आगे जुगे आमचो विरासत ले आमचो पुरखती बेरा ले मिरली से मंत्र उनके आजकल जो हिसाब ने नवा नवा उबाट ने उन गीत के आम चला घमराए सो और उन गीत बोले सपाई नहीं रहे से खिनी कसन रहे से
1: और उन बाजा खुबे रहे से
0: बाजा खुबे रहे से कस बोले आजकल लोग मन ढड़ंग ढांग ढुड़ंग ढड़ंग के जुगे मन कर सो मंत्र तक की ये जो नाम चो
1: कान फाड़ लो आए गए
0: हाँ मंत्र आम चो जो पारंपरिक गीत मन है आगे जुगे चो आम चो आई दादा पुरखती बेरा चे गावती है
1: ये मन का सुंदर रहे ने
0: सुंदर रहे से और एक के जो ना यानी बचान बल संगात रहे दक आजकल हम
1: इला जिला में नहीं जानो
0: नहीं जानो तो हम कई जगह मन दकूं से कि कई लोग मन अलगीत गाहरी बोल लेने नहीं गाय सोत
1: लाज
0: होय सोत मंत्र तक कि ये जो ना आप लोग पारंपरिक गीत मना है कि जानू रतो रहा है सीख तो रहा है अरे के आगे बढ़ा तो रहा है ताकि आमी आमचो ये तो बेराचो जोन बोले पीढ़ी हो ऐसे उनके आमी दे कि ये आमचो आगे जुगे चो पुरखती बेराचो गीत गोबिना है कि तुम ही बोले जानू रुआ
1: आए कहे दकस ने दखल भी हो ऐसे भतरी हो ऐसे धुरी हो ऐसे गोंडी हो ऐसे और छत्तीसगढ़ी सपाई गीत
0: सपाई हो ऐसे दक आमचो बस्तर जिला ने बोल लेने सपाई बाटे और बाटे आसे जैसन गोंडी दोरली आम बीजापुर बाट जाऊँ दोरली है सुकमा दंतेवाड़ा बाट जाऊँ गोंडी कोंडा गांव कांकेर बाट जाऊँ ये बाट छत्तीसगढ़ी और गोंडी मिश्रा ऐसे आमचो लगता के उड़ीसा कटा कटा भतरी है अरे मुंजी गता हलवी बोली आसे तो मतलब सब जो आप भाषा ने गीत गोविंद मन आसे और ये आप लोग विरासत ले मिरते ही से
1: तो जगार गीत होली चैत पर्व होली ले जा होली सब पर गीत मन रह चे था
0: ये जो पारंपरिक गीत है आम के आम जो विरासत ले मिरली से एक अच्छा संगा उरत रहा है और आगे बोले आम के बड़ा तो रहा है
1: दक ये तो होली गोड बात नहीं मंत्र मैं बोलते नहीं चाल की दक ये होली गोड बात है जो संग संग मैं बोलते ना ले जहा लग बोले सुन
0: आले
2: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तक टैक्स तुन और सरल बना की तोड़ बस ट्रक और

एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडो लेकिन 18% टैक्स की सितोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी न सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सितोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच ईयनो

0: कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे, आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा कर लो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से। ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेंतो लोग अरु सप्लायर्स चो चिपा गुचे दे। एचई संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम भले सरल होए दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे, ए मन ने कहीं बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सफाई गाड़ी, दुई चक्का बीती गाड़ी और तीन चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रहे दे। असल ले ये मन सफाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
3: हाँ तो फिर तक ये गोट मन बल तो होली ने
4: होली का मंत्र मैं बोलते हैं गीत गीत चो गोट गोठियालू ने मंत्र गोट गीत होली नगत रहती
3: है। असन तो वाले ये मीना और संगोरी मंचो गावलो ये गीत के बोले आले सुना देव देव
4: आले।

0: हाँ तो फूलो
1: हाँ
0: दखे का है रसिया गीत के
1: मांड
0: गाओ।
1: भंगा गीत ने
0: हाँ
1: और दखुन के कमात रहे और
0: हाँ
1: लाभ
0: कमा
1: कमात रहे
0: सत्य कोट है मातर दख के गीत के गाऊ रोत मीना और उनमचो
1: संगवारी
0: संगवारी।
1: मान बोले तू के गीत संगे संगे ना बोल खुबे सुरता
0: अब कसम
1: असन।
0: करूँ आ सामी को के गीत गाओ तो कज हक दे रू आप है सगा माने बोल लो असन तो उन चुनाव गाँव के जानुक लागे
1: लागे
0: चीने।
1: से
0: हाँ
1: है के
0: तो कसन तू क्या और गीत सुनुक भाई इसका कसन
1: सब
0: दरिया
1: यहाँ
0: करिया
1: से सुनू किस
0: दक्षिण
1: भाव से जाना।
0: असन तो वाले ये दे राजश्री देव और संगवारी मंच गाउन रोलो ये गीत के बोले सुना दे।
1: आले।

0: हाँ तो फूलो
1: काय सुंदर गीत
0: गीत रहे ने और
1: जी संग संग जातो समय बोले हो
0: हाँ और एक गीत के गाँव गाते रहो तो रात्रि देवार हूँ मंचो संगवारी काम से जातो समय बोल हो से ने अले मुंडरागढ़ रख सकल और मुंडे भो इते भी तक मैं बाटे विदा मांगन थे
1: तो मैं बोल सुन रहे थे ते
0: आ लेते भी तो जातो पूरे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सब पाए गांव करी दादा दीदी भाई बहन सियान सजन मन के मैं चाल की
1: और मैं फूलो
0: हमें तुम करूँ से
1: राम राम, राम।

बस्तर के स्वर, अभी आप हमारा ये दैनिक कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम जो गांव।

0: ने तो उसने खेती कमानी लोग मन बोले सप्पा ही लोग मन आजकल तो भारदार रोपाने भुरल्ला
1: से मात्र पानी तो खिन कम होए
0: कम होए से मात्र जोन चो लगे पानी चो सुविधा आसे जोन किसान भाई मन लगे आसे तो उन मन तो कर सोची ने मात्र दक की ये जोन आजकल चो जोन काम बुता तो कर सोची मात्र मैं बोलते रहे ये वो तो गोट के कि आमचो जोन गांव बाटी हुई से ने जैसे ने आम चो बस्तर ने हम दकूं से कि सब बाट जो अलग अलग बोली भाषा हुई से ये बाट ता तू बीजापुर बाट जा दोरली संग चो गुंडिया है हैं ओडिया का है तेलुगु संग चो गुंडी बोल लो सन हैं और
1: अलग अलग क्षेत्र ने अलग अलग
0: हाँ दंते सुकमा दंते वड़ा बाट दक गुंडिया है कांकेर बीजापुर बाट गुंडी संग छत्तीसगढ़िया है और दे आमचे मांदरकोंटा ये चे बाटे जा घनी धुरवी बोलूँ से आम्ही धुरवा मंचो गोट बोलतो आहे की जन आमचो जोन बोली भाषा आहे आमचो जोन जाती पाती आमचो संस्कृती आहे कोणचो संज्ञा असे जोन की आम्ही आपलो मातृभाषा बोलूँ से मातृभाषा बोलले दक की आम्ही आमचो घरे आमचो माय बाप ले आमचो पुरखती ले जोन गोठियाँ से उनके आमचो खोजाखारी भाई मन मातृभाषा बोल सो दक और ये मातृभाषा के दक आजकल तो भारतीय युग है और भारतीय युग ने जो नए नए लोग मन जैसे नाम चो पढ़ी लिखी चो गोट जोन की हिंदी बोलूँ से हमें अंग्रेजी बोलूँ से तो धीरे धीरे करुण बाती ये भी चो जोन ये तो लेखा लेखी मोना ये आप लोग मातृभाषा बोले जोन बोले गोंडी धुरबी भतरी दोरली जोन बोले आए उनके धीरे धीरे भूलते जाए सो कह बोले ये मन दूसरी स्कूल में जाए सो पढ़ा लिखा हिंदी और अंग्रेजी भाषा के तक पढ़ तोर लिख तोर सब आए दूसर गोट के बोले जान तो रहा मानतर आप लोग जोन मातृभाषा जोन आमचो पुरखती बेराचो आमचो जोन कुटुम चो आमचो जोन जाति चो आमचो जोन रसम चो जोन घोट आए जोन क्या मातृभाषा बोलूँ उसे एक बल भुलक तोर नो है चाहे तुम्हें हिंदी पढ़ा अंग्रेजी पढ़ा तेलुगु पढ़ा
1: मलयालम आप लोग घर चो गोट के नहीं हाँ
0: बोले ने जितलो दुनिया चो सब भाषा के सीखा मानतर आप लोग बोले भाषा आप लोग घर चो जोन गोट बात आए जैसे नहीं भी आमी हलबिन गोटे हाँ उसे ने
1: घर चुपीला जिला बोले उसने गोटे
0: हाँ तो ये आम चु मातृभाषा होली असने कई लोग मन तक उसको नहीं गोंडीन घरे गोटे हुआ कोनी तेलुग धुरवी ने गोटे हुआ कोनी छत्तीसगढ़ी ने गोटे आए सो तो जोन बोले अपन मन चु भाषा आए भाषा के आम चु नवा पीढ़ी जोन यही से पढ़ तो लिख तो लेखा लेखी सीख तो रहा है जान तो रहा है और एक

0: जन भाषा हो जाए कि मैया करते रहे कुन लग लाज नहीं होते रहे
1: लाज होले कहाँ लुए उनकी बोले इसका है कि ये मन कई लोग मन लाज होन बात है आप लोग हलवी नाले गोंडी नाले धुरवी नाले छत्तीसगढ़ी जोन बोले उनचो भाषा हुए गोठे का लाज हुआ है भाई उन आमचो मातृभाषा है आमचो घर चो भाषा है गोठिया उस तू तो काय का लाज होते रहे
0: नहीं होते रहे
1: तो दक ये तो गोट रली ने मंत्र संगे संगे आम चले गए और गोट मन आसी ए गोट मन की बोले अमरान देव।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: GST काउंसिल बुधवार नेटेन घोषणा की सरकार सीमेंट तपोर्रो GST मोला 28% तुन कम किस इंजे 18% की सित्ता टैक्स तगा कमी कितांक आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम मायना दुमिद मिंदे इलेकेन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके उनले कटात बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% GST लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडकल तीन जोड़ाई कियान बूताते वेंड मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
1: हाँ तो फूलो दके गोड़ तो होली ने मंत्र तक कि आजकल हम चो गांव वाड़ दो कौन से कि बेड़ा बूता भारदार चले इसने
0: और तक पानी बोले
1: पानी बोले आए दिन भर उनमें चिकल पानी नुबुन बाती पला झिक सोत ना ले रोपा लगा
0: बहिन मने
1: हाँ सब आए बहिन मन हो चाहे भाई सा भाई मन हो सब आए जोन बोले हो ने दोनों मेहरार हो ना ले फिर मनुख मन हो दिन भर आप लोग बेड़ा बूतान आसोत ने और संच की इला बोल लेने मेरा मन चूल्हा चुपूता तक सोत ने रांधा बोड़ी आए बोलून बात घर चुपूता बोल हो ऐसे मंत्र तक की ये जो नाम जो गांव बाड़ चु मेहरार मन है दिन भर बूता कर सोत घरे उन बूता
0: मंत्र चाल की दे पाए अच्छा रल तो कर दे
1: साते गोट के बोल ली दखुन की बोले इसका दिन के बोले बेड़ा ने बूता संच के घर चो बूता और एकदम मन आप लोग देह पाए ध्यान नहीं दे इस उतने तो असनी ची ये मेहरार मन आप लोग देह पाए कि कसन देखा रखा कर दे और कसन नंग संगाऊ रह दे तेबे अच्छा बूता पाए ना कर दे एक गोट भेट वार्ता से
0: कसन बल दक मेहरार मन अच्छा रहे घर अच्छा रहे
1: रहे से सत्य गोट आए तो असनी दक ये ता जोन भेटघाट जो गोट आए ये मन डॉक्टर साहब मन सांग सोत ये मन डॉक्टर कुमुंद कुंवर और ये मन संग भेट कर सोत बलबीर सिंह कच्छ
0: तो वाले गोट मन के बोले आमी सुनो दादी मन बोले सुनो
1: आले
6: गांवकारी भाई बहन मन असन तो अपन मन जाना से कि नहीं जान तो कारण ने कई असन बीमारी से मारी हो से जुगे करुण बल्ले ने गाँव छो जन बाई ले लेके मना ये मन के तो ये गोट बात कर तो काजे आज आमता नीला से डॉक्टर कुमुद कुंवर सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे ग्रामीण महिलाएं हैं खासकर बरसात के समय उनको मतलब कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना रहती है।
7: ग्रामीण महिलाओं का जैसे रहता है कि स्वास्थ्य का पहले सबसे ज़्यादा ध्यान अपन को देखना है तो खान पान से शुरुआत होती है। खान पान किस तरीके से उन लोग खान पान कर रहे हैं तो उसका सीधा असर अपन के स्वास्थ्य में ज़्यादातर ज़्यादा पड़ता है। तो खाने आजकल के बारिश के मौसम में खासकर कोशिश ये करना चाहिए कि अपन को हरी पत्तेदार सब्जियाँ अभी नहीं खाएँ,

0: ज़्यादातर ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे उल्टी दस्ते की शिकायत जो आजकल खासकर बच्चों में भी ज़्यादातर यही चीज़ शिकायत होती है, जैसे कि महिलाओं में हो रही हैं, जो कि उल्टी दस्त बहुत ज़्यादा जल्दी फैल जाता है। तो इससे अपन को सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो सावधानी के नाम से अपन को पहले ये देखना पड़ेगा कि उन लोग पानी का उपयोग किस तरीके का कर रहे हैं और कौन सा पानी पी रहे हैं, कहाँ का पानी पी रहे हैं। कहाँ का पानी मतलब इन लोगों को कोशिश ये करना चाहिए कि आपको नलकूप का पानी पी तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कुएं का पानी पी रहे हैं तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर या आजकल बहुत सारी क्लोरीन के टैबलेट्स आते हैं, वो डाल सकते हैं आप उसमें, तो उससे पानी को आप शुद्ध बना सकते हैं। अगर उस तरीके का पानी नहीं भी ले रहे हैं, कुएं का पानी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश करिए पहले उस पानी को गर्म कर लें, उबाल लें अच्छी तरीके से, उबाल के फिर उसको ठंडा होने के बाद उस तरीके का पानी का उपयोग कर सकते हैं अपन। खान पान में देखा जाए तो अपन को कोशिश ये करना है कि हरी पत्तेदार सब्जी जैसे बरसात में नहीं खाना है, तो उसकी जगह पे आप मौसमी जो भी सब्जियां मिल रही हों उसका उपयोग कर सकते हैं आप खाने में, है ना। तो खाने को भी चीज़ों को ज़्यादातर पहले उसको धो लें, उसका अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, उसके बाद फिर उसका उपयोग करें खाने के लिए। इस तरीके से आप उसका स्वास्थ्य का ध्यान कर सकते हैं।
1: अच्छा, जैसे पौष्टिक आहार के रूप में खासकर गाँव के जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनको मतलब क्या लेना चाहिए?
0: गर्भवती महिलाओं का जैसे आजकल तो बहुत सारी योजनाएं निकल गई हैं अपने गांव के लोगों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए, उनको आजकल बोला जा रहा है कि सरकार ये एक योजना चालू करवाई है, अभी अभी निकला है, जननी सुरक्षा के लिए योजना है इसमें, जिसमें कि जननी मतलब गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उसके साथ उसमें होने वाले बच्चों के लिए स्वास्थ्य की योजनाएँ बनाई गई है सरकार के द्वारा। इसमें कोशिश ये किया जा रहा है कि अब संस्थागत जचकी होने के लिए लोगों को आकर्षित किया जा रहा है। इससे सरकार अपनी तरफ से कुछ उनको मतलब रुपए इनाम के रूप में प्रदान भी कर रही है। तो अगर आप संस्थागत डिलीवरी कराते हैं या जचकी कराते हैं तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिल सकता है। या अगर जैसे आपको जचकी के पहले जैसे आप गर्भवती होते हैं, गर्भ रुकता है तो उसको तुरंत आपको मितानिन, अभी गाँव गाँव में मितानिन आ गई हैं, मितानिन लोगों को दिखाइए, आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता जो है उनको दिखाइए, उनका टीका लगाइए समुचित, जो भी गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण होता है वो टीकाकरण, फिर वो उनके स्वास्थ्य के बारे में बताती है किस तरीके से खाना वाना खाना चाहिए। आयरन के टैबलेट्स मिलते हैं अपन को आजकल मितानिन लोगों के पास, डिपो होल्डर्स जो रहते हैं अपने गाँव में उनके पास भी इस टैबलेट का उपयोग किया जा सकता है, वहाँ से ले सकते हैं वो। और टीकाकरण में टिटनस का 2 टीका जो लगता है गर्भवती महिलाओं को, वो लगाया जा सकता है। और उनका वजन देखते हैं, उनको स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं किस तरीके का खाना खाना है, मतलब कि मतलब अगर आप चना या गुड़ खा रहे हैं ये आपके लिए जो कि गाँव में सस्ते में उपलब्ध हो जाती है, अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो वो अच्छी बात है, उसका वो ले सकते हैं। दलिया मिलता है आजकल, वो आप उपयोग में ला सकते हैं उसको खाने में, तो इससे क्या उसका जो खून की कमी आजकल जो गाँव में ज़्यादातर खून की कमी के कारण जो बीमारी होती है जिसको हम रक्त अल्पता या एनीमिया कहते हैं, वो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। इससे क्या जो होने वाला बच्चा भी है होगा वो स्वस्थ भी पैदा हो सकता है, है ना। तो इस तरीके से आप गर्भवती महिलाओं को उस तरीके से आप इलाज कर सकते हैं।
1: अच्छा, जैसे टीकाकरण की बात ने आपने कहा तो मतलब कब कब लगाना चाहिए, क्या है उनका समय?
0: तो जैसे अपन ने गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया है 2 टीका, जैसे उसको टिटनस के लगते हैं 1 महीने के उपरांत में 2 टीका लगता है, उसी तरीके से जैसे जन्म होता है बच्चा उसके बाद जन्म के तुरंत बाद आप एक BCG का 1 टीका लगाते हैं, जिससे कि अपन टीबी की बीमारियों का रोकथाम किया जा सकता है उससे। उसके बाद उसको 4, 6, 12 सप्ताह में इस तरीके से DPT, पोलियो का तो खैर अभी एक लहर भी चलता है पल्स पोलियो के नाम से, उसको पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है ड्रॉप की, तो इस तरीके से DPT का टीकाकरण कर सकते हैं। मीजल्स का जो रहता है सेंद्री माता जिसको बोलते हैं अपन, वो अपन को 9 महीने पे लगवाना रहता है बच्चों को। ये पूरा समुचित टीकाकरण का जननी जो जच्चा बच्चा कार्ड बनता है उसमें पूरा टीकाकरण का उसमें लिखा रहता है, तो उस तरीके से आपको आज मितानिन लोग भी उसमें बता सकते हैं कि आपको किस समय आना है। एक बार टीकाकरण लगता है उसके बाद मितानिन उसको बताती है उस महिला को कि आप इसके बाद इस अब टीकाकरण के लिए कब आएंगे। इस तरीके से आपका पूरा बच्चे का जो टीकाकरण का रहता है वो आप टीकाकरण इस तरीके से उसमें लगा सकते हैं।
1: अच्छा, जैसे प्रसव है घर में कराने से और हॉस्पिटल में कराने से, मतलब उसमें क्या अंतर?
0: हाँ, घर में अगर आप जचकी करवा रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि आपको जो भी जचकी करवा रहे हैं वो ट्रेंड होती है, आजकल ट्रेनिंग दिया जाता है मतलब दाइयों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरीके से आप घर में भी अगर आप डिलीवरी करा रहे हैं तो किस तरीके से आप सावधानीपूर्वक सुरक्षित तरीके से माँ को भी सुरक्षित कर सकते हैं और बच्चा जो होने वाला उसको भी आप सुरक्षित कर सकते हैं, तो किस तरीके से आप उसमें उपाय कर सकते हैं, वो दाइयों को आजकल परीक्षण दिया जाता है सरकार की तरफ से, परीक्षण निकला हुआ है, तो उस तरीके के ट्रेंड दाइयों को आप ले सकते हैं जचकी करवाने के लिए। तो उसमें सबसे पहले आपको तो जो आप जिस स्थान में आप जचकी करवा रहे हैं वो स्थान काफ़ी साफ सुथरा सुरक्षित होना चाहिए, उसको साफ सुथरा बनाए रखना चाहिए। उसके बाद आप जो ले आप जो अपना हाथ वात है सब अच्छे तरीके से धो के साबुन वाबुन से उसके बाद जचकी कराने के लिए तैयार होना चाहिए। जचकी में जो

0: पांच चीज़ें मेन उपयोग में लाई जाती है, मुख्य बातें जो हैं पांच है। एक तो साफ सुथरा स्थान होना चाहिए, हाथ को अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। तीसरा ये होना चाहिए कि आप जो नाल है उसको बांध रहे हैं, जिस धागे से भी आप बांध रहे हैं वो धागा साफ सुथरा होना चाहिए। और उसको जिससे काटते हैं नाल को अपन, जो जज्की के बाद, तो उसको जो काटने का जो ब्लेड रहता है, जो भी औजार जिससे आप जिससे भी काटते हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए।
1: अच्छा
0: इस तरीके से आप उसका जज्की सावधानी पूर्वक तरीके से कर सकते हैं, और उससे किसी को संक्रमण होने के चांसेस कम हो जाएंगे, माँ को भी और बच्चे को भी संक्रमण होने के चांसेस कम रहते हैं इसमें।
1: तो जज्की के बाद जैसे दोनों माँ बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य की देखभाल
0: हाँ,
1: कैसे करना।
0: कोशिश ये करना चाहिए जज्की के तुरंत बाद बच्चा को देखना जरूरी है अपन को, बच्चे को किस तरीके से बच्चा आपका निकल रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है, उस तरीके से कोशिश ये करना चाहिए कि सुबह, आजकल जैसे कोशिश हमेशा सुबह शुरुआत की जो सुबह की जो धूप रहती है वो बच्चे को दिखाना जरूरी रहता है। सुबह की धूप से क्या होता है, बच्चे को थोड़ा सा जो पीलिया का चांसेस ज़्यादातर भी आजकल बहुत फैलता है, बरसात के दिनों में पीलिया बहुत जल्दी आ जाएंगे बच्चे को, तो 7 दिनों के अंदर पीलिया जो रहता है वो अक्सर, अगर आप अगर धूप उसको सुबह की धूप दिखा रहे हैं तो पीलिया उसको नहीं होने के चांसेस रहते हैं। साथ में उसको टीकाकरण पूरा लगा सकते हैं, और कोशिश ये करना चाहिए कि ज़्यादा लोगों को उसको हैंडलिंग, मतलब उसको ज़्यादा लोगों को छूने के लिए कोशिश नहीं देना चाहिए। बच्चे को हमेशा ढक के गर्म करके रखना है, अभी तो ठंडी बरसात का दिन आ रहा है, काफ़ी जल्दी बीमारी फैलेगी, उल्टी दस्त भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है बच्चे लोगों को इस तरीके से। और कोशिश हमेशा माँ का दूध सबसे पहले उनको पिलाने की है। बाकी दूसरे ज़्यादातर गांव में ऐसा रहता है कि गाय का दूध, बकरी का दूध, इस तरीके का दूध लोग पिलाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि माँ का दूध अभी बनेगा नहीं,
1: अच्छा
0: लेकिन जो माँ का जो पहला जो गाढ़ा दूध बनता है वो सबसे अच्छी माँ बच्चे के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, तो अपन को वो चीज़ देना जरूरी है। अगर वो चीज़ अगर अपन ने सावधानी पूर्वक नहीं रखा तो हो सकता है आगे चल के बच्चे को बीमारी में सबसे ज़्यादा उल्टी दस्त, सर्दी खांसी, निमोनिया, ये इस तरीके का बीमारी पकड़ने की संभावना रहती है, तो अपन को उससे बचाव करना
1: अच्छा
0: है।
1: बच्चे को जैसे आहार है मतलब कितने महीने के बाद क्या देना
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: 6 महीने तक तो हम लोग ये चाहते हैं बच्चे लोगों को सिर्फ माँ का दूध ही 6 महीने के लिए उसके लिए उपयोगी रहता है। 6 महीने के बाद आप 1 साल तक उसको माँ के दूध के साथ साथ आप ओपन का दूध दे सकते हैं, ऊपर की जो जो तरल वाली पदार्थ हैं वो आप उसको पिला सकते हैं, दाल का पानी है, मतलब चावल का जो पेस्ट तरीके का आता है गांव में ज़्यादातर बनता है, उस तरीके का पेज का पानी पिला सकते हैं, दाल का पानी पिला सकते हैं, बाहर का आपका अगर बाहर से ले सकती है मालाएं तो दूध भी दे सकते हैं उस समय उसको। 6 महीने के बाद आप इसको चालू कर सकते हैं, और 1 साल के बाद फिर आप उसको छोटे छोटे तरल टुकड़े भाग में चावल को टुकड़ा मसल के, उसको केले को मसल के उस तरीके से उसको खिला सकते हैं उसमें, तो उससे आपको आहार मिल सकता है उसके।
1: अच्छा जैसे ग्रामीण महिलाएं हैं मतलब उनकी जो स्वास्थ्य है या घर की जो साफ सफाई है मतलब किस तरह से करना चाहिए ताकि उनको बीमारी
0: ग्रामीण महिलाओं का जैसे अब मैंने पहले बताया था कि उनके खानों पे ज़्यादा खान पान पे ज़्यादा ध्यान देना है अपन को, तो खान पान से अपन शुरुआत करते हैं। तो पहले कोशिश ये करना है जो भी चीज़ें अपन को धो के, जो भी खान पान बना रहे हैं उसको धो के, उसको उनको बोलिए कि धो के बनाएं करके, खासकर जो अपन बता रहे हैं खाने में अपन को खून की कमी ना हो, उसके लिए अपन को कोशिश ये करना चाहिए कि पालक है, हरी भाजी है, ये पत्तेदार सब्जियां हैं, अगर आप मांस मच्छी खाते हैं तो अंडे ले सकते हैं, मछली वछली जो भी मांस मछली खाता है वो उनका सेवन कर सकते हैं, उसको खाने से भी खून की जो बीमारी, कमी की बीमारी रहती है वो नहीं होगी। तो अपन उसको अच्छे तरीके से धो के उसको फिर पका सकते हैं, है ना, तो उसको पकाने के बाद आप उसको लीजिए। अगर इससे अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, अगर अभी जैसे बरसात का मौसम है तो अपन को हरी भाजी वाजी नहीं खाने के लिए जो मैंने कहा है, इसलिए कहा है क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया जो अपन जीवाणु कीटाणु बोलते हैं वो ज़्यादातर उसमें प्रवेश रहता है, तो अपन चाहे कितना भी अच्छे तरीके से धो लें उतने अच्छे तरीके से वो साफ़ नहीं हो पाता है। तो अगर ऐसी चीज़ें खाते हैं तो जल्दी से उल्टी दस्त बरसात के दिनों में फैलने के चांसेस रहते हैं,
1: अच्छा
0: तो उल्टी दस्ते से अपन को बचना जरूरी है बरसात के दिनों में। इससे क्या ग्रामीण महिलाओं में क्या जल्दी से उल्टी दस्ते का असर स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ता है, उसमें बहुत जल्दी कमजोरी आ जाती है उसके कारण, तो अपन को इससे बचना है। तो बहुत सारे अपन के गांव में अभी आजकल डिपो होल्डर्स बना दिया गया है, डिपो होल्डर्स भी हैं, मितानिस भी है, तो अपन को वहाँ से तुरंत अगर आपको दवाई नहीं मिल पा रहा है तो तुरंत आप पहले डिपो होल्डर में जा लीजिए। अगर डिपो होल्डर तक जाने के पहले अगर उल्टी दस्ते से उसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो आप घर में ही एक ORS का एक घोल आता है वो बना सकते हैं, 1 गिलास पानी में लेके आप 1 चम्मच शक्कर डाल दीजिए, चुटकी भर नमक डाल दीजिए, उसको पीते रहिए, बार बार पीते रहिए, जब तक आप डिपो होल्डर तक पहुँचते हैं तब तक आप उसको पीते हुए जा सकते हैं। उससे आपके स्वास्थ्य में जो इस खनिज लवण की कमी होते जा रही है उल्टी दस्ते के कारण वो आपके उसको पूर्ति करते जाएगा वो, फिर आप डिपो होल्डर में जाके उसकी दवाई आप उल्टी दस्ते की ले सकते हैं। ज़्यादा बीमारी अगर उसमें फैलती, बीमारी बढ़ते जा रही है उल्टी दस्ते के कारण, तो फिर आप उसको तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेज सकते हैं।
1: अच्छा और देखिए गांव में अधिकतर जैसे कम उम्र में शादी करते हैं।

0: तो इससे क्या हानि?
1: आजकल जैसे ग्रामीण महिलाओं को भी आजकल टीवी तो घर घर में हो गया है, तो अपन टीवी में भी देखते ही हैं, जैसे जिस तरीके से बताता है कि कच्चा घड़ा अगर अपन उसमें आप पानी डालते हैं तो वो फूट जाता है, इस तरीके का टीवी में दिखाते ही रहते हैं, है ना। तो अपन को उसी तरीके से है, अगर आप कच्ची उम्र में महिलाओं की शादी कर, लड़कियों की शादी कर देते हैं, तो कच्ची उम्र में जब माँ बनेगी तो उसका जो कच्ची उम्र में के कारण बच्चेदानी का विकास, जो इस तरीके से सब शरीरों का विकास होता है, शरीर के सब अंगों का विकास होता है, उसी तरीके से बच्चेदानी का भी विकास होता है। अगर आप कच्ची उम्र में उसका शादी करते हैं तो उस तरीके से उसका जो बच्चेदानी है वो उस बच्चे के लिए, अगर वो गर्भ ठहरता है तो उस बच्चे के लिए वो पूरा तरीके से विकास नहीं हो पा गया रहता है। तो विकास नहीं होने के कारण उसको हो सकता है उसमें आगे जो खतरे, बहुत सारे खतरे वाली बीमारी होती है, जिसके कारण उसकी मरीज की उस छोटी सी बच्ची जो है कच्ची उम्र में जिसकी शादी हो चुकी है उसकी मृत्यु भी हो सकती है, या हो सकता है जो आने वाला जो बच्चा है वो उसको भी तकलीफ हो सकती है। तो अपन को ये जो अपन इसको एक तरीके से बोलते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी है ये। हाई रिस्क का मतलब ज़्यादा खतरे वाला, मतलब इस तरीके का गर्भ रुकना मतलब खतरे को, इससे माँ को भी मृत्यु हो सकती है, साथ में बच्चे की भी मृत्यु हो सकती है। तो अपन को ये चीज़ें अपन को समझानी है ग्रामीण महिलाओं को कि आप कच्ची उम्र में शादी ना करवाएं। एक उम्र रहता है, उस उम्र के बाद आप 25 के बाद आप उसको शादी करवाएं, तो 20 के पहले अगर शादी कराते हैं तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी माना जाता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब इससे जटिलताएं आ सकती हैं माँ को भी या तो फिर बच्चों को भी। तो अपन को कच्ची उम्र में शादी ना करें, इस तरीके से अपन को प्रेरित करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। आजकल तो वैसे बहुत सारे पोस्टर्स भी आ गए हैं जिसमें आप समझा सकते हैं कि किस तरीके से आप कच्ची उम्र की महिलाओं को आप बता सकते हैं कि इसको आगे आ चल के क्या क्या बीमारी आ सकती है अगर आपने कच्ची उम्र में शादी कर दिया तो।
0: डॉक्टर कुमुद कुमार, अंत में बताइए, जैसे गांव में अधिकतर गरीब लोग रहते हैं या गरीब हैं, तो गांव में जो उपलब्ध जो सामग्री है, मतलब कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जिससे पौष्टिक आहार के रूप में वो
1: हाँ,
0: ले
1: ले
0: सकते
1: सकते
0: हैं?
1: हैं। तो ग्रामीण महिलाओं के पास जैसे अपन के पास है चना गुड़ जो मैंने बताया था, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में अपन के पास लौह लौह अवस्थ रहता है, मतलब लोहे की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा रहता है, जो अपन को रक्त के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप चना गुड़, सूखा जो चना गुड़ आता है अपन का रहता है, उस तरीके का उसका गुड़ के साथ उसको सेवन कर सकते हैं, या फिर आप पालक की भाजी खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, मांस मछली वाले हैं मांस मछली खा सकते हैं, दलिया मिल सकता है आपको, ग्रामीण महिलाओं को दलिया ले सकते हैं। तो ये जो चीज़ें, अगर आप चावल दाल भी खा रहे हैं, अगर आप उसको अच्छी समुचित मात्रा में संतुलित आहार जिसको हम लोग बोलते हैं, एक तरीके से बैलेंस डाइट आता है संतुलित आहार, संतुलित आहार का मतलब होता है उसमें आपको खनिज लवण सब तरीके का चीज़ आपको विटामिन्स भी मिले, प्रोटीन्स भी मिले, खनिज लवण मिले, सब कुछ मिलना चाहिए। तो अगर आप दो रोटी भी खा रहे हैं साथ में उसकी एक कटोरी दाल ले रहे हैं और सब्जी ले रहे हैं, मौसमी सब्जी जो भी आप मौसम का सब्जी है उसको उपयोग में लाइए और उस तरीके का आप उसको सेवन कर रहे हैं, तो उस तरीके का भी आहार अगर ले रहे हैं तो एक संतुलित आहार होता है, उसमें आपको सब कुछ मिल सकता है जो अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। आपको खनिज लवण भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, विटामिन्स भी मिलेगा, और जल का आहार बहुत जरूरी है। जल कम से कम आपको पानी कम से कम जो मात्रा में 10 से 12 गिलास तक पानी हमेशा अवश्य सेवन करना जरूरी रहता है उसमें।
0: तो डॉक्टर कुमुद कुमार, आपने हमारे ग्रामीण महिलाओं के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ तो
1: हाँ, काय
2: फुलो
1: सुंदर गोट मन के सांगला।
2: नहीं, ये मन रो डॉक्टर कुमुद कुमार और ये मन संगे भेंटघाट करते रहो बलवीर सिंह कच्छ ने। असत गोटाई कि आमे आमचो देहे पाए के दखा रखा नंगत करवा, तेबे आमचो देहे पाए बोल निको रह दे, पीला झीला बोले निको रह दे।
1: और गांव चलो खिन ध्यान नीच देवत के चाल कि ने कसन बोल द गांव चलो बूता भय ना इस सब ने ध्यान देते
2: जुगे भुरलु रहे सो तार। हाँ। आप लोग देहे पाए कि खिन ध्यान नहीं दे
1: तो असने बेटे हरिन मन बोले।
2: हाँ,
1: सबके दे तो रहे तेबे हम खा तो रहे टाइप रो ओ गाय होन भाती बो सुन रहे सब।
2: हाँ, माता दका आप लोग देह पाए के बोल ध्यान दे उन भाती सपाई बुता बोइने बोल करतो रहो, इसने
1: करतो रहेगा
2: मतलब तक फूलो कि गोट बात संग संग खिने के गीत गोविंद होले कसन लागती।
1: अच्छा लागती जानू।
2: हाँ सर, तो आले ये लकेश्वर खुदराम और संगवारी मंचो गाँव लो ये गीत के बोले आले सुना दे।
1: आले, आले।

0: हाँ तो फूलो बाकी
1: काय सुंदर गीत रे
0: गीत रहे यार, ये गीत के गाऊ रोज बिपिन बिहारी दास आर हुन मंचो संगवारी
1: मन तो गीत सुनते रहले हरी कैसे लागू है ने
0: हरी लागू है मात्र तक कि इस समय आए हम चो खेती बाड़ी चो ने
1: गीत सुन सुन बल
0: करते रहते रहे और तक कि गीत संग संगे हम चो जो गाँवकारी दादा दीदी मन आए हुन मन बल दिन भर आप लोग भूता बहना रह सोत ने चिकल पानी ने बोल लो असन रोप जुगे करून तो आमचो किसान भाई रोपाच लगाए होत कोनी कोनी लोग बुन ला से बुन लो लोग मन निजा तो का झलवल हुआ और द कोनी लगे आजकल कई किसान भाई मन सुनो साम ये ना पलहा बाढ़ ली से पानी नहीं आए बोलो हनुमंत के बोले डंड होए से तो द जसन किसान भाई आप लोग समय ने खेती कमानी करे से पलहा बोले बाढ़ ली से बोले से मात्र पलहा बोले झपके लगा तो रे भाई डंड हनके बोले आसे मात्र काय करू है समय आए पानी नीम आसे हुंदू दिन पानी खेने का अच्छा मारते है आम चे बाटे ने शहर बाटे बोल लो असो मात्र दुई तीन दिन ले देखो उस काय रसे घाम छेके से और पानी नहीं आए और कोनी कोनी किसान भाई काय रसे चिकलाला से और पानी सट नहीं मारन दिली बट घाम छेक ली से
1: हुन्ने डांगरा फाटे
0: डांगरा फाटे से मात्र तक कि आम चो किसान भाई मन खेने डंड तो होय सोची
1: मात्र धीरे धीरे अच्छा बोल
0: अच्छा बोले होय दे
1: जीव के निराश नहीं करतो रहे
0: और कदी पानी कोनी लगते रही मुंडा आसे जाल हुताल बल मांगोत और अच्छा उपजन दे तो बीती बीच मन के बले हुमन पलहा पकाला से भी कायरा से या पारी पारा के छोलोत अच्छा कमानी धमानी करोत और बढ़ती करोत ने और यही समय आए खेती कमानी चो ने यही
1: गोटक समय होए से
0: हाँ
1: दादा दी सपाई मिशन भाती कर सोत
0: ने
1: तो पीला जना मन स्कूल जाए सोत
0: तो वसनी ची आम के कहीं बोले काम बुता समय ने करतो रहे ने भाई ये चमाज बेरा जो फसल कमानी है तो चमाज बेरा कमाते
1: और दक मैं ये बोलते नहीं दक दाद दी मन बेड़ा खान जाए सोत ने ये उन भाती कि नहात पाए के का सुंदर धोन भाती तेल फूल के लगन भाती कि अच्छा और उन भाती
0: बहुत सोत ने तो दक फूलो ये नीचे गोट बात तो होली आम चु मात्र संगे संगे आम चु जातो समय
1: बोले हो रही उन मन के अले दाद दी मन संग बिदा बल धर
0: तो वाले मुड़रा गड़ रख सकलू और बिदा मांगू तो जातो पूरे आमचो गांव कार्यक्रम सुन तो सप्पाए गांव कारी दादा दीदी भाई बहन सियान सजन मन के मैं चाल की
1: और मैं फूलो
0: आमे दोनों करूं से जुहार।

आमचो गांव, अभी आप ग्रामीण श्रोताओं का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोकगीतों के कार्यक्रम नानोली में सिया लाल और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: नानोली लोकगीतों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सियालाल और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। पीला मन गाजेगोट, इस कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए महाराणा प्रताप के बारे में। प्रस्तुति है रुद्र प्रताप सिंह ठाकुर की।

0: तो पाटे दखा उठा काय उठा हो भारत माय तो वीर पीला मन उठा काय उठा हो भारत माय तो वीर पीला मन
1: पिलामन का जे गोट सुनतो नानी बड़े सपाय पिलामन के मचो बाटले खुब्बे खुब्बे मया और लाड़। हाँ तो पिलामन आमी ये कार्यक्रम भित्रे रोजे दिना तुमचो पूरे धरुण भाती अमरू से आमचो देशचो माटी ने जन्म धरलो वीर पुरुष वीर योद्धा और महान समाज सुधारक मंचो गोट की जोन की आम के आमचो समाज के आमचो देश के आप लोग कर्म ले और आप लोग ज्ञान ले नगद बाट के दखाला और आम के आमचो देश चो प्रति देशभक्ति के जगाला। आमी सपाय लोग के गोटोक सुतूर ने चलतो काजे सीख दिला बाट दखाला। असन तो आमचो देश ने कैक जन महान हस्ती मन जन्म धरला मानतर आजी आमी जानवा आमी गोठियावा आमचो देश चो असनी वीर पुरुष और वीर योद्धा जोन आप लो देश और आप लो मातृभूमि चो रक्षा काजे आप लो जीवना के खपाला मानतर फेर बले देश चो दुश्मन मंचो पूरे हार नहीं मानला और आप लो वीरता और शौर्य चो लागुन आप लो नाव के अमर करला असनी ये वीर और महान योद्धा आत महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप चो जन्म 9 मई सन 1540 के राजस्थान जो कुंभलगढ़ नाव चो जगह ने राज परिवार ने होली। ये मंचो बाप रला महाराजा उदय सिंह और माए रानी जीवंत कंवर रला। महाराणा प्रताप पीला बेरा लेची खूब बेसाहसी स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रिय रला। ये मंचो पीला बेरा चो नाव की कारली महाराणा प्रताप के पीला बेरा लेची तलवारबाजी और ढाल चलात चो शिक्षा मिरली और महाराणा प्रताप बले पीला बेरा लेची तलवारबाजी और ढाल चलातो ने महारत हासिल करला। एक के दखुन ए मंचो बाप महाराजा उदय सिंह खूब बेहरिक होते रला। धीरे धीरे समया होते गेली और महाराणा जुआन होला। सन 1572 ने महाराणा प्रताप चो राज्याभिषेक होली और ये समय ने ए मंचो राज ने खूबे संकट और विपत्ति मन के बले सामना करो पड़ली। मांतर महाराणा प्रताप आप लो सूझबूझ धैर्य साहस और पराक्रम ले सपाय विपत्ति चो सामना करला। महाराणा प्रताप आप लो बाप राजा उदय सिंह चो आखिरी इच्छा चो मान करुन भाती आप लो सौतेला भाई जगमाल के राजा बनातो चो विचार करला। मांतर हुन समय मेवाड़ राज चो विश्वासपात्र चुनावत राजपूत मन जगमाल चो राजा बनतोर मेवाड़ राज का जे खूबे नुकसान होय दे बोलून भाती जगमाल के राजा बनतोले मना करला। मांतर जगमाल सिंहासन छाड़ूक नी चाहते रहे यही काजे पाछे रीस होन भाती बदला धरतो काजे अजमेर जाऊन राजा अकबर चो सेना ने मिसलो। यही समय ने राजकुमार प्रताप के मेवाड़ चो राजा बनाला और संगे संगे महाराणा चो खिताब बले मिरली। ये समय ने दिल्ली ने राजा अकबर चो राज चलते रहे और अकबर चो मुगल सेना मेवाड़ राज के आपलो राज ने मिसातो काजे चित्तौड़ चो चारों बाटले घेरला। मांतर महाराणा प्रताप चो वीरता और साहस ले युद्ध के लड़ला और कठिन परिस्थिति ने बले हार नी मानला और आप लो मातृभूमि के गुलाम हो नी दिला। मुगल सम्राट अकबर यमनचो राज के जीतून भाती आप लो राज ने मिसाऊ चाहते रलो मांतर राणा प्रताप यमन के असन नी होग दिला और जीवना भर यमन संगे संघर्ष करते रला। महाराणा प्रताप 7.5 फुट डेंग और यमनचो वजन 110 किलो रली। यमनचो सुरक्षा कवच 72 किलो चो और भाला चो वजन 80 किलो रहे। महाराणा प्रताप जेबे युद्ध करुकलाए जाते रहोत हुन समय ने यमन चो

तलवार, ढाल, कवच और भाला ये सपाए के मिसौन भांति 208 किलो लेबले आगर वजन के उठौन भांति युद्ध करते रला। आजी बले महाराणा प्रताप चो कवच, भाला, तलवार ये सपाए अस्त्र शस्त्र मन उदयपुर राजघराना चो संग्रहालय ने सुरक्षित आसे। महाराणा प्रताप लगे गोटोक घोड़ा रलो, हुंचो नाव चेतक रली। ये घोड़ा बले खूबे समझदार और वीर रलो और महाराणा प्रताप के बले चेतक घोड़ा के खूबे लाड़मया करते रला। गोटोक समयाने युद्ध बेरा ये घोड़ा 26 फीट चो घाटी के डगौन भाती महाराणा प्रताप चो जीवना के बले बचालो। असन तो महाराणा प्रताप आपलो जीवना ने कैक ठन युद्ध के लड़ला, मांतर एमन चो जीवना चो प्रमुख लड़ाई आए 18 जून 1576 के लड़लो हल्दी घाटी चो युद्ध। ये युद्ध ने मुगल सेना लगे 80,000 ले आगर सैनिक रला और महाराणा प्रताप लगे 20,000 ची सैनिक रला। फिर बले यमन हार नहीं मानला और आपलो पराक्रम के दखाला और मुगल सेना के पाट गुचा जातो काजे मजबूर करला। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध चो पाचे चो समया पहाड़ और जंगल ने बिताला। आपलो पहाड़ी युद्ध शैली चो कारण ने यमन कई खार मुगल सेना के मात दिला। ये समय महाराणा प्रताप के खूबे तकलीफ जो सामना करूँ पड़ ली, मांतर फिर बले ये आपलो आदर्श के निछाड़ला। ये महाराणा प्रताप जो पराक्रम, धैर्य और मजबूत इरादा रहे कि यही कारण ने 30 बरस लगातार प्रयास जो पाछे बले अकबर महाराणा प्रताप के बंदी बनाओ नि सकलो। महाराणा प्रताप जो प्रिय घोड़ा चेतक रलो, जोन आपलो आखिरी सांस तक आपलो स्वामी चो साथ दिलो। आखिरकार जंगल ने शिकार खेलतो समया के पावलो घाव चो कारण ने 19 जनवरी 1597 के चावंड नाव चो जगह ने यमन आखिरी सांस धरला। ये खबर के सुनून भाती अकबर बले खूबे दुखी होलो। हाँ तो पीला मन ये रहे सूरवीर महाराणा प्रताप चो जीवना चो गोट। आले ए दाएँ सुनू ये गोटो गीत के।

हाँ तो पीला मन ए गीत तो होली और ना जातो समयावल होली तो जातो पूरे पीला मन का जे गोट सुन तो सपाय नानी बड़े पीला मन के मचो बाटले फेर हारक खूबे खूबे लाड़ और माया।

0: पीला मन गाजे गोट। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महाराणा प्रताप के बारे में, जानकारी दे रहे थे रुद्र प्रताप सिंह ठाकुर। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं समाचार संध्या। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर-19 और अंडर-23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार

0: इनको 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
4: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
0: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: नागालैंड के चूमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपिन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज

0: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए अमेरिका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस: India and US engage for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, dismisses media reports of deadlock in trade talks. India's total exports jumps over $232 billion, registering growth of 11.37% during first quarter of current fiscal. Former AAP leader Tahir Hussain and 4 others convicted for killing of IB officer during 2020 Delhi riots. The US and Iran exchange another wave of strikes as dispute over control of Strait of Hormuz raises tension in the region. In cricket, India scripts history, beating England by 270 runs in first ever women's test at the Lord's.

0: खुबे खुबे सेवा जोहार जीवना चुसूर भलेने जीवतो काजे बाट ये कार्यक्रम ने आमी कई कसन समूहन आपलो आर्थिक उन्नति बाढ़ती करुण बाती भलेने दुई पैसा कमातो हनुमन के बाट मेरे से आरु हनुमन चो जीवना ने उन्नति बाढ़ती हुए से आमी असने सुनाते जाऊँ से कई महिला स्व सहायता समूह मन संगे गोट बात करुण बाती आरु जानू से कि हनुमन कसन भलेने समूह चो गठन करुण बाती बलने अलग अलग किसम मंचो जोन धंधा करसोत असने आज ही में असन महिला स्व सहायता समूह गोट बात करें से ए मंचो महिला स्व सहायता समूह चो नाम है मिलेट्स महिला स्व सहायता समूह। देखा अपन मन के जानून बात अचरज लागे दे होती कि मिलेट्स बलने गोटो कामचो लघु धान्य फसल जोन कम समय नहीं होतो बीती फसल मंचो गोटोक बलने का है कि समूह होए से जे कि मैं सांगून दे से जैसन कि कोदा है कोसरा है घटका है मंडिया है चिकमा है जोंदरा है जोंदरिया है ये सब के मिलान बाती गोटोक मिलेट्स बोलतर होए से आरु यही जोन फसल मंचो जोन जीनिस बना तो ये जोन महिला स्व सहायता समूह है कि बल्ले ने ये सपाय फसल चो बल्ले ने एमन बोबो बल बनाए सोत लड्डू बल बनाए सोत इडली बल बनाए सोत ढोसा बल बनाए सोत भात बल रांधे सोत और कई किस्म चो मिठाई बल बनाए सोत बल्ले ने खातो बीती खाजा चरबन जे कि आमी नाश्ता बल करतो काजे कई चीज आमी होटल ने जेले ने मेरे से तो असनी एमन यही जिनिस मंचो बनान बाती बल्ले ने बिक्री बांजरी करून बल्ले आर्थिक उन्नति करसोत आरु ये चो काजे एमन के बल्ले ने समूह चो गठन कर लाई पड़ली आरु कृषि विज्ञान केंद्र बल्ले ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा गीदम ने जौन बाती होता वैज्ञानिक मन संगे भेंट घाट करुन बाती बल्ले ने उन मन के पूछला फिर उन मन के उन कृषि विज्ञान केंद्र बाटले ट्रेनिंग मिलली कि ये जोन मिलेट बीती जोन अनाज है बोलू वे ये जोन घटका कोदा कोसरा मंडिया चिकमा जोंदरा जोंदरी चो बल्ले ने काय काय आम के जीनिस बनाक लाए होए दे और कसन बनात रहा ये चो ट्रेनिंग फिर उन कृषि विज्ञान केंद्र बाटले रायपुर ने उन बातें उन मन के सिखाला आरु एबे बल्ले ने कितलो अच्छा कितलो नंगत सुंदर ये दंतेवाड़ा ठान ने ये मंचो होटल आसे आरु ये होटल बल्ले दिन भर खुला रहे से यता बल्ले ने नाश्ता बीती चो आप नाश्ता मेरे दे आरु कहीं भात आए बल्ले ने उनके कोसरा कोदा मंडिया ये सब चो भात बल्ले मेरे से तो देखा असन है कि आमचे ही आमचो जोन बल्ले ने आगे ले पुर का पार्टी जोन बेरा ले कमाती है उसे होनी फसल चो ये भी देखा तकनीकी युग आए होनी हिसाब ने कहा है कि कई जिनिस मन स्वादिष्ट जिनिस मन बनान बाती बिकसोत आरु देखा होनी ने एमंचो रोजगार जोन आए होए से तो यही सब गोट बात मैं कर ले से होता चो जोन संचालिका है बल्ले उन समूह जोन अध्यक्ष है एचो संगे तो वाली सुनो आरु जानू
1: रेडियो सुन तो भाई बहन मैं अम्बल से दंतेवाड़ा आरु एताने बल्ले ने गोटुक होटल लसन आसे आरु पूरी लिखलो रासे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र गीदम दंतेवाड़ा मैं एताचो जोन संचालिका है उन संग गोट बात करें से सबसे पहले आपका नाम बताएं
2: रंजना सिंह।
1: रंजना सिंह देखिए मैं यहाँ पे अंदर आपके यहाँ आया हूँ और मतलब खाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं और कई प्रकार के खाने की जो वस्तुएं दिख रही हैं तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो मतलब आप लोगों ने खोला है इसकी शुरुआत कैसे हुई इसमें आप लोग कितने लोग हैं क्या करना पड़ा इसके लिए।
2: सर सबसे पहले तो कि ये हम लोग एक समूह बनाए 10 लोगों का उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। उसके बाद ये मिलेट कैफ़े कृषि विद्यालय केंद्र गीदम जो उनसे संपर्क किए तो ये मिलेट कैफ़े खोलने का मतलब पूरा जो मिलेट 9 प्रकार के मिलेट हैं वो सब चीज़ें मतलब खिलाना है लोगों को। अच्छा। बना के ये सब चीज़ें।
1: अच्छा जैसे आपने बताया 9 प्रकार के मिलेट्स उसमें क्या क्या चीज़ें
2: कोदो

0: कुटकी, रागी, चीनी, सावा, कमलू, कंगनी और टेटका।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो ये सबसे पहले तो बताइए कि ये जो आप लोगों का समूह का गठन आप लोगों ने कैसा किया, मतलब इसको प्रेरणा कैसे मिली?
0: तो इससे सबसे पहले तो हम नगर पालिका गए, तो वहाँ पे मतलब इसके बारे में जानकारी लिए कि समूह कैसे बनाते हैं। फिर हम 10 महिलाएं जुड़े, मतलब ढूंढना पड़ा अलग अलग जगह से कि कौन काम करना चाहता है, नहीं करना चाहता, तो सबको ढूंढ के इकट्ठा करके बात करके इसकी शुरुआत किए।
1: तो मतलब समूह का कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कराना पड़ता है?
0: जी जी, बिल्कुल कराना पड़ता है सर। समूह का पूरा आपका आधार से पैन कार्ड या फिर आपका पासबुक वगैरह सब जमा करना पड़ता है सभी लेडीज़ों को। फिर उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आप उसका एक अपने को मिलता है प्रमाण पत्र।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो उसमें कोई समूह का नाम भी रखना होता होगा?
0: जी,
1: आपका समूह का क्या?
0: जी, मिलेट महिला स्व सहायता समूह।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो इसमें इस समूह में कितने महिलाएं भी हैं कि पुरुष भी हैं?
0: नहीं नहीं, सिर्फ महिलाएं हैं।
1: अच्छा, कितने?
0: 10 लोग हैं।
1: तो देखिए, जैसे आपने बहुत विस्तार मतलब यहाँ पे रूप में है, मतलब इसकी जो पूंजी वगैरह की व्यवस्था आप लोगों ने कैसा?
0: ये तो सब हम लोग ने थोड़ा थोड़ा मतलब जमा किया था, थोड़ा थोड़ा मतलब एक नहीं बोलते बोलते 10 रुपये 100 रुपये इस हिसाब से जमा करके जमा किए, लेकिन उतना हो नहीं पाया। बाकी पूरा कृषि विद्यालय केंद्र के ओर से पूरा सुविधा मिला हमें।
1: अच्छा
0: जी,
1: मतलब पूरा आर्थिक जो सहायता है कृषि विज्ञान की?
0: पूरा पूरा।
1: देखिए, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मतलब बहुत सारे खाने की जो वस्तुएं चीज़ें हैं, इसके लिए तो आप लोगों को प्रशिक्षण वगैरह की आवश्यकता पड़ी होगी?
0: जी जी, बिल्कुल,
1: बताइए उसके बारे में।
0: तो प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ी तो थी, फिर हम लोग को कुछ आता नहीं था। जब स्टार्टिंग हम लोग किए थे तो ये जितने भी मिलेट का जो था, कोदो कुटकी, इसका हम लोग खीर, रोटी और उपमा, ये सब चीज़ बना के अपने से दे रहे थे। फिर उन आगे से मतलब प्रशिक्षण के लिए आया, फिर हम लोग रायपुर गए थे। जी,
1: तो वहाँ कितने दिन का प्रशिक्षण था?
0: 1 हफ्ते का, 7 दिन।
1: तो वहाँ पर मतलब क्या चीज़ आपको सिखाया?
0: सभी मतलब जितने भी मिलेट्स हैं सबके बनाने के, जैसे

0: वर्कर आ रहा नहीं है, इसका मतलब बातचीत करते हैं पूरे 10 लोग, फिर उसके बाद वो जो निर्णय लेते हैं सब मिलके एक साथ ही लेते हैं जी। मतलब अकेला इंसान इसमें ले ही नहीं सकता निर्णय, 10 लोग मिलके ही निर्णय लेते हैं जी।
1: जैसे कि बहुत सारे जो वस्तुएं बनाने के लिए, उसके लिए बहुत सारे चीज़ें जो मतलब या ढांचा बोलें या कुछ बर्तन बोलें, तो ये सब चीज़ की व्यवस्था आप लोगों ने कैसे की?
0: ये हमें पूरे कृषि विद्या केंद्र जी वहीं से मतलब जितने भी हम लोग जो स्टार्ट किए हैं, जितना हम पूरा पूरा स्ट्रक्चर से लेकर पूरा जो मिला है हमको पूरा वहीं का वहाँ उन्हीं के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है जी कृषि विद्या।
1: ये सामान मतलब आपको खरीदने के लिए पैसा मिला या उन लोग खुद?
0: नहीं, पूरा खरीद के दिया गया जी। हमको जो जो जरूरत था हमने उसकी सभी लिस्ट बना के दी, तो वो उस हिसाब से पूरा सामान आ गया।
1: अच्छा
0: जी।
1: तो मतलब प्रतिदिन कब खुलता है, कितने बजे बंद होता है, क्या क्या बनता है, कौन सी चीज़ों की मांग जो खाने वाले ज़्यादा करते हैं?
0: सबसे ज़्यादा पराठा खाते हैं सर, खीर खाते हैं, हलवा खाते हैं, रागी का पराठा हो जाता है, कुटकी का खीर है, और मिलेट थाली भी निकलता ही है जिसमें कोदो का राइस रहता है, रागी का रोटी और रागी का हलवा। मतलब इसमें आपका मिलेट का कोल्ड कॉफ़ी आ जाता है, शेक आ जाता है, मतलब सभी चीज़ें डिमांड पे है।
1: अच्छा
0: जी। और सबसे ज़्यादा पराठा और थाली।
1: अच्छा
0: जी।
1: अच्छा, नाम क्या बोले?
0: रंजना सिंह।
1: अच्छा रंजना सिंह, ये बताइए कि इन जो वस्तुओं का जो है तो रेट के बारे में भी बताइए, कैसा है रेट, क्या क्या रेट है, कौन सी चीज़ का?
0: पराठा में हम लोग 2 पीस देते हैं, रागी पराठा आलू का 90 और पनीर का 100 रुपये 2 पीस।
1: अच्छा।
0: हाँ, अगर उसमें किसी को खाना है सिंगल पीस तो इनफ है, मतलब एक आदमी के लिए सिंगल पराठा खा सकता है, बट हम लोग 2 पराठा देते हैं। अब जिसकी डिमांड के हिसाब से कोई एक खाना चाहता है, 2 खाना चाहता है तो वो देते हैं।
1: अच्छा।
0: आपका मिलेट थाली है 150 रुपये।
1: अच्छा।
0: जिसमें 2 सब्जियाँ रहेगी, खीर रहेगा, सलाद रहेगा, अचार रहता है, दाल रहता है और चावल और 2 रोटी जी।
1: नाश्ते में?
0: नाश्ते में पोहा है, डोसा है, उपमा,
1: अच्छा,
0: पकोड़ा, सभी।
1: अच्छा, रेट के बारे में बताइए, कितना कितना रेट मिलता है?
0: पोहा 40 का है और पराठा तो मैंने 90 और 80 का है अलग अलग, और डोसा 70 का है, मसाला डोसा, उपमा 40।
1: अच्छा।
0: जी।
1: मतलब ये सभी नाश्ते की चीज़ें बनती
0: जी जी।
1: अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जैसे प्रतिदिन एक तो अंदाज़ा मतलब होगा कि कितना आप लोग मतलब बेचते हैं, पैसा कितना होता है?
0: जी 9-10 तक हो जाता है।
1: अच्छा, 9-10 तक
0: जी।
1: अच्छा
0: जी।
1: तो इसका हिसाब किताब आप लोग सप्ताह में करते हैं?
0: डेली का तो हिसाब किताब हम लोग करते हैं कि कितना डेली का इनकम है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, वो कभी मौसम या कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, तो डेली का वो होता है। बाकी जो ये जितना टोटल एक हफ्ते का पेमेंट है वो समूह की महिलाएं मिलके सब उसका वो करते हैं, मतलब हिसाब किताब देखते हैं सभी महिलाएं।
1: अच्छा।
0: एक दिन पूरा इकट्ठा होके सब देखते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे कि मैं यहाँ पे रहती हूँ तो डेली का मैं हिसाब लिखती हूँ।
1: अच्छा।
0: और उनको मैं जिस दिन मीटिंग होता है वो उस दिन उनके सामने रखती हूँ। जी।
1: अच्छा, जैसे खर्चा वगैरह निकाल करके मतलब आप लोग 10 महिलाएं हैं
0: जी।
1: तो पैसा का मतलब कुछ तो वितरण करते होंगे सब?
0: जी जी।
1: कैसे करते हैं
0: वो खर्चा? जैसे बिजली बिल हो गया, यहाँ का स्टैप पेमेंट, और जो सामान खरीदते हैं वो सब चीज़ें वो करके मतलब सबको डिवाइड करके जो चीज़ जो पैसा बचता है वो सभी 10 समूह की महिलाएं डिवाइड करती हैं।
1: अच्छा
0: जी।
1: तो अंदाज़ा मान लो महीने में कितना प्रत्येक महिलाओं को कितना मिलता होगा?
0: जी 7-8।
1: 7-8
0: जी।
1: अच्छा। अच्छा रंजना सिंह, ये बताओ आप मतलब कितने पढ़े लिखे कितने?
0: मैं ग्रेजुएशन।
1: ग्रेजुएशन
0: जी।
1: अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट लेकर?
0: साइंस ले थे।
1: साइंस
0: जी।
1: अच्छा, तो जैसे आपको मतलब यहाँ रुचि मतलब कैसे हुई कि हम लोग को स्वयं सहायता समूह बनाना चाहिए, ये करना चाहिए काम?
0: जी, पहले मैं खुद काम करती थी, मतलब खुद का कैफे था, उसमें काम कर रही थी, वो मेरा छोटा सा काम था। फिर कि कुछ बड़ा काम करे करके फिर महिलाओं के साथ मिल के तो मिलेट के मतलब समूह का बना के फिर ये काम स्टार्ट किया।
1: अच्छा
0: जी।
1: तो ये जैसे 10 सदस्य महिलाएं हैं, सभी पढ़ी लिखी हैं?
0: जी।
1: अच्छा
0: जी। मतलब 5वीं 8वीं हाँ यहाँ तक पढ़े हैं, 10वीं तक जी।
1: मतलब थोड़ा बहुत सभी पढ़े लिखे?
0: जी, सब पढ़े लिखे।
1: अच्छा, तो जैसे कि आप लोगों में जैसे अगर आर्थिक रूप में

0: या फिर महिलाओं के व्यवहार में या फिर उनके बोलचाल में पहले की अपेक्षा, जैसे आप पढ़े लिखे हैं तो कुछ अलग महसूस हो रहा है, दिख रहा है?
1: जी, सब अपना अपना मतलब राय रखते हैं कि ऐसे करना चाहिए और इस तरह से काम करना चाहिए या फिर ये काम ऐसे हो रहा है, तो ये सब चीज़ें के बारे में होता है ज़्यादातर। मतलब हम लोग सब ये सब चीज़ सोच के ही डिसाइड करते हैं कि क्या करना है आगे। जी, बाकी जैसे कम पढ़े हैं तो वैसा कुछ नहीं है, वो मतलब समझते हैं कि अभी के समय को सब चीज़ को देख के समझते हैं कि हाँ, अगर पांच लोग मिलकर अगर कुछ चीज़ वो डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ ये सही है, तो वो बोलते हैं चलो इसी के में जाते हैं कि सही है। मतलब ऐसा कोई मतभेद मतलब होती नहीं है कि ऐसा कि ऐसे कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिल के ही काम करते। जी
0: अच्छा, रंजना, मैं आज आपके मतलब यहाँ पे मैं खाना भी खाया, बहुत ही स्वादिष्ट रहा, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन बैठने के लिए कुछ जगह की भी कमी हो रही है।
1: हाँ जी जी जी,
0: तो इसके लिए भविष्य में मतलब क्या सोचे हैं कुछ कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से विस्तार के लिए?
1: जी जी, इसके लिए सोचे हैं सर, मतलब पूरा मतलब हमने किया गया है कि कहाँ पे क्या रखना है, टेबल उबल का और व्यवस्था करने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि शायद इसका कार्य होने वाला है।
0: अच्छा।
1: मेंटेनेंस का, और उसके बाद ही इसका करेंगे।
0: अच्छा।
1: जी जी,
0: मतलब एक बड़ा रूप में देखने को मिला है।
1: जी जी, बहुत ही मतलब कुछ दिनों में थोड़ा और विस्तार बड़ा हो जाएगा, से बैठने के लिए भी व्यवस्था और हो जाएगा।
0: अच्छा
1: जी जी,
0: तो अब आपको कैसा लग रहा है, आप संतुष्ट हैं इस काम से?
1: जी बिल्कुल, बहुत संतुष्ट हूँ।
0: अच्छा
1: जी, क्योंकि मतलब काम करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि मतलब काम ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें काम में घुसे हो तो बिजी हो जाओ, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ टाइम बैठे हो कुछ टाइम मतलब बोर लग रहा है, ऐसा वाला नहीं है। मतलब हम लोग को बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता है।
0: अच्छा।
1: मतलब इतना बिजी रहते हैं।
0: अच्छा।
1: काम कंटिन्यू करते रहो तो सही लगता है। अगर कुछ काम मतलब एक दो घंटे के लिए अगर कोई कस्टमर नहीं आ रहे बैठे हैं तो फिर वो आलस वाला फील आता है, ऐसा नहीं है।
0: अच्छा।
1: हम लोग मतलब अगर 10-11 भी बज जाता है, कस्टमर आते हैं तो हम उनको मना नहीं करते कि बैठिए, भले सुबह हम लोग थोड़ा सा लेट खोल देते हैं।
0: हाँ।
1: बट लेकिन हम उनको खिलाते हैं।
0: अच्छा।
1: जी, जितने खासकर आते हैं ऑफिसर्स हैं और बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं, वो जैसे बस्तर अनएक्सप्लोरर वाले जितने भी आते हैं वो यहीं पे खाने आते हैं।
0: अच्छा।
1: जी।
0: अच्छा।
1: वो पहले से ऑर्डर हो जाता है और यहीं पे आके खा के जाते हैं।
0: अच्छा
1: जी,
0: जैसे यहाँ पे क्या है कि जिला मुख्यालय है और बहुत सारे ऑफिस भी हैं, कई कार्यक्रम होते रहते हैं, कोई ऐसा मतलब थोड़ा ज़्यादा रूप में कोई सप्लाई वगैरह का भी ऑर्डर आता
1: है? जी जी जी, कलेक्टर ऑफिस से आता है ऑर्डर, जैसे कुछ टीएल मीटिंग होता है, कुछ होता है, जो भी आता है, तो यहाँ मिलेट का जितना भी जो चीज़ें खाने की वो ऑर्डर आती है।
0: अच्छा।
1: जी, कलेक्टर सर के माध्यम से वहाँ ऑफिस में सभी विभाग से आती है।
0: अच्छा
1: जी जी।
0: अच्छा रंजना, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कई कैसे मतलब लड़के लड़कियाँ, आप जैसे स्नातक कर चुकी हैं, ऐसे भी और कई गांव में भी हैं, शहर में भी हैं, लेकिन वो केवल सरकारी की नौकरी के इंतज़ार में, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप?
1: मैं तो बोलना चाहूँगी सर कि किसी चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए, आप अपना टाइम, आपका जो अभी है टाइम, उसका टाइम का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर नौकरी भी करना चाहते हैं तो ये नहीं कि आप नौकरी का इंतज़ार करें, उस अगर आप खाली हैं ना कुछ काम करें, ऐसा नहीं है कि आप चलो होटल में काम कर रहे हैं तो शर्म वाली बात है। ऐसा होता है यहाँ पर कि होटल में काम करने के लिए बहुत हिचकिचाते हैं लोग कि नहीं करेंगे हम, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम तो काम होता है, अगर आप मतलब गवर्नमेंट में कहीं काम कर रहे हैं आप तब भी एम्प्लॉय कहलाओगे, यहाँ पे भी कर रहे हो तो वही कहलाएंगे। तो इसमें झिझक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि जितने भी हैं मतलब लड़के और लड़के पढ़े लिखे हैं, मैं तो चाहती हूँ बिजनेस करें, बिजनेस में बहुत ही अच्छा उनके लिए फ्यूचर में फ़ायदा होगा।
0: तो रंजना सिंह, आपने इतनी अच्छी मतलब एक महिला समूह का गठन करके इतनी अच्छी मतलब एक विस्तार रूप में जो काम चला रही हैं, और एक तो सबसे विशेषता की बात यह है कि आप ग्रेजुएट हैं, ये सबसे बड़ी खूबी है। तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इसी तरह आपका जो काम है विस्तार से अच्छा हो और आर्थिक रूप से आप सभी महिलाएं मजबूत हों। इतनी सारी आपने जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर, धन्यवाद।
0: हाँ, तो देखा कितलो नगद गोट के आम के जानुकलाई मिल ली कि ये मिलेट्स महिला स्व सहायता समूह दंतेवाड़ा एमन होटल खरुन बाती पूरा नाश्ता संगे संगे का है कि बोले ने जोन बोले खातो बीती जी नहीं साय खाना है ये सप्पा है मन की मेरे से और देखा गोटिया तो जानू खुली कि ए मंचो होटल ने नाश्ता और खाना काज काय कि दंतेवाड़ा शहर ने जितलो बोले ऑफिस में नासे हुन ऑफिस मंचो हुन मन के आर्डर वाले बना तो काजे मेरे से ये महिला स्व सहायता समूह के और उन मंचो आमदनी अच्छा वैसे देखा आमी सुनलू जानलू असन है कि कई कसन पढ़े लिखे महिला नहाले पुरुष मन आसोत तो असन बोले ने कहा कि धंधा पानी को रुक लाए सकोत आम के कहाँ है बाहर ही जाऊक लाए नहीं पड़े आमचो गाँव ने ची रोहन बाती ये सपाय काम कर रुक लाए सकूँ तो सपाय सुन तो लोग के खूबे खूबे सेवा जोहार।

0: जीवना जो सोर इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मिलेट्स महिला स्व सहायता समूह दंतेवाड़ा की रंजना सिंह से बलबीर सिंह कच्छ की बातचीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। भेंटघाट इस कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए वार्ता साक्षरता की आवश्यकता। इस विषय पर वार्ताकार हैं बलबीर सिंह कच्छ।
3: रेडियो सुन तो सपाय भाई बहन मन के सेवा जोहार। आज जो ये कार्यक्रम ने आमी अपन मन संगे गोड बात करवा जानवा अपन मन सपाय जानास इकी ये गोटोक असन समयाय भले ने काई भले काम के करतो काजे माने के खेनिक भले पढ़ा लिखा होतर जरूरी है। तो आज आमी गोड बात करवा वर्तमान में साक्षरता की आवश्यकता भले ने ए समयाने साक्षरता चो आवश्यकता। आमी सीधा सीधा बोलूक सकूँ कि आमचो जीवनाने पढ़ा लिखा रोतो काजे काय काजे जरूरी है। आपन मन जान सास कई काम बुता निबल जायसास होती और करसास होती तेबे ये जानु खोए से कि पढ़ा लिखा झुंडोलो माने आए हुन तो काई बल काम के झपके करे से मंतर जोन निरक्षर आए मने अनपढ़ आए कहीं पढ़ा लिखा नहीं जाने हुनके कहाँ बल गेलो ने कितलो चीपा होए से कितलो अटकनी होए से कितलो समस्या होए से ये होनी माने जानुक लाए सके। तो रेडियो सुन तो भाई बहन मन आगे झुके बल ने गांव गांव ने बले शहर मन ने बले पढ़तो काजे स्कूल मन खूबे कम रली जेचो कारण ने कहा कि लोग मन बल ने पढ़ूक लाए नहीं सकला। आरु जोन आमचो पारंपरिक रीति नीति आए जसन की सामाजिक काम मनाए धार्मिक काम मनाए सांस्कृतिक काम मनाए और बले जितलो आमचो पुरका पार्टी चो जोन बुद्धिवान लोग मनरला पीढ़ी ने गांव ने पारा ने देश ने जोन बाटे आगर पढ़ा लिखा रला हुन मन तो आपलो जोन सामाजिक रीति रिवाज के लिखला और कई कसन महान बुद्धिजीवी लोग बोल रला हुन मन असन समाज चुकाज काम करला जे का है कि आजी आमी हुन मन चु लिखलो कथा कहानी के इतिहास के पढ़ लेने जानुक होए से कि हुन मन कसन भले ने आमचो देश के आमचो समाज के आमचो गांव पारा के उदिम बना तो काजे गोटक दूसर के भाईचारा गोटक सूतुर ने रतो काजे कसन सिखिया देते रला। जोन जोन बाटे पढ़ा लिखा लोग रला हुन बाटचो लोग तो असन बुद्धिजीवी लोग मंचो जोन कथा कहानी आए उन मंचो इतिहास के लिखला मंतर जोन गांव बाटे जे बाटे काहे कि स्कूल नहीं रहे लोग मन पढ़ा लिखा नहीं रला और

असन बाटे बले कई कसन महान बुद्धिजीवी मन लोग रला, जे मन चो कारण ने कहा कि उन समाज चलते रली। मंत्र पढ़ा लिखा नहीं हो तो कारण ने हुन मंचो मरना हो लेने, हुन मंचो जोन विचार आए, हुन मंचो जोन काम आए, समाज का जे, देश का जे, पारा का जे काय करला, हुन मौत को होता है बोतोन गेली। कसन बल्ले ने हुन बाटे पढ़ा लिखा कोनी माने निरला, हुन के कोनी लिखुन बाती नी संगाला। तेवे आमे हुनचो जोन कर्म आए, हुनचो जोन काम आए, हुनचो जोन बुद्धि की आए, हुनके आमे जानुक लाय नी सकूं। तो असन असन जोन कथा कहानी मन बले आसे, और जसन की आमचो कई सामाजिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक परंपरा और बले जोन बल परंपरा आसे, हुनके तो आमी मनाते हूँ से, मानते हूँ से, ये गोटक पीढ़ी ले दूसर पीढ़ी जाते जाए से, तेबे हुमन एबे मतलब बाचली से मंत्र जोन आमचो महान बुद्धिजीवी लोग रला, हुन मंचो जोन काम रली, हुन मंचो जोन विचार लोली, बले ने समाज के हरि कुदिम ने संगा तो काजे, समाज के आगे बड़ा तो काजे, हुन मंचो मोरतो के हुताए भूतुन गेली। हुन समय ने हुने बाटे कोनी पढ़ा लिखा माने रतो तो हुनचो कथा कहानी के लिखतो, आर ये ब्यामे पढ़तू हैं, हुनचो ज्ञान के जानतू, आरु हुन ज्ञान के आमी एबे आमचो जीवनाने आनुक सकतू। मंतर पढ़ा लिखा नहीं हो तो कारण ने हुनचो मरतो के हुनचो जोन ज्ञान आए, हुनचो जोन बुद्धि आए, हुनचो ताने जोन ताकत रेली, हुन सपाए भूतोन गेली। यही काजे आम के पढ़ा लिखा रले ने ये सब के बचाव खुलाए सकूँ। आपन मन जानास बले ने आमचो जीवना काजे कई धंधा पानी बल करूँ से, रोजगार करूँ से, ये चो काज बले पढ़ा लिखा हतोर जरूरी है। कसन बले दखा आगे झुगे कहीं बिक्री भांजरी करतो राय तो झुगे करून आमी सोली पहली के काम ने आनते रलू, आरु सोली पहली ने नापुन बाती आमी कोनी भीति नहीं आए, ना आले कहाँ आए लकीर खींचते रहूँ, ना आले एक पहली दुई पहली काजे गोटी के मंडाते रहलूँ,

तो होने का जे ये सब मैंने आम के पढ़ा लिखा बल्लेन होतर खूब जरूरी है। और संगे संगे देखा बल्लेन कहा कि भाई बहन मन कोनी बाटे गेलू जैसन कि आम भ्रमण ने कहा बुलू गेलू कहाँ कहीं काम ने गेलू तो ऐसो काज बोल का है कि पढ़ा लिखा होतर जरूरी है। सबले पहले तो ये गोटा है कि आम बस स्टैंड ने जाऊँ से तो ता दखुक लाए पड़े से कौन बस स्टैंड ने गेले तो गाड़ा भरू था बस मन है जोन पढ़ा लिखा आदमी आए होने उन डग रहा उकला ऐसा के कि कौन बस ने काय लिखला से कौन बस कहाँ जातो बीतिया ये तो लिखो रहे से जोन पढ़ा लिखा है उन आदमी जानू उकला ऐसा के तो ये ता बोले का है कि कितलो आम के तकलीफ हो ऐसे जोन पढ़ा लिखा नहीं आता और जोन असन ठान ने जोन अमरुन जाए से होने मन के पूछ ले जानू खो दे कि अनपढ़ रोले ने कितलो माने के चिपा हो उकला सके ये आए पढ़ा लिखा चो ताकत ये आए शिक्षा चो ताकत। बल्ले ने कहा कि आमी कहाँ है जावा कहाँ बुलुक जावा कोनी बाटे गेलो ने कहाँ है गेलो ने तो कहा कि ये सपाई चीज के पढ़ा लिखा रोलो ने आमी जानुक लाए सकवा है। आजकल तो ये बोले आए कि देखा बल्ले ने कहीं बोले घेनू कहीं बोले खाऊं तो ये चुका जो कहा है कि मतलब ऑनलाइन भुगतान जैके बोलूँ से है ऑनलाइन भुगतान करूँ से पैसा कोड़ी चो झंझट बोले दाए गेली जोन पढ़ा लिखा आदमी आए आम अपन मन एक कप चाह पिया 10 रुपया हो 5 रुपया हो है कहीं नाश्ता करा कहीं साग भात कहीं खाना खा ना ले कपड़ा लता गेन बोले ना कहीं बोले गेन तो काम ने आजकल ऑनलाइन पेमेंट बोले ने ऑनलाइन पैसा दे तो बीती वाट होली से तो ये सब के दखुन बाती आम के ये भी गोटो गोटक माने के पढ़ा लिखा हो तो जरूरी आए और पढ़ा लिखा रहने ते भी आम ये ऑनलाइन भुगतान बोल कर सको मान लो अनपढ़ आसो तो कहीं आम के पैसा बोले दे तो रहा है पैसा आसे जाल उनके बोले आम कहीं घेन बात उनके देते रहा है तो उनके कौन नोट कितलो चो आए कौन 20 रहा है कि कौन 50 आए कौन 100 आए कौन 500 चो नोट आए ये केवल तो जोन पढ़ा लिखा आदमी आए होनी जानुक लाए सके दे और गेन तोर बोले आमी लाखों कई लाखों करोड़ों गेन तोर आए जाल हूँ चुकाज बोले पढ़ा लिखा होक लागे से तेबे हूँ गेन तो करुक लाए सके तो आम चो जीवना ने बल्ले ने कहा कि कहीं काज बोले पढ़ा लिखा हो तोर जरूरी आए और संग कहा कि आम चो बुद्धि के आम के बड़ा तो काजे आम चो ज्ञान के बड़ा तो काजे आजकल तो अपन मन जाना सी कि समाचार पत्र होली से पत्र पत्रिका होली से कई पुस्तक मन छपली से कई बड़े बड़े महान व्यक्ति मन जोन आम चो देश का जे लड़नता वीर मन बोले आसो स्वतंत्रता सेनानी मन बोले आसोत हैं समाज सुधारक मन बोले आसोत हैं और कई कसन बड़े बड़े ज्ञानी मन आसोत ए मन चो पुस्तक मन बोले छपली से हैं जोन आदमी जोन माने जोन ले काले की पढ़ा लिखा आसो तो हनुमान पढ़ून बाती आप लोग ज्ञान के बढ़ाऊ लाए सको आप लोग देश के जानुक लाए सको तेबे उनचो जीवना सुधरुक लाए सके दे आमी पढ़ा लिखा नहीं रहलू बोले ना आम काय करूँ आम के कोनी तो बोले ने कहा कि कथा पुराण सुना लो सन बोले हर समय तो सुना उकलाए नहीं सके केबे के बार कहीं टाइम दे उन बाती सांगे दे सुनाए दे वहाँ तर हर समय तो आम के सुना उकलाए नहीं सको तो ये आम चो ज्ञान के अर्जन कर तो काजे आम चो ज्ञान के बड़ा तो काजे कापी पुस्तक बल्ले ने पढ़ून बाती सीख तो काजे आम के शिक्षा बल्ले ने पढ़ा लिखा हो तो खूबे जरूरी आए तो ये समिया इली से है और संग संग का है कि आमी बल्ले ने काची संगे आम के बल्ले ने संपर्क बनान बाती रहतो रहे ऐसो काज बल्ले पढ़ा लिखा लागे से कसन संपर्क बल्ले ने देखा आमी इतली मैं सांगे से जसन कि आजकल तो सपाए लोग मोबाइल चो गोट ने खबर दिया दी सांगा सांगी होए सो कहीं अटकनी होली कहीं घर ने कहीं काम पड़ ली आम कोई

बेटी बहन आहिनि, मामा आहे, काका काकी आहे, भले रिश्तेदारी नाता नारी मन का आहे की गांव गांव नी आसोत आगे जुगे का आहे की आमी भले काई बिया शादी आहे नाल काई दीन नहानी आहे नाल काहीं आहे तो भले हिणते हिणते जाऊन बाती हुनके सांगुक लाए पड़त रहे तो कितलो दिन लागत रहे जाऊन मंतर एवे तो असन है मोबाइल चो होली से आमी का है कि एक सेकंड ने फोन करून बाती हुनके सांगुक लाए सकूँ मंतर ये चुकाज बोल का है कि उता पढ़ा लिखा होक लाए पड़े से है पढ़ा लिखा आम के उता काय नंबर आए हुन नंबर के उता चेपा होक लाए पड़े से नाहले काची नंबर के मोबाइल ने सेव करत रहे भले ने हुनचो नंबर संगे का है कि नाव ने उनके सेव करूक लाए पड़े से है और कहाँ के भी कहीं असन काम पड़ ली उनसे संग गोड बात करता रहा है भले ने उन मोबाइल ने उनचो नाव के टाइप करूक लाए पड़े से तेबे उनचो नाव होता निकरे से तेबे हम उनके मोबाइल ने फोन करून बात कहीं बोल खबर आए नाल कहीं बोल गोट आए हम उनके संग लाए सकूँ उनसे संग गोड बात करूक लाए सकूँ या कौन आदमी करूक सके है जो अनपढ़ आदमी है उन तो करूक लाए नहीं सके जोन पढ़ा लिखा आदमी आए होने करूक लाए सके तो आम के गोटक दूसर संगे बले ने कहा कि संपर्क बनान संगा तो काज बले बले ने गोड बात हर समय उनचो संगे आमी नजदीकी ने रहूँ बले ने गोड बात करते रहूँ कहीं खबर बले ने कहीं सुना सुनी सांगा सांगी हों ये चो काज है आजकल मोबाइल खूबे काम दे से और मोबाइल के चला तो काज बले खूबे पढ़ा लिखा हो तो जरूरी है है तो ये असन असन बलन का है कि काम मन एबे पढ़े लिखा रतो काजे आम के खूबे जरूरी है और संग संग देखा बलन का है कि आजकल तो कंप्यूटर जो जमाना बले होली से है कंप्यूटर ने कई काम मन होए से है मैं आगे बल गोटे उरले कि जो ऑनलाइन कहीं बल फार्म वगैरह भरूँ से कहीं भराऊँ से तो कंप्यूटर ले भरसो तो ये चो काजे सीख तो काज बल खूब जरूरी है भले ने कहा कि पढ़ा लिखा हो लेने तभी आम कंप्यूटर के सीख लाए सकूँ तभी आम कंप्यूटर के चला लाए सकूँ आजकल देखा कई कसन आसे कि कंप्यूटर ने जो दिलो रासे कि कई आमी काम करूँ से जाले होता कंप्यूटर चला बेरा हूँ सांगे से कि तू गलत करसीस नाल तू अच्छा करसीस नाल तू एता जा नाल तू होता कर नाल तू उनके बोले ने माउस ने दबाओ होता सांगते जाए से जोन पढ़ा लिखा आदमी है होने तो पढ़ उन बातें समझुक सके और कंप्यूटर जो काम के अनुकूला सके तो असन असन बल्ले ने कहा कि आम चो ये जोन ये तो बल्ले ने ये समय ने पढ़ा लिखा चो काम होय से है जैसन कि मैं आगे बोले बोलते रहे कि ऑनलाइन से जोन काम आए बोलूँ कहीं बोले फार्म भर तो काजी आए नाले कहीं बोले जोन पढ़े लिखे जोन लेखा लिखी मना था आजकल तो बोले ने कहीं ची बोले जोन नौकरी पैसा काजी आए नाले पढ़ाई लिखाई काजी आए हैं ये चो काज बोले का है कि ऑनलाइन ने कर सो और आजकल एक आया है कि जैसन कि आमी असन बोले होली से कि ऑनलाइन भी थी आमी कहाँ बस ने जात रहा है कहीं रेल ने जात रहा है कहीं जहाज ले जात रहा है तो आम के टिकट कटा तो काज बोले घर ले आमी मोबाइल ने करूक लाए सकूँ टिकट आमी शहर ले रायपुर जात रहा है रायपुर ले शहर ये तो रहा है ना ले कहीं दूसर बाट जात रहा है जहाज चेगुन को नहीं दिल्ली जात रहा है भोपाल जात रहा है ना रेल चेगुन बात को नहीं आम के रायपुर जात रहा है तो ये बोल का है कि आमी घर ले ची मोबाइल ले टिकट बोले ना होता घेन उकलाए सकूँ बोले ने आम के पढ़ा लिखा रोलो नहीं तो आम जान उकलाए सकूँ आम रेल चो टिकट के कसन घेनवा जहाज चो टिकट के कसन घेनवा बस चो टिकट तो कसन घेनवा है उनचो जो टिकट घेन तो जो नियम धियम आए उनके आम के जान उकलाए पड़े दे ते भी आमे उन टिकट के बोले घेन उकलाए सकूँ बोले ये काम के भी हो दे जे भी आमी पढ़ा लिखा हुआ निरक्षर रले अनपढ़ रले ने आमी बल्ले ने कहा कि ये काम के करूक लाए नहीं सकूँ होने काजे मचो बोल तो गोट यही आए भाई बहन मन आम के पढ़ा लिखा हो तो खूबे जरूरी आए ये समय ने पढ़ा लिखा चो खूबे महत्ता आसे अपन मन आजकल तो गांव गांव ने अपन घर घर ने दक्षास बल्ले ने कोचो घर कहा कि चार चक्का बीती घड़ी आसे कोचो घर कहा कि दुई चक्का बीती गाड़ी आसे घोषो घर का है कि तीन चक्का भी गाड़ी आसे है खेती किसानी कर तो बीता मन लग का है कि ट्रैक्टर आसे कई कल मन आसे मशीन मन आसे तो ये मशीन बोल काय नहीं चलेस डीजल और पेट्रोल नहीं चलेस है आजकल

तो जोन पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, सपाय लग गाड़ी मना से, नानी सुनी गाड़ी तो सपाय घर मन ने आसे, तो ये गाड़ी मन ने कहीं पेट्रोल सर ली, कहीं डीजल सर ली, तो आमी पेट्रोल पंप ने जाऊँ से, और पेट्रोल पंप बेरा आमी होता बोलूँ से कि आम के 3 लीटर पेट्रोल देस, 5 लीटर पेट्रोल देस, बोले होता लीटर दका ऐसे मशीन रहे से, उन भर तो बेरा अपन मन दक्षास की नहीं जाले, होता सांगे से कि इतलो लीटर होली, इतलो लीटर होली, इतलो लीटर होली, इतलो पैसा होली है। जोन आदमी पढ़ा लिखा है तो हो आदमी का है कि उनके उन मशीन के दख उन बातें सांग जानुक सके, हाँ इतलो लीटर होली, इतलो पैसा होली, नहाले एता बोले अभी ठगा खाऊक लाए सकूँ, कसन बोले अनपढ़ रहे ने कहा कि मान लो हमें 20 लीटर पेट्रोल डाल लूँ, उता 15 लीटर डालू, हाँ होली, जो पढ़ा लिखा है उन तो दकुन बात सांगे दे नहीं, ये था तो 15 लीटर डाल लीस, 5 लीटर आउट डाल, और जो अनपढ़ आदमी है हाँ होली बोले ना होली, 20 लीटर चो पैसा दे दिल 15 लीटर डीजल भरा दिलो, पेट्रोल भरा दिल, ये तो आम अनपढ़ चो कारण ठगा खा लो करें। तो यही काजे आमचो जीवना ने पढ़ा लिखा हो तो खूबे जरूरी है, जसन जसन का है कि आमचो देश बल्ले ने कहा है कि बढ़ते जाए से, बदलते जाए से, उसन उसन का है कि आमचो जोन काम ने आन तो जोन जिनिस मन है उन मन बोले बदल जाए से, जसन कि मैं भी तुम संग गोटिया ले कि आगे का है कि हिंडते जाते रहूँ, फिर उतलन का है कि हमें साइकिल ने जाते रहूँ, साइकिल ने तो इतलो पेट्रोल डीजल नहीं लागत रहे, मानते रहे दाएँ का है कि फटफटी होली से, कार होली से, मोटर गार्ड होली से, ऐसो काज का है कि आम के बल्ले ने डीजल पेट्रोल भरुक लाए पड़े से है। जब तक आमी पढ़ा लिखा नहीं हो तो आम के कई बाटे का है कि धोखा खाऊक लाए सकूँ, तो होने काजे आम के पढ़ा लिखा होता और खूबे जरूरी आए। तो मचो बोल तो गोट यही आए कि ये समय आए, ये समय ने आम के घर चो गोटो गोटो माने के पढ़तो रहे, पढ़ा लिखा होता रहे, और गांव चो बोले गांव ने आमे दखूँ से कहीं कसन घर मनासे, आम चो किसान भाई बहन मनासोत, गांव ने रोतो लोग आसोत कि जुगे करून गांव चो लोग काय करसोत कि काची घरे 2-3 जन पीला आसोत, तो काय करसोत पीला पीला के आजकल देखो कैसे कि जोन पीला पढ़ुक जात रहे उन दूसरी तीसरी पढ़ लो, पढ़ते पढ़ते पांचवी पढ़ते पढ़ते हैं उन घरे गोटक फिर पीला चो जन्म होली है, जन्म हो तो के फिर उनके खेला तो कूदा तो कि डंड होली, भले ने कहा है कि घर तो लोग गांव चो लोग तो कहा है कि जुगे करो कूली भूती जाए सोत, तो काय हो ऐसे कि जोन पीला स्कूल जाते रहे पांचवी पढ़ू रहे उनके उन पीला खेला तो काज हट कान दे सो नहीं तु पीला खेला आमी भूती जाऊँ दे कूली जाऊँ दे, ये बोले आम के गांव मैंने धका दे ऐसे, तो एचो ने काय हो ऐसे हुन पीला तो नहीं पढ़ लो, और ये तो जन जन्म लो से हुन पीला बोला आगे पढ़ुक ला नहीं सके, तो ये सब चीज के आम के जानते रहे कि जोन बोले पीला मनासोत उनके कसने करुन बोले आम के पढ़ाई लिखाई करत रहे, काई मंजे गए थे उन मन कट कर नहीं उकलाए नहीं देता रहे, और गांव ने ये बोल हो ऐसे कि पीला मन के काय कर सोत कि बल ने जोन बोले आम चल लगे पशु जानवर आसोत उन मन के चरा तो काज पटाए सोत, स्कूल जा तो पीला के जोन प्राइमरी ने पढ़ लो से मिडिल स्कूल ने पढ़े से हुन पीला के काय कर सोत कि गाय बैला चरा उकलाए पटाए सोत, छेड़ी बोकड़ी चला उकलाए पटाए सोत, बरा मन के दखा रखतो काज पटाए सोत, मेंढा मेंढी के दखा रखतो काज पटाए सोत, उन पढ़ तो पीला के स्कूल ले छंडा ऐसो ये सब काम कर तो काजे, भले ने असन आए पढ़ तो बेरा आम के पीला के कहीं भले ने कहीं बाधा युक लाए नहीं देत रहा है, पीला के अच्छा पढ़ात रहा है, भले आमी आमचो लगे आमचो गांव ने आमी अनपढ़ आसू एवेबल कई गांव ने अनपढ़ आसोत, कसन बल्ले का है कि हुन गांव ने हुन पारा ने आगे स्कूल चो जोन सुविधा नहीं रही पढ़ तो काज, पढ़ा तो लिखा तो काज सुविधा नहीं रही, तो ये होते रही मंतर अभी तो गांव गांव ने पारा पारा ने स्कूल में नासे आमी पढ़ो के लाए सकूँ है, आमचो जोन परंपरा ने आगे चलते रही जे कि आमी बोलूँ से कि कई कसन परंपरा मनासे कई कसन बल्ले ने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे, तो जोन आमचो जीवना का जे बल्ले ने बाधा है आमचो जीवना का जे चीपा है आमचो जीवना का जे अटकनी है, तो असन परंपरा मन के टूटा उकलाए पड़े दे,

0: जसं की अभि मी गोट बात करत रे की आम आपण मन संगे की आमच्या गाय बैल हासे तो उन पडूक जायस उन पिला तीन चार साल स्कूल ने गेलो तो गाय बैला चरा तो काजे हुन पिला के आम्ही स्कूल ने छडणाव से ये परंपरा तो अडरा परंपरा ये तो गलत परंपरा है। कसन बल्ले काय की हुन पिला चो जोन भविष्य आहे आगे बाढ़तो बीती जोन तकनीक आए शिक्षा आए बोलुवे हुनके मे रुक नहीं सकले ने हुन पीला फिर आगे बाढ़ुक लाए नहीं सके हुन पीड़ा आगे नहीं बाढ़ लो हुन पीला ज्ञानी नहीं होलो तो हुन आम के बोले का है कि अस्थिर ने खुआउक लाए अस्थिर ने जियाउक लाए आम चुकाई तकलीस होले ने बीमार सीमार पोड़लू बल्ले ने हुन पीला आम के उतलो जतन करूक लाए नहीं सके तो हुनी काजे का है कि आम के बल्ले ने गोटक पीढ़ी तकलीफ होक लाए सके बल्ले ने ये तो जोन पीढ़ी आए ए बेच जोन पीला मनाए उन पीला के आम के पढ़ात रहा है आगे पढ़ात रहा है घरे कितली बल चिपारो आम के कसनी ने कसुन करुन बाती बल्ले उनके बल्ले ने पढ़ा तो जोन पीला मन के आए उनके ठेबा तर नो आए उनके सिखा तो रहा है उन मन के पटा तो रहा है। आजकल तो कहा है कि घरे नहीं आए जाल कहीं हॉस्टल मन आ से हॉस्टल ने भर्ती करात रहा है उन मन के पढ़ात रहा है आगे सिखात रहा है हुन लेखा पढ़ लो लिख लो जाल का है कि आप लो बल्ले ने परिवार ने जित लो खेती बाड़ी भले आसे उन खेती बाड़ी के अच्छा करुक लाए सके दे आरु आमी जोन डोकरा डोकरी होलू बल्ले हुन पीला आमचो जतन नगत करुक लाए सके दे कहीं बीमारी से मारी पढ़ लू बल्ले उन अस्पताल ने नुक लाए सके दे है कहीं अच्छा उन पढ़ा लिखा रहे ने सरकार चु योजना मन चु लाभ धुरुन बाती नगद ढंग ले बल्ले ने उन्नत हिसाब ने खेती बाड़ी करुन बाती घर से जोन परिवार आत घर से जोन डोकरा डोकरी आत हुन चु जीवना के अच्छा अस्थिर ने संगा उकलाए सके आम के तकलीफ हो उकलाए नहीं सके। तो रेडियो सुन तो भाई बहन मन शहर चो हो नाले गाँव चो हो जोन अनपढ़ आसोत माए बाप अनपढ़ आसोत नाले काय की कसन और बोले असन कई का से जोन पढ़े लिखे जोन गांव चो रहतो हो नाल शहर चो लोग होतो हो तो उनमन आप लोग पीड़ा पीला के पढ़ा तो काजे बल ध्यान दे उन्हों आत तो भले अनपढ़ रहा माए बाप अनपढ़ बल रहा नाले शिक्षित बल रहा उनमन जोन बल पीला घरे आसो जन्म धर दे उन पीला मन के जरूर पढ़ावा जरूर लिखावा तेबे हुन आमचो समाज काजे आमचो परिवार काजे आमचो गांव काजे आमचो देश काजे नगत रह दे यही याद पीला मन आमचो भविष्य। तो देखा इतलो मैं अपन मन संग गोट बात कर ले कि साक्षर बल्ले ने पढ़ा लिखा रलो ने निरक्षर बल्ले ने अनपढ़ रोले ने जीवनाचो उन्नति बाढ़ती ने कितलो अटकनी है उकलाए सके कितलो चीपा ये उकलाए सके फिर आरक मैं सरासरी बल्ले से पीला मन के पढ़ावा लिखावा आगे बढ़ावा खूबे खूबे सेवा जोहार।
1: भेंटघाट इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बलबीर सिंह कच्छ से वार्ता, विषय था साक्षरता की आवश्यकता। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: आप हमें आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से सुन रहे हैं कोदोमाली लोकगीतों के इस कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए पंकुराम और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत।

0: कोदोमाली। लोकगीतों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंकुराम और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं हिंदी में समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूक वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, कॉलिंग देम एज कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said, both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the Indian-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewellery, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods and rice. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives following a boat capsizing in West Bengal's South 24 Parganas district. Social media post, the President said her thoughts and prayers are with the affected families. Expressing condolences to the bereaved families, the Vice President prayed for the speedy recovery of those injured. In a social media post, Mr. Modi said his thoughts are with the bereaved families and hoped for the speedy recovery of those injured. He also announced an ex gratia payment of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. 15 fishermen went off for fishing from the Sankarpur Sea Harbour on 2nd of July on FB Mahakali trawler. After 5th July, connection has been lost with the fishing trawler. A joint team of Coast Guard, Navy, state agencies found the capsized trawler on 12th July afternoon in the Bay of Bengal. 9 decomposed bodies have been recovered from the cabin of the ill-fated trawler. 6 persons are still missing. The mortal remains of the 15 Indian tourists who were killed in a speedboat accident in Vietnam's Phu Quoc Island have been brought back home. According to the official X account of the Embassy of India, Hanoi, the mortal remains departed from Ho Chi Minh City by Vietnam Airlines flight VN979 and arrived in Mumbai. In a tragic incident on Friday, a speedboat carrying 32 Indian tourists and 4 local crew members capsized off Phu Quoc Island, leaving 15 tourists dead. Defence Minister Rajnath Singh and Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, today inaugurated the Lucknow-Kanpur Expressway. Before the inauguration of the Lucknow-Kanpur Expressway, all these leaders inspected the expressway in Unnao.